सुप्रभात। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आज दिन रविवार है, शक संवत 1948।

आश्विन महीने की तिथि 5, अंग्रेजी सन 2026 के 27 सितंबर है। इस समय प्रातः के 5:58 और 51 सेकंड हुए हैं। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हुए हम आरंभ करने जा रहे हैं आज की पहली सभा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 138वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने ऊर्जा और व्यापार की आपूर्ति जारी रखने पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में डॉ. जयशंकर ने कहा कि युद्ध का असर सिर्फ संबंधित देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और विकास प्रभावित होती है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बारे में उन्होंने कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। डॉ. जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संघर्ष समाप्त करने का आह्वान दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों के हमलों को भी अस्वीकार बताया। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया। उन्होंने कांग्रेस पर झूठे दावों के आधार पर देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। श्री नवीन ने कहा कि लोकतंत्र में जीत और हार स्वाभाविक है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत प्रचार का सहारा लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, उड़ीसा और तेलंगाना में भी आज बारिश की आशंका है। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा रुक दी गई है। तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। मौसम ठीक होने के बाद ही यात्रा फिर शुरू होगी। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर आज भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मैच 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीम के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला भी खेली जाएगी। एशियाई खेलों में स्क्वाश में अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर, NC सोजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह मुकाबला करेंगे। हॉकी में भारतीय महिला टीम सिंगापुर से खेलेगी। बैडमिंटन में PV सिंधु और भारतीय मिक्स जोड़ी पदक से 1 जीत दूर है। तीरंदाजी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और तलवारबाजी में भी आज भारत को पदक की उम्मीद है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओ, अभी आपने सुनी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए हिंदी में समाचार। अब प्रस्तुत करते हैं आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम संबंधी जानकारी।

कार्यक्रम के शुभारंभ हम करेंगे भक्ति गीतों के साथ। आज आप सुन पाएंगे सरस्वती माता जी के कुछ भजन। तत्पश्चात 6:30 पर होगा महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम। 7:00 आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे। 7:05 पर होगा पोएम ऑफ द डे, तत्पश्चात आज का दिन कार्यक्रम। 7:30 पर सुनिए बच्चों से जुड़े कार्यक्रम।

8 बजे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात रिले किए जाएंगे। 8:15 पर होगा देशभक्ति गीत। 8:30 पर आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज रिले किए जाएंगे। सुरों की रंगोली ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8:40 पर। 9 बजे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से पुआर आंचलिक बातोरी रिले किए जाएंगे।

9:15 मिनट से आरंभ कर 10 बजे तक आप सुन पाएंगे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम। इसमें सबसे पहले प्रस्तुत किया जाएगा खिलमा कार्यक्रम। आज सुनिए कुछ लोकगीत कलाकार होंगे फुनस्याम थाई नेइबम और उनके साथी, रेचन थाई बैंखांग और उनके साथियों के गाए कुछ पारंपरिक रांखल गीत आप सुन पाएंगे। आज के रांखल कार्यक्रम में समय रहेगा 9:25। 9:35 पर होगा जयंतिया कार्यक्रम। आज हम प्रस्तुत करेंगे मेलाम भालंग पायरांग और उनके साथियों के गाए कुछ भक्ति गीत। ब्याते कार्यक्रम में भी आप सुन पाएंगे कुछ भक्ति गीत कलाकार होंगे मुंगचोंगी नामपुई और उनके साथी। समय रहेगा 9:45। 10 बजे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

10:55 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम रिले किए जाएंगे और इसके तुरंत बाद इस कार्यक्रम का प्रादेशिक भाषा में अनुवाद आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले किए जाएंगे और तत्पश्चात आप सुन पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम। 12 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, पुनः 1 बजे तत्पश्चात 2 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी में समाचार मिड डे न्यूज, 2:15 पर हिंदी में दोपहर समाचार, 4 बजे पुनः हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे और इस बीच में 12:05 पर पुनः 1:05 पर तत्पश्चात 2:30 पर और फिर 4:05 पर विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। तो श्रोताओं, ये थे आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम संबंधी जानकारी।

श्रोताओं, 6:10 हो चुका है। आरंभ करते हैं भक्ति गीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज सुनिए सरस्वती माता जी के कुछ भजन। कलाकार है अनुराधा पौडवाल।

श्रोता, अभी आपने सुने श्री सरस्वती माता जी के भजन। कलाकार थे अनुराधा पौडवाल, और इस भजन के साथ ही आज का भक्ति गीत का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब प्रस्तुत करते हैं महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप सुनिए श्रीमती मायूरी किलिंगपी, सर्कुलर इंस्पेक्टर हैंडलूम एंड टेक्सटाइल, आपके साथ एक साक्षात्कार लिया है कृष्णा चक्रवर्ती ने।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। और मैं हूँ आपकी होस्ट तृष्णा चक्रवर्ती, और मैं लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम वुमेन प्रोग्राम, जो हर नारी के लिए है, नारी के संघर्ष, सपनों और समझौते से जुड़ी हर कहानी की है। इस कार्यक्रम में आप सुन पाते हैं एक मिनट का वुमेन टाइम। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं ये कार्यक्रम वुमेन टाइम के साथ।
1: हेलो एवरीवन, आप जिसकी आवाज सुन रहे हैं उसका नाम है अपूर्वा चतुर्वेदी। मैं दार्जिलिंग से हूँ और मैं एक टीचर हूँ। मैं प्री स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। मैंने वैसे तो ग्रेजुएशन किया हुआ है, फिर लाइब्रेरी साइंस किया है, उसके बाद बीएड भी किया है। तो कोई काम छोटा बड़ा थोड़े ना होता है। आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो बड़े बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बट मैं अपने प्री स्कूल में भी खुश हूँ। और किसी भी लड़की को अपने पैर में खड़ा होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए काम करो, पढ़ाई करो और मजे से रहो।
0: वुमेन टाइम के बाद आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं मयूरी किलिंगपी, सर्किल इंस्पेक्टर हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स हाफलोंग की। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, मेरा नाम है श्रीमती मयूरी किलिंगपी, जो कि मैं हैंडलूम एंड टेक्सटाइल हाफलोंग का सर्कल इंस्पेक्टर हूँ और अभी वर्तमान असिस्टेंट डायरेक्टर का सार्स पे भी हूँ।
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप अपने बारे में विस्तार से बताइए कि आप कहाँ से हैं और आप हाफलोंग में अभी पोस्टिंग में हैं, तो आप पहले कहाँ थी?
2: हाँ जी, मैं असल में मेरा जो जन्म हुआ था दीफू में हुआ था और मेरा शादी हुआ था गुवाहाटी में हुआ था। और अभी तो इधर में 5 साल हो गया, लेकिन
0: जी
2: उसका आगे सोनारी में था। अभी 2019 में हम फिर इधर में पोस्टिंग दिया, मतलब ट्रांसफर मिला हमको।
0: जी जी
2: अभी वर्तमान हाफलोंग में ही हूँ।
0: जी जी आपने जैसे बताया कि आप एट प्रेजेंट इंचार्ज असिस्टेंट डायरेक्टर
2: हाँ
0: भी
2: हाँ
0: हैं,
2: जी
0: जी
2: हाँ
0: उसके बारे में बताइए, क्योंकि आप तो सर्कल इंस्पेक्टर हैं।
2: हाँ मैं ऐसे तो मेरा काम है सर्कल। हम लोग का जैसे कि 11 सर्कल हो गया, जैसे कि इधर में हाफ लॉन्ग सर्कल हो गया, उमरांगसो है, माईबांग है, लांगटिंग है, ऐसे करके 11 सर्कल का मैं सर्कल इंस्पेक्टर हूँ। और मेरा अंडर में

0: इलेवन डेमोस्ट्रेटर है जो जगह जगह पे कुछ इमरजेंसी कुछ प्रॉब्लम जो हम लोग वीवर का साथ काम करते हैं तो वीवर लोगों का हेल्प के लिए हम लोगों को कुछ इमरजेंसी आने से और वो लोग को गाइड करने से कैसे प्रोडक्शन मिलेगा क्या होगा ये सब
1: जी
0: के लिए जाना पड़ता है डेमोस्ट्रेटर लोगों को। और उसके बाद जो आपने बोला जो मैं असिस्टेंट अभी डायरेक्टर का सार्स में भी हूँ हैंडलूम एंड टेक्सटाइल का, तो उधर में तो जितना क्योंकि हाफलॉन्ग जो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिस में तो मेन हेड ऑफिस जैसा हो गया तो डिस्ट्रिक्ट का, तो
1: जी
0: इधर में सब काम इधर में ही करने लगता है। इसलिए दूसरा जगह से भी माइबोंग हो लांगडिंग हो हाथीखली हो जितना क्या क्या कुछ प्रॉब्लम या कुछ आने से या डायरेक्टर ऑफिस में कुछ काम वगैरह आने से हम लोग इधर से ही करने लगता है।
1: जी जी जैसे आपने बताया कि आप 11 जितने भी सर्कल हैं
0: हाँ
1: उनके
0: हाँ
1: इंस्पेक्टर हैं, आप कैसे चेकिंग करते हैं प्रोडक्शन के ये सब, आप कैसे चेकआउट्स करते हैं?
0: हाँ वो जैसे कि वो लोग का कभी कभी हम लोग का एक स्कीम होता है तो
1: जी
0: स्कीम के अंडर में जैसे कि हम लोग को सूता देने लगता है ग्राइंड्स एड बोलता है तो ये तो हर साल साल में आता है। तो हम लोग का इधर में ईएम इंचार्ज मैडम भी है हम लोगों का प्रोबिता जौहरी मैडम है तो उसका साथ में मिलके हम लोग काम करता है तो इसलिए हम लोग जो बेनिफिशियरी है एक्चुअल में है ना नहीं है तो इसलिए हम लोग थोड़ा चेकिंग के लिए डेमोस्ट्रेटर लोग जाता है
1: जी
0: तो एक्चुअल होने से हम लोग वो लोग को खुदा डिस्ट्रीब्यूशन फ्री में करते हैं।
1: जी जैसे आपने बताया बेनिफिशियरी के बारे में, ये
0: हाँ
1: आप कैसे निश्चित करते कि कौन ले पाता है?
0: बेनिफिशियरी लोग जैसे कि एक वीवर वीवर तो सब लोग थोड़ा छोटा मोटा वीवर होगा हाँ, लेकिन 360 डेज है ना हम लोग का 1 ईयर में, लेकिन ए 180 डेज एंगेज होना पड़ेगा वो वर्क काम के ऊपर। ऐसे लोगों को हम लोग वीवर सिलेक्ट करके तो वो लोगों को बेनिफिशियरी हिसाब से हम लोग सिलेक्ट करते हैं।
1: जी
0: ऐसे कुकुस ऐसे थोड़ा थोड़ा काम में करा कभी नहीं करा ऐसा माफिंग नहीं है, लेकिन 365 डेज में से 180 डेज तो वो लोग वीविंग का काम में जड़ित होना पड़ेगा, वो लोग को हम लोग ये सब फैसिलिटी देते हैं।
1: जी जी आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ हैंडलूम टेक्सटाइल्स के साथ?
0: असली में हम लोग जब एडमिशन हम लोग कैसे लिया मतलब पॉलिटेक्निक का अंडर में आगे एंट्रेंस एग्जाम होता है तो
1: जी
0: उधर में कितना है शायद पॉलिटेक्निक तो बहुत सारा है उसमें से हैंडलूम एंड टेक्सटाइल भी आता है तो उधर एंट्रेंस पास करने से अगर हम का तो मेरिट में मिला, मेरिट नहीं मिलने से भी वेटिंग में होने से भी उधर में चॉइस करना पड़ता है। और हमने जहाँ किया है
1: जी
0: असम टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट गुवाहाटी में है उधर से हम 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स किया है। उसके बाद मतलब ऐसे हैंडलूम में पहले तो नहीं सोचा था दूसरा
1: जी
0: ब्रांच में लेगा ऐसे सोचा, लेकिन पापा बोला वुमेन के लिए भी अच्छा है वीविंग रिलेटेड और खुद अगर कुछ करके दूसरों को भी कुछ आइडिया दे सकने से ठीक है तो वो सब्जेक्ट लेने से अच्छा होगा करियर के लिए भी। और ऐसे भी हम लोग हिली एरिया में बहुत कम है ये डिपार्टमेंट का अंडर में स्टूडेंट भी बहुत कमती है
1: जी जी
0: ऑल असम का है तो हम लोगों का, तो इसीलिए हमने चॉइस किया। पहले इतना नॉलेज में नहीं था लेकिन बाद में पढ़ते पढ़ते गया तो और अच्छा होते गया, ऐसे में बाद में तो फर्स्ट क्लास से ही पास हुआ
1: जी
0: और उसके बाद में और इंटरेस्ट तो बढ़ गया। पहले इतना अच्छा नहीं था लेकिन बाद में जितना 6 सेमेस्टर है तो 3-4 सेमेस्टर तो ऐसे करके गया, बाद में लास्ट का टाइम में अच्छा हो गया थोड़ा नॉलेज भी आ गया। तो अभी उसका 2-3 साल बाद हम लोग का जॉब एडवर्टाइज निकला
1: जी
0: उसके बाद हम लोग अप्लाई किया तो फिर मिला हम
1: जी
0: लोगों को।
1: ये तो बहुत ही अच्छी बात है।
0: हाँ
1: जी जैसे आपने बताया कि आपकी पढ़ाई की जर्नी भी आपने हमारे साथ शेयर किया,
0: हाँ हाँ
1: जी ये बता सकती हैं कि आप बचपन से ये क्लोथिंग ट्रेडिशनल या कह सकते हैं कि वेविंग वगैरह में आप इंटरेस्टेड थी?
0: हाँ ऐसे तो इंटरेस्ट था हम क्योंकि मेरा मामी लोग भी कभी शॉल बनाता कभी चादर मेखला ये सब भी बनाता गमछा बनाता तो हम लोग भी थोड़ा थोड़ी तो मदद
1: जी
0: करता है तो इसलिए थोड़ा तो इंटरेस्ट था, लेकिन फिर भी इतना बाद में तो ये सब्जेक्ट में ही पढ़ूंगी ये तो नहीं सोचा था, लेकिन पापा बोला तो अच्छा ही है जो मार्गदर्शन दिया पापा बाद में तो वही का ऊपर में अभी भी हम चल ही रही है
1: जी
0: हैंडलूम का ऊपर में ही, तो इधर में नौकरी भी मिला तो अभी ऐसे स्टार्ट करके दूसरों को भी हेल्प किया मतलब जैसे कि ये सब्जेक्ट में लेने से भी बहुत बाद में भी काम आएगा ऐसे हम भी मदद किया जितना को सकता है।
1: जी बिल्कुल जी। हैंडलूम और पावर लूम में क्या डिफरेंस है?
0: हैंडलूम में जो होता है हम लोग हाथ से जो बनाता है लूम हम लोग का जो फ्लाई शटल लूम है
1: जी
0: मैक्सिमम इधर का गांव में थ्रो शटल लूम है, फ्लाई शटल बहुत कमती है लेकिन अभी हम लोग जितना हो सकता है फ्लाई शटल डिस्ट्रीब्यूशन किया है। आगे में तो थ्रो शटल मतलब जो शटल है हाथ से ही आपको इधर उधर मार के कपड़ा तो बनाने लगता है
1: जी
0: अभी,
1: जी
0: लेकिन नहीं है अभी तो फ्लाई शटल आ गया। थोड़ा काम टाइम भी शॉर्ट होता और पावरलूम होता कि मशीन में बनाता मशीन, इसलिए हम लोग पावरलूम में बनाने वाला ज्यादा कॉस्टली है चीज भी। और जो हम लोग बनाता है तो पावरलूम में तो ऑटोमेटिकली एक दिन में तीन तीन चार पांच टू भी चादर मेखला बनाने सकता, लेकिन हैंडलूम में नहीं, बहुत टाइम लगता।
1: जी
0: और बेसिकली दिमासा ट्रेडिशन का तो एक कपड़ा बनाने में भी तो 15-20 दिन एक महीना भी लग सकता है
1: जी बिल्कुल
0: ऐसे है।
1: जी। जैसे आपने पावर लूम और हैंडलूम के बारे में बताया है, हमारे डिमा हसाओ में सबसे
0: हाँ
1: ज़्यादा कौन से ट्राइब के प्रोडक्ट्स बनते हैं?
0: से बोलने से दिमा हसा में तो दिमासा का ही ज़्यादा प्रोडक्ट तो मिलता है,
1: जी
0: लेकिन बाकी जो हम लोग का दूसरा ट्राइब्स जैसे कि है कुकी मार मिजो नागा ये सब का भी हम लोगों का पास में प्रोडक्ट है। जैसे कि हम लोगों का असिस्टेंट डायरेक्टर का अंडर में इधर हाफलोंग में तो है यूनिट, लेकिन
1: जी
0: हाफलोंग के अलावा और चार जगह में यूनिट है, टोटल है 5 यूनिट। वो 5 यूनिट में कपड़ा बना के उधर में जो प्रोडक्शन करके वीवर लोग हम लोग को सबमिट करता है, उसका बेसिस से हम लोग को उस वो लोगों को एक ठो रेमुनराइजेशन या कुछ हम लोग देते हैं। तो बना के हम लोग का प्रोडक्ट रखते हैं, तो उधर में कुछ प्रोग्राम वगैरह कुछ किया होगा तो उधर में सेल भी करते हैं
1: जी
0: यूनिट में।
1: जी जो आपने बताया कि सेल भी किया जाता है, यहाँ पे जो काम करते हैं वो लोग क्या वही के स्टाफ होते हैं या ऐसे ही विलेज से विलेजर्स वगैरह
0: हाँ
1: आते
0: हाँ
1: हैं?
0: स्टाफ स्टाफ बोल के तो नहीं है, लेकिन जो विलेज में काम करता है क्योंकि वो वीवर्स लोगों को भी तो हम लोग मोटिवेट करने लगता
1: जी बिल्कुल
0: तो इसीलिए वो हिसाब से भी वो लोग का घर परिवार भी चलता है, तो इसलिए जितना प्रोडक्शन हम लोग को लाके देगा वही हिसाब से हम लोग भी एक हिसाब करके उन लोग को एक ठो मानी देता है। तो
1: जी
0: ऐसे मतलब कोई कोई परिवार तो ऐसे भी चल रहा है
1: जी
0: इसी है।
1: बिल्कुल जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी। एक कपड़ा बनने का प्रोसेस कितना लंबा होता है?
0: लंबा मतलब ऐसे लगता है 2-3, जैसे कि हम लोग पहले वार्प टू वाइंडिंग करेगा, वाइंडिंग पहले जो हम लोग एटू पार्न बोलता है ना
1: जी
0: पार्न या हम पार्न और एटू बोबिन बोलता है, बोबिन वाइंडिंग करना पड़ेगा, वाइंडिंग से फिर वार्प टानना पड़ेगा, वार्प का बाद में लूम में फिट करना पड़ेगा, उसका बाद लूम में फिट होने का बाद हम लोग फिर एटू पार्न में सूता तो भरा के जो शटल होता है ना
1: जी जी
0: शटल से हम लोग जो फ्लाई शटल बोला ना इसलिए वही लूम में फ्लाई शटल लूम के थ्रो से वेव को हम लोग ऐसे कंटिन्यू प्रोसेस से मार मार के जाएगा तभी कपड़ा बनेगा। और डिजाइन के लिए भी हम लोग का अलग अलग है, प्लेन वीव है, ट्विल वीव है, बहुत
1: जी
0: सारा डिजाइन है ऐसा। आप लोगों को ड्राफ्ट में आगे में थोड़ा डिजाइन बनाने लगता है, उसका बाद में वो डिजाइन देख देख के हम लोगों को मार के जाना है तब
1: जी
0: होगा। तो प्रोसेस तो थोड़ा टाइम लगता है करने में
1: जी
0: सूता से लेके वाइंडिंग वार्पिंग वाइंडिंग ये सब करने में थोड़ा टाइम लगता है।
1: जी जैसे आपने बताया अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, डिजाइन्स
0: हाँ,
1: होते हैं, तो ये हर एक ड्रेस में हर एक क्लोथिंग में करते हैं या एक महीने में इतना प्रोडक्ट ऐसा कुछ सोच के रखा होता है?
0: नहीं नहीं इसे सोच के नहीं है। तो हम लोग अगर एक डिजाइन का कपड़ा अगर 500 बनाएगा बोलने से वो डिजाइन से ही बनाते जाएगा, और दूसरा दूसरा डिजाइन के लिए फिर बनाने सकता अगर हम लोग मतलब पहले तो डिजाइन टू ग्राफ पेपर में बना के करता, लेकिन हम लोग का डिजाइन के लिए भी जेकार्ट मशीन और ड्रॉ बॉय ये सब है, लेकिन जेकार्ट यहाँ में इतना नहीं चलता है क्योंकि इधर में हिली एरिया है
1: जी
0: तो
1: जी
0: इसीलिए मतलब। और लूम भी अलग अलग का होता है, तो जैसे कि कमर में बांधने वाला लूम को लोयन लूम बोलता है, तो
1: जी
0: इधर में ज्यादातर वही यूज करता है हिली एरिया में क्योंकि ये तो कंफर्टेबल भी है, बांध के कैरी करना भी इजी है लूम तो।
1: बिल्कुल
0: लेकिन हम लोग का फ्लाई शटल तो एक फ्रेम में हो जाता है ना, तो हम लोग तो लेके नहीं जा सकता है, लेकिन
1: जी
0: हम लोग का लोयन लूम तो कैरी करने में भी इजी है। कोई कोई अगर इधर में थोड़ा टाइम नहीं मिलता होगा दूसरा जगह जाके कुछ काम इम्पोर्टेंट होते उधर में भी लेके 3-4 दिन बैठने से बेम्बू में बांध के तो ये तो करने सकता है, बहुत इजी है।
1: जी इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज किया जाता है?
0: हम लोग का इधर में तो जैसे कि हम लोग एक्राइलिक यार्न होता है और होता है कॉटन का, बेसिकली ये दो यूज करता है। लेकिन ऐसे तो यार्न बोलने में तो मुगा सिल्क ये सब तो है,
1: जी
0: मालवाड़ी
1: जी जी
0: ये सब तो है, लेकिन इधर में ये सब इतना यूज नहीं होता है। हिली एरिया में ज्यादातर एक्राइलिक तो ज्यादा यूज होता है क्योंकि ठंडा जगह है तो एक्राइलिक यूज करने थोड़ा गर्म आता है। कॉटन का तो ऐसे भी ठंडा जैसा ही है लेकिन जहां में भी वो चल जाता है। ये दो यार्न टू ज्यादा

0: ज़्यादातर यहाँ यूज़ होता है।
1: जी बिल्कुल। और जैसे आपने बताया कि हैंडलूम और पावलूम के बारे में भी बताया था, उससे भी एक बात आती है कि हैंडलूम ये साबित करता है कि हम कैसे अपने कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, इसका इम्पोर्टेंस क्या है स्पेशली हमारे लोकल में?
0: हाँ, लोकल में, लोकल हो या इंटरनेशनल हो, सब तो आजकल तो हैंडलूम टेक्सटाइल का वजह से ही चल रहा है। आदमी को तो कपड़ा तो एकदम मस्त तो लगता है,
1: जी
0: लुच्ची
1: बिल्कुल
0: कपड़ा और मकान जो बोलता है ना,
1: जी
0: कपड़ा तो बहुत मेन है। तो कपड़ा का हिसाब में ही तो कितना फिल्म इंडस्ट्री हो, फैशन का वर्ल्ड हो, ये सब चलता है। ऐसा में भी हम लोगों का जगह में भी लोकल का जो जो आजकल लोकल का हम डिजाइन तो हो, नागा हो, कुकी हो, मार हो, या कार्बी हो, मिसिंग हो, जो हो हम लोग का असम का, और इधर में तो अलग अलग टाइप है, तो
1: बिल्कुल
0: वो मोटिव से ही बहुत बहुत दूर दूर जगह में एग्जीबिशन वगैरह होता है इधर का डिजाइन से। पीलो वगैरह, कुशन वगैरह और कर्टेंस वगैरह ऐसे भी बना बना के पार्सल करके बहुत पैसा भी कमा रहा है। तो इसीलिए, और डिजाइन भी अभी नेशनल इंटरनेशनल में भी चला गया है हम लोग का ट्रेडिशन का डिजाइन। तो इसलिए सबको जरूरी है अपना ट्रेडिशन तो जिंदा रखने के
1: जी
0: लिए,
1: बिल्कुल
0: तो इसीलिए तो हैंडलूम टेक्सटाइल तो एकदम मस्त है सबके लिए।
1: जी। जैसे आपने बताया कि सेलिंग के बारे में भी बताया, तो ये प्रोडक्ट्स जो भी रहता है वो हैंडलूम टेक्सटाइल्स के जो इंडस्ट्री है वहाँ से ही रहता है या कोई शॉप में तो ये सेल्स नहीं
0: हाँ
1: किया
0: हाँ
1: जाता
0: क्योंकि
1: है?
0: ना इंडस्ट्री बोलने में भी वो होगा, क्योंकि इधर में इतना बड़ा बड़ा इंडस्ट्री तो नहीं है, लेकिन
1: जी
0: असम का बाहर में तो हम लोग भी आगे एक्सकर्शन में भी गया देखा, उधर में अहमदाबाद हो, गुजरात हो, वापी, ये सब जगह में बड़ा बड़ा इंडस्ट्री वगैरह तो बहुत है,
1: जी
0: लेकिन इधर में तो इंडस्ट्री बोल के तो इतना नहीं है। लेकिन कोई कोई सोसाइटीज़ में, कोई कोई अपना से भी ये सब लाता है। तो हम लोग का ऑफिस का होता है यूनिट, जो हम बोला था हम लोग सूता देगा, वो लोग हम लोगों को कपड़ा बना के देगा, उसका हिसाब से हम लोग उसको एक ठो जैसे रेमुनराइजेशन एक देगा, तो वो हिसाब से वो लोग चलता है। तो वो यूनिट में ही रहता है, अगर कोई आता है जैसे कि यूनिट में कुछ प्रोडक्ट होने से खरीदने के लिए, तो यूनिट में ही मिलेगा। मार्केट में मिलता है जैसे कि सोसाइटीज हम लोग का अंडर में होता है, तो सोसाइटीज का लोग अपना अपना एक ठो स्टॉल भी दिया है इधर में
1: जी
0: भी है, इधर में भी सोसाइटीज का और मार्केट का भीतर में कितना थू स्टॉल है। इधर में स्टॉल भी नहीं है, वो लोग का दुकान ही है,
1: जी
0: तो ऐसा माफिक वो लोग भी करता है, लेकिन वो लोग हैंडलूम में रजिस्टर्ड है हम लोग का डिपार्टमेंट के अंडर में।
1: जी बिल्कुल जी। जैसे आपने बताया कि वीवर्स को दिया जाता है कि आप लीजिए और फिर आप सेल्स करते हैं, तो हमारे जो इंडस्ट्री है या कहें हैंडलूम टेक्सटाइल्स है, उसमें महिलाओं का क्या रोल रहता है?
0: हाँ, महिला का तो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि विभाग बोलने से तो मैं हम लोग तो एक ही सोचने को मिलता है, वो महिला का डिपार्टमेंट है,
1: जी बिल्कुल
0: और हम लोग का ऑफिस में भी महिला ही ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़का कोई मर्द ये भी हैंडलूम में नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। अभी तो मर्द लोग भी बहुत आगे चला गया, और मैक्सिमम हर साइड या इधर साइड में तो महिला ही ज्यादातर करता है, लेकिन लड़का भी है। लेकिन लोअर असम में तो बहुत एक्सपर्ट एक्सपर्ट लड़का लोग भी है, बहुत एकदम। वही लोग एक दिन में इतना अपना खुद से मेहनत करके एक दिन में 2-3 गमछा भी बना लेता है, प्लेन वाला तो ऐसे है, डिजाइन दे के भी बहुत कर लेता है। तो
1: जी
0: इसीलिए लड़का और लड़की या महिला या पुरुष का बात तो नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट तो बहुत इम्पोर्टेंट फर्स्ट है तो है महिला के लिए।
1: जी बिल्कुल जी। जैसे आपने बताया कि महिलाओं के लिए वीवर सोचे तो महिला ही आती हैं जी, वुमेन के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है?
0: बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल का दिन तो ऐसे कितना टफ हो रहा है सबके लिए,
1: जी
0: तो कुछ एक चीज खरीदने से भी दाम, जैसे कि आगे 5 रुपया का जगह अभी तो 15 रुपया हो गया। तो इसीलिए जैसे कि हम लोग का यूनिट हो या खुद भी सूता लेके अगर एक गमछा खरीद के 200-300 ऐसे कमा के, तो खुद का साथ में अपना परिवार या बच्चा को भी थोड़ा स्कूल का क्या क्या चीज वगैरह का खरीदने के लिए भी हेल्प कर सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है आजकल महिलाओं के लिए कुछ एक करना, सिर्फ
1: जी
0: विभिन्न करके नहीं है, दूसरा काम करके भी थोड़ा अपने परिवार को आगे ले जाने का बहुत एक बड़ा भूमिका निभाता है।
1: जी बिल्कुल जी। आपने जैसे अपने जीवन के बारे में भी बताया है, मैं पूछना चाहूंगी कि आप कैसे सब कुछ बैलेंस करती हैं?
0: मैं अभी तो क्या बोलेंगी,
1: जी
0: जितना हो सकता है मैं ट्राई करती हूँ, मैं अपना सब्जेक्ट जैसे कि हैंडलूम, हैंडलूम का ऊपर में भी दूसरा कुछ सब्जेक्ट आने से भी कैसे वो सॉल्व करने के लिए जितना हो सकता है मैं ट्राई करती हूँ। सिर्फ अपना डिपार्टमेंट है बोल के नहीं है, हम
1: जी
0: दूसरा
1: जी
0: दूसरा कुछ डिपार्टमेंट का काम हो, कुछ सोशली काम हो, कुछ जो हो, तो हम जितना सकता है सबको मदद देने के लिए ट्राई करते हैं।

0: जी बिल्कुल। और घर और ऑफिस आप दोनों भी मैनेज कैसे कर लेती हैं?
1: हाँ वो तो बहुत बड़ा बात है। जैसे कि मेरा दो बच्चा है,
0: जी
1: अभी एक तो 4 साल होने वाला है, 3 एंड हाफ है, और एक है 5। भी डिफरेंस तो ज़्यादा गैप नहीं है।
0: जी
1: फिर भी दोनों को लेके, एक तो स्कूल जा रहा है, एक तो नेक्स्ट ईयर में दूंगी। तो मेरा मिस्टर भी हैंडलूम डिपार्टमेंट में ही है,
0: जी
1: वो लेकिन दूसरा डिस्ट्रिक्ट में है, श्रीभूमि में है।
0: जी
1: तो इसीलिए मैं अकेला जितना सकता है, और मेरा बहन वो लोग भी है साथ में, ऐसे करके काम तो थोड़ा संभाल लेती हूँ, जितना जो काम आए थोड़ा मैनेज तो करना
0: जी
1: पड़ेगा,
0: जी
1: उपाय नहीं है।
0: बिल्कुल
1: ठीक।
0: जी। जैसे आपने बताया कि आप बिजी ही रहती है, आपकी हॉबी क्या है?
1: मेरा हॉबी देखा जाए तो जब फ्री टाइम मिलने से तो जितना भी थोड़ा बहुत मिलता है तो अपना परिवार के साथ में तो टाइम बिताना
0: जी
1: पसंद तो करती हूँ, और ऐसे भी करती हूँ। और साथ में अगर टाइम मिलने से हम सिलाई वगैरह का काम भी करती हूँ जितना हो
0: जी
1: सके। आगे तो सोनारी में सिलाई का काम बहुत किया, तो अभी अभी दो बच्चा हुआ, अभी थोड़ा सा तो टाइम नहीं मिला, लेकिन अभी फिर टाइम मिलने से तो मैं सिलाई का काम तो पसंद करूँगी बहुत।
0: जी जैसे आपने बताया कि आपने बहुत किया है सिलाई का काम, आपको क्या बनाना सबसे ज्यादा पसंद है?
1: जैसे कि प्लेन डिजाइन में हम बेडशीट और मेखला चादर भी बहुत बनाया है, आगे
0: जी
1: में बना के रिलेटिव्स लोगों को भी गिफ्ट दे दिया है। और साथ में बेडशीट का साथ में जो पिलो कवर और तो सोफा कवर ये सब भी बनाया है आगे में,
0: जी जी
1: और उसका साथ में थोड़ा ऊल का काम भी, थोड़ा बुनाई का काम भी थोड़ा बहुत करती हूँ, इतना नहीं है,
0: जी जी
1: जितना सकता है करती हूँ।
0: जी नहीं काफी टाइम भी लगता है बनाने में।
1: हाँ, काफ़ी टाइम तो लगता है, लेकिन जब बच्चा दोनों होने के आगे सोनारी में तो बहुत किया था,
0: जी
1: अभी जितना हो सकते हैं हम, क्योंकि देखने से करने का मन होता है,
0: जी
1: तो इसलिए जितना भी टाइम मिलता है थोड़ा परिवार का साथ में तो टाइम स्पेंड तो करती हूँ, उसके बाद में भी थोड़ा टाइम मिलने से सिलाई ये सब काम भी करती हूँ।
0: जी ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप टाइम निकाल के अपने लिए भी कुछ करती हैं, ये तो करना ही चाहिए। और जी जैसे आपने बताया कि पहले तो आप डिफू में रहती है, अलग अलग जगह से, फिर अभी हाफलोंग में, आपका कोई मेमोरेबल मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें?
1: तो मेरा मेमोरेबल मोमेंट वही है जो हम मेरा मिस्टर का साथ में सोनारी में ज्वाइनिंग के लिए गया था, वो
0: जी
1: टाइम तो मतलब बहुत मेमोरेबल है वो, क्योंकि फर्स्ट जॉब भी है तो
0: जी
1: फर्स्ट टाइम गया, तो फर्स्ट उधर में ज्वाइन करके सब लोग बहुत अच्छा है, बहुत प्यार दिया, उधर में भी बहुत अच्छा लगा। हम जितना साल रहा, 5 साल जैसा हो गया, और वही है मेमोरेबल सोनारी में रहने का। अभी इधर में भी बहुत अच्छा लगा, वेदर भी बहुत अच्छा है, और
0: जी
1: इधर में जो हम लोग का ऑफिस स्टाफ बोलो, आसपास का पड़ोसी लोग बोलो, सब अच्छा है, इसलिए अभी तो मुझे तो अच्छा ही लगा,
0: जी
1: और मैं तो जितना हो पॉजिटिव से रहने से पसंद करती हूँ।
0: जी बिल्कुल, माइंड सेट के लिए काफी
1: हाँ
0: अच्छा
1: हाँ
0: रहता
1: हाँ
0: है।
1: हाँ वही
0: जी
1: है।
0: जी जैसे आज आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, सबके लिए आपकी ओर से
1: हाँ,
0: क्या मैसेज रहेगा?
1: जो हम सबको यही बताना चाहती हूँ, काम छोटा बड़ा तो कुछ नहीं है, जो भी काम आए आप लोग अपना खुशी से और पॉजिटिव वाइब लेके करेंगे तो जरूर सक्सेस होंगे। और यही मैं सबके लिए एक आप लोगों का एक शुभ वार्ता देना चाहती हूँ।
0: जी मयूरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी रही और इतनी अच्छी सारी बातचीत की आपने हमारे साथ।
1: हाँ, थैंक यू, आप लोगों को भी हमको बुलाया, तो जितना हो सके मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज में आके, थैंक यू।
0: जी आशा करते हैं आज जितने भी लोग आज आपको सुन रहे हैं उनको भी काफी इंस्पिरेशन मिला होगा आपसे।
1: जी
0: जी अब कार्यक्रम के अंत तक भी हम आ चुके हैं। जी आशा करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम को आप सभी ने पसंद किया होगा। सुनते रहिए आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 MHz पर, और देते रहिए हमें ढेर सारा प्यार। तब तक के लिए मुझे यानी तृष्णा चक्रवर्ती को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आपने सुने महिलाओं से जुड़े कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थी तृष्णा चक्रवर्ती। और अब सुनिए कुछ फिल्मी गीत।

0: श्रोता, अभी आपने सुने फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब से कुछ क्षणों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार जारी रखने पर भी बल दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत को आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बताया और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
2: A persistent threat to peace.
3: आतंकवाद शांति के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। अगर इसे किसी देश का समर्थन हासिल हो और इसका मकसद सीमा पार हमले करना हो तो ये वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन जाता है। ऐसी गतिविधियों में शामिल सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आतंकवाद के प्रति कड़ी नीति में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। खासकर इसके वित्तीय पहलुओं का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और उन्हें रोका जाना चाहिए।
2: Should be exposed and should be countered.
1: रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान को भी दोहराया। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज रविवार को भी सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। एक रिपोर्ट।
4: यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM लिंक शाखाओं और बैंकों तथा ATM के लिए नकदी हेतु करेंसी चेष्टों की पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान ATM से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। इस दौरान वे कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा रोक दी गई है। मौसम ठीक होने के बाद ही यात्रा फिर शुरू होगी। जापान में एशियाई खेलों में स्क्वाश स्पर्धा में अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर, एनसी सोजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह चुनौती पेश करेंगे। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 30 पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: श्रोताओ, अभी आपने सुनी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए हिंदी में समाचार। अब पेश करते हैं पोएम ऑफ द डे।
5: माय नेम इज भ्रियास्मिता सिल। आई रीड इन क्लास 5। टुडे आई एम गोइंग टू रिसाइट टू लिटिल किटन्स। टू लिटिल किटन्स वन स्टॉर्मी नाइट बिगन टू क्वारल एंड देन टू फाइट। वन हैड अ माउस, द अदर हैड नन। And that's the way the quarrel begins. I'll have that mouse, said the biggest cat. You'll have that mouse. We'll see about that. I'll have that mouse, said the eldest son. You shan't have the mouse, said the little one. I told you before it was a stormy night when these two little kittens began to fight. The old woman seized her sweeping broom and swept the two kittens right out of the room. The ground was covered with frost and snow, and the two little kittens had nowhere to go. So they laid them down on the mat at the door while the old woman finished sweeping the floor. Then they crept in as quiet as mice, all wet with the snow and cold as ice, for they found it was better that stormy night to lie down and sleep than quarrel to fight. Thank you.
0: श्रोताओ, अभी आपने सुने एक कविता। कलाकार थी भ्रियास्मिता सिल और अब प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम आज का दिन।

श्रोताओं, आज का दिन में हर रोज की तरह हम आज लेकर आए हैं 27 सितंबर के कुछ इतिहास, कुछ विशेष घटनाएं जो आज के तारीख के नाम दर्ज है। ये सारे घटनाएं ऐतिहासिक है जो भविष्य के लिए लिखी गई थी। इस तारीख का कई सारे महान हस्तियों ने जन्म ग्रहण किया तो कई सारे महान हस्तियों ने इस संसार को अलविदा भी कहा। आज का दिन यानी 27 सितंबर के दिन को विश्व पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व बधिर दिवस यानी कि वर्ल्ड डेफ डे और विश्व नदी दिवस यानी वर्ल्ड रिवर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो इन सभी विषय पर हम आपसे जानकारियां बांटेंगे। तो शुरुआत करते हैं 27 सितंबर के तारीख के नाम पर दर्ज कई सारे मुख्य घटनाओं के बारे में, जिस प्रकार के हैं। बातें करते हूँ सन 1821 के आज ही के दिन का, उसी दिन मेक्सिको को स्पेन से स्वतंत्रता मिली है। सन 1825 के आज ही के दिन इंग्लैंड में स्टॉकटन वार्लिंगटन लाइन की शुरुआत के साथ ही दुनिया का पहला सार्वजनिक रेल परिवहन शुरू किया गया था। सन 1905 के 27 सितंबर के दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना प्रसिद्ध ऊर्जा और द्रव्यमान के संबंध का सिद्धांत E = mc² प्रकाशित किया था।

अमेरिकी का अंतरिक्ष यान डिस्कवरी ने केप कैनवेरल से प्रक्षेपण किया गया था सन 1988 के आज ही के दिन। सन 1998 के आज के दिन यानी कि 27 नवंबर के दिन पीएचडी कर रहे दो छात्रों लैरी पेज और सर्जी ने सर्च इंजन गूगल की स्थापना की। दुनिया का यह सबसे बड़ा इंटरनल सर्च इंजन है जो आज भी हर शंका का समाधान करता है। सन 2000 के आज के दिन वेनेजुएला की राजधानी काराकस में ओपेक देशों का शिखर सम्मेलन शुरू किया गया था। सन 2002 के आज के दिन न्यूयॉर्क में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की वार्षिक बैठक शुरू किया गया था।

ध्वनि से भी अधिक तेज गति से उड़ने वाले ब्रिटिश एयरलाइंस के कार्गन विमान ने न्यूयॉर्क से लंदन के लिए आखिरी उड़ान भरी थी सन 2003 के आज ही के दिन। सन 2008 के आज ही के दिन चीन के अंतरिक्ष यात्री झाई झिकांग ने पहली बार अंतरिक्ष में चहलकदमी की थी। सन 2020 के आज ही के दिन तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3 कृषि विधेयकों को मंजूरी दी थी। तो श्रोताओं, ये थी कुछ ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाएं जो 27 नवंबर के तारीख के नाम पर दर्ज किए गए।

अब बातें करती हूँ 27 सितंबर को जन्मे कुछ महान व्यक्तियों के बारे में। सन 1871 के आज के दिन बल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई एवं प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, आपका जन्म हुआ था। सन 1932 के आज ही के दिन भारतीय फिल्म निर्देशक यश चोपड़ा का जन्म हुआ था। अब जानकारी 27 सितंबर के दिन हुए निधन हुए कुछ महान व्यक्तियों के बारे में। सन 1833 के आज ही के दिन आधुनिक भारत के जनक और ब्राह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय का निधन इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ था।

सन 2008 के आज ही के दिन हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर महेंद्र कपूर के निधन हुए थे और 1933 के आज ही के दिन सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध कवि कामिनी राय की निधन हुआ था।

श्रोता, अब थोड़ी सी जानकारी बांटती हूँ वर्ल्ड टूरिज्म डे के बारे में, यानी कि विश्व पर्यटन दिवस के बारे में। यह दिवस हर साल 27 सितंबर के दिन मनाया जाता है। 27 सितंबर की तारीख इसीलिए चुनी गई क्योंकि वर्ष 1970 में इसी दिन यूएन के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के कानूनों को अपनाया गया था। पहला आधिकारिक विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 1980 को मनाया गया था। वैश्विक स्तर पर पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा की गई।

हर साल विश्व पर्यटन दिवस का एक थीम रखा जाता है। इस वर्ष यानी कि सन 2026 का थीम है डिजिटल एजेंडा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से पर्यटन का पुनर्निर्माण या पुनर्डिजाइन, यानी कि डिजिटल एजेंडा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू रीडिजाइन टूरिज्म, ये रखा गया है।

अब जानकारी वर्ल्ड डेफ डे यानी कि विश्व बधिर दिवस के बारे में। यह दिवस हर साल सितंबर महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाता है।

इसकी शुरुआत वर्ष 1958 में विश्व वथिर संघ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डिफ WFD द्वारा की गई थी। इस दिवस को मूक बधिर दिवस भी कहा जाता है। यह दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य और महत्व ये है कि मूक बधिर व्यक्तियों के समस्याओं और समाज के प्रति उनके योगदान के बारे में लोगों को जागरूक करना, समाज में संकेत भाषा यानी साइन लैंग्वेज जो मूक बधिर व्यक्तियों के अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है, इसका महत्व और प्रचार प्रसार पर जोर देना, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक समानता में बधिर व्यक्तियों का सहयोग सुनिश्चित करना। और अंत में थोड़ी सी जानकारी बांट लेती हूँ वर्ल्ड रिवर्स डे के बारे में। वर्ल्ड रिवर्स डे यानी विश्व नदी दिवस हर साल सितंबर महीने के चौथे रविवार को मनाया जाता है। इस साल यानी 2026 को यह दिन 27 सितंबर यानी आज मनाया जा रहा है। विश्व नदी दिवस की शुरुआत प्रसिद्ध नदी संरक्षणवादी मार्क एंजेलो द्वारा सन 2005 में की गई थी। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को दुनिया भर की नदियों के महत्व और मीठे पानी के स्रोतों के बारे में जागरूक करना। नदियों की खराब होती पानी प्रदूषण और उनके संरक्षण के लिए जनता तथा समुदायों को प्रेरित करना है। आज का दिन नदियों को बचाने के लिए स्कूल, परिवार तथा विभिन्न संगठनों द्वारा विभिन्न कार्य और सफाई अभियानों का आयोजन किया जाता है ताकि नदियों की स्वच्छता बनी रहे। तो श्रोताओं, ये थी आज का दिन और इसके अंतर्गत हमने आज कुछ जानकारियां बांटे 27 सितंबर के दिन के कुछ विशेष घटनाओं के बारे में। आज के दिन जन्मी तथा परलोक प्राप्ति हुए कई सारे महान व्यक्तियों के बारे में और साथ ही बातें की वर्ल्ड रिवर्स डे, वर्ल्ड डिफ डे और वर्ल्ड टूरिज्म डे के बारे में। और अब श्रोताओं, सुनिए कुछ फिल्मी गीत।

0: आपके गीत। दोस्तों, FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।
1: ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब प्रस्तुत करते हैं बच्चों के लिए कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम अपने नन्हे दोस्तों के लिए लेकर आए हैं कविता, कहानी और साथ ही ढेर सारे फिल्मी गीत। श्रोताओं, एक नन्हे कदम के आहट जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आते हैं और जब ये आहट धीरे धीरे एक सख्त पेड़ में पेड़ के आवाज़ में बदल जाते हैं, बदलने लगते हैं, तो मानो माता पिता और घर के सारे सदस्यों का जो खुशी है वो फूले नहीं समाता। सीखने का और सिखाने का उम्र और समय तब से शुरू होता है जब घर के बड़े और आसपास के बड़े लोग किसी नन्हे बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो उन नन्हे बच्चों से भी वो कुछ सीखते हैं। ये सुनने में शायद अजीब लगता होगा कि एक नन्हे बच्चे से हम क्या सीखें। एक नन्हे बच्चे से हम उनका जो प्यार है, जिसमें निस्वार्थ भाव है, उनके जो हंसी है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, वो हम सीख सकते हैं और उनको हम दुनिया के सारे अच्छाई और सच्चाई सिखा सकते हैं ताकि वो आगे चलकर मेहनती बने, उनका शरीर स्वस्थ हो, शारीरिक और मानसिक स्तर पर वो अच्छे एक इंसान बने। श्रोताओं, हर दिन कुछ नया सीखने का एक बेहतरीन मौका हमें बच्चों के साथ ही मिलता है ताकि उस सीख में बच्चों के जो प्यार है और निस्वार्थ भाव है वही हमें मिलता है। तो बातें करेंगे हम अपने नन्हे दोस्तों के लिए अच्छी अच्छी और सुनाएंगे कविता और एक स्टोरी भी, लेकिन अब सुन लीजिए ये गीत।

अब मैं अपने नन्हा दस्तों को बहुत अधिक बार कहे जाने वाले और बहुत अधिक बार सुनने वाले एक प्रेरणादायक और छोटी कहानी खरगोश और कछुआ के प्रस्तुत करती हूँ, जो मेहनत और कभी हार न मानने की सीख देती है। कहानी इस प्रकार की है। एक जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। खरगोश बहुत तेज दौड़ता था और उसे अपनी तेजी पर बहुत घमंड था। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता था। एक दिन खरगोश ने कछुआ का मजाक उड़ाया और दौड़ने की प्रतियोगिता यानी कि रेस की चुनौती दी। कछुआ मान गया। दौड़ शुरू हुई। खरगोश तेजी से भागा और बहुत आगे निकल गया। उसने सोचा कि कछुआ तो बहुत पीछे है, क्यों ना थोड़ा आराम कर लिया जाए। यह सोचकर वो पेड़ के नीचे सो गया। दूसरी तरफ कछुआ धीरे धीरे लेकिन लगातार चलता रहा। वो सोते हुए खरगोश के पास से गुजरा और रुका नहीं। जब खरगोश की आंख खुली तो उसने भागा और देखा कि कछुआ तो पहले ही फिनिश लाइन पर पार कर चुका था और जीत गया था। तो श्रोताओं, इस जो कहानी है, इस कहानी से हमें ये नैतिक शिक्षा यानी कि मॉरल मिलती है कि लगातार मेहनत और धीरज यानी कि स्लो एंड स्टेडी रखने वाले हमेशा जीतता है। भले ही शुरुआत में वो धीमा क्यों ना हो, हार मान लेना सबसे बड़ी असफलता होती है। हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जो परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ले पाते हैं और वो मायूस हो जाते हैं, और कभी कभी घर के बड़े उनके ये कम नंबर आने पर नाराज़गी जताते हैं। हमें इस बात का खास ध्यान देना चाहिए कि हमें कभी नाराज़गी नहीं जताना चाहिए। बच्चे जितना उनसे हो पाए वो उतना ही नंबर लाने की कोशिश करते हैं। अगर हम उनसे अच्छे से समझाए और उनको अच्छे से सिखाए तो वो सफलता की ओर एक कदम उठा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हार मानकर रुक जाना असफलता का एक कदम होता है और हार ना मानकर आगे चलना सफलता के ओर एक बड़ी कदम होता है। तो श्रोताओं, अब सुनिए और एक गीत।

श्रोताओं, कोशिश और सफलता ये एक कविता है, मैं अपने बच्चों के लिए पेश करती हूँ। बढ़ते चलो तुम आगे हरदम, मन में रखो हमेशा दम। मुश्किल कई अगर आ जाए, सतत प्रयास तुम्हें अपनाए। छोटा सा हो या बड़ा इरादा, सच्चाई से हो हर वादा। मेहनत जो बच्चे मन से करते, वे बालक कभी नहीं डरते। आसमान को छूना है तो रहा नहीं तुम छोड़ो कभी तो। सफलता चूमेगी फिर कदम तुम्हारे, चमकों के बनके तारे न्यारे।

ta, da dum da dum da da dum da.

श्रोताओ, हमारे चारों ओर के सारे बच्चे, यूं कि दुनिया के सारे बच्चे सदा मुस्कुराए, सदा खिलखिलाए और सफलता के आसमान को छुए, इस उम्मीद के साथ हम आज के बच्चों से जुड़े कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। और अब सुनिए समाचार प्रभात, जो आकाशवाणी

0: कि दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, खराब मौसम के बीच चार धाम यात्रा स्थगित। और भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर तिरुवनंतपुरम में। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान को दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमलों को अस्वीकार्य बताया। आतंकवाद पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत को आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बताया और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
3: आतंकवाद शांति के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। अगर इसे किसी देश का समर्थन हासिल हो और इसका मकसद सीमा पार हमले करना हो तो ये वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन जाता है। ऐसी गतिविधियों में शामिल सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आतंकवाद के प्रति कड़ी नीति में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। खासकर इसके वित्तीय पहलुओं का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और उन्हें रोका जाना चाहिए।
2: श्री जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल साउथ के सामने खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से संबंधित बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने बताया कि भारत 78 देशों में करीब 600 विकास परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हर देश को अपनी जरूरतों के अनुसार AI विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रूस सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पक्ष में है। रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
4: तमिलनाडु देश के प्रमुख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME राज्यों में से एक है। राज्यों में कारोबारी एक ही पोर्टल से अलग अलग विभागों से जरूरी मंजूरियां ले सकते हैं। MSME के विकास के लिए राज्य में अलग मंत्रालय भी है। MSME

0: क्षेत्र देश की जीडीपी में करीब 31% का योगदान देता है और कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। कोयम्बटूर में विनिर्माण, कपड़ा और इंजीनियरिंग से जुड़े 80,000 से अधिक पंजीकृत MSME हैं। कोयम्बटूर के लीड बैंक के जिला प्रबंधक कार्तिकेयन ने आकाशवाणी को बताया कि मुद्रा योजना शुरू होने के बाद जिले के उद्यमियों ने कारोबार और उत्पादन बढ़ाने में काफी रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना की 4 श्रेणियों में मिलने वाले ऋण से उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने और वित्तीय जरूरतें पूरी करने में मदद मिली है। तमिलनाडु में कुल 7,59,847 सूक्ष्म, 1,01,861 लघु और 2,818 मध्यम उद्योग पंजीकृत हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
3: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। एक रिपोर्ट।
4: यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेष्टों की पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज केरलम जाएंगे। इस दौरान वे कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति का दोपहर में बालारामपुरम में श्री उथराडोम थिरुनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में तकनीक की भूमिका पर जोर देती है। एक रिपोर्ट।
5: भारत का पर्यटन क्षेत्र देश की आर्थिक तरक्की, रोजगार और लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। देश की GDP में पर्यटन का 5% से अधिक योगदान है। साल 2025 में भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या 428 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ 50 लाख से अधिक हो गई है। भारत ने डिजिटल पर्यटन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ई वीजा और इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं शुरू की गई है। भारत ने 2014 में ई वीजा की शुरुआत की थी, जिससे विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना आसान हो गया है। इस समय 172 देशों के नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध है। नई दिल्ली में आज होने वाले मुख्य कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन पहलों का उद्देश्य टिकाऊ और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण आज चार धाम यात्रा स्थगित रहेगी। एक रिपोर्ट।
6: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के सभी जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवाओं की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पिछले 24 घंटों में उधम सिंह नगर और नैनीताल में सबसे अधिक वर्षा हुई। लगातार बारिश के बीच प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी भी हुई है। इस बीच मौसम की चेतावनी को देखते हुए राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र सतर्क है और संवेदनशील क्षेत्रों, नदी नालों तथा जल भराव वाले इलाकों पर निगरानी रखी जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी मूसलाधार वर्षा से कई जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर है।
7: गुरुवार से शुरू हुई मूसलाधार बारिश राजधानी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, श्रावस्ती और इटावा समेत राज्य के कई हिस्सों में जारी है। 63 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे जगह जगह जलभराव हो गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में सामान्य से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण तापमान में भी भारी गिरावट आई है और फसलों, विशेष तौर पर गन्ना, धान और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उड़ीसा के कई हिस्सों में जारी मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
8: जी धन्यवाद जागृति। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मुकाबला 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला भी खेली जाएगी। और जागृति, अगर बात करें जापान में जारी एशियाई खेलों में, तो भारतीय पुरुष और महिला तीरंदाजी टीमों ने इस प्रतियोगिता में अपने अपने वर्गों के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों की तिकड़ी साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम और कुशल दलाल ने भूटान को करीबी अंतर से हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। महिलाओं की टीम चिकिता तनिपार्थी, ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रतिका प्रदीप ने कजाकिस्तान को हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जगह पक्की की। महिलाओं के शॉर्टबोर्ड स्पर्धा में भी शुगर शांति गायन और कमाली प्रकाश दोनों तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। भारत ने अब तक एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य पदकों सहित कुल 30 पदक जीते हैं।
1: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में कल एक विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई और 35 घायल हो गए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP ने हमले की जिम्मेदारी ली है। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
9: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने निर्वाचन आयोग की बैठक को प्रमुखता दी है। विशेष गहन पुनरीक्षण के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। दैनिक भास्कर ने डिफेंस रिफॉर्म शीर्षक से लिखा है, रक्षा सौदों की मंजूरी में लगने वाले समय को घटाने की तैयारी में सरकार, छोटे रक्षा सौदों को कैबिनेट से छूट पर विचार। दैनिक जागरण ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को प्रमुखता दी है। पाकिस्तान आतंकवाद का सीरियल प्रैक्टिशनर, कहा पश्चिम एशिया में व्यापारिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। जापान एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर हिंदुस्तान ने गर्व शीर्षक से शब्द दिए हैं। कबड्डी में भारत को दोहरा स्वर्ण, निशानेबाज और एथलीट भी चमके। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, कबड्डी में भारत का सोने पर सुहागा। राजस्थान पत्रिका ने विश्व पर्यटन दिवस पर विशेष खबर दी है, नींद, खामोशी, नो फोन और गांव की धीमी जिंदगी बनी लोगों की नई मंजिल। पहले दुनिया देखने निकले थे, अब दुनिया से दूर होने, मन की शांति के लिए करते हैं यात्रा। नवभारत टाइम्स ने स्वास्थ्य के नजरिए से एक शोध प्रकाशित किया है, चाय के साथ रोज 100 ग्राम नमकीन बना सकती है बीमार। पैकेज चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, मीठे फ्लेवर्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड मीट में कैलोरी ज्यादा है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, खराब मौसम के बीच चार धाम यात्रा स्थगित। और भारत वेस्टइंडीज के बीच तीन मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज

0: दोपहर तिरुवनंतपुरम में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोता, अभी आपने सुने समाचार प्रभात जो आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले किए गए थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब प्रस्तुत करते हैं देशभक्ति गीत।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। तो इसके साथ ही ये कार्यक्रम ही पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब से कुछ क्षणों में आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज रिले किए जाएंगे।

0: केंद्र से रिले किए गए थे।
1: की लॉटरी मुझे, वाह।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम सुरों की रंगोली। इस कार्यक्रम में आज सुनिए सुरेश वादेकर के गाए कुछ बेहतरीन नगमे।

श्रोताओं, अभी आपने सुने कार्यक्रम सुरों की रंगोली। आज का कलाकार थे सुरेश वादेकर, और इसके साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफ लंग केंद्र है। अब से कुछ ही क्षण में आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से पुआर आंसोलिक बातोड़ी रिले किए जाएंगे।

पेश करते हैं खेलमा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज सुनिए कुछ फोक गीत। कलाकार है फुनस्याम थे नेइबम और उनके साथी।

श्रोताओं, अभी आपने सुने फुनस्याम थे नेइबम और उनके साथियों के गाए कुछ लोक संगीत आज के खेलमा कार्यक्रम में। इसके साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम में अब प्रस्तुत करते हैं रांखल कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनिए कुछ पारंपरिक रांखल गीत लेचोंगथोई बैंकांग और उनके साथियों के आवाज़ों में।

श्रोताओं, अभी आपने सुनिए लिचनथोर ब्यांकंग और उनके साथियों के गाए कुछ पारंपरिक रांखल गीत आज के रांखल कार्यक्रम में। इसके साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। श्रोताओं, इस समय हम पेश कर रहे हैं स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब सुनिए जयंतिया कार्यक्रम। जयंतिया कार्यक्रम में आज सुनिए मेलाम्फालंग पायरांगे और उनके साथियों के गाए कुछ भक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुने मेलाम भलंग पायरांगे और उनके साथियों के गाए कुछ भक्ति गीत आज के जयंतिया कार्यक्रम के अंतर्गत। और इसके साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम में अब हम प्रस्तुत करते हैं ब्याते कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनिए कुछ भक्ति गीत। आज का कलाकार है मुंगचांगी नामपुई और उनके साथी।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुने मांचंगी नामपुई और उनके साथियों के गाए कुछ भक्ति गीत आज के ब्याते कार्यक्रम में। इसके साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है और साथ ही स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के ये कड़ी यहीं पर समाप्त होता है। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के अगली कड़ी आप सुन पाएंगे हमारे दूसरी सभा में शाम के 6:05 से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब से कुछ क्षणों में आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
1: शाम 4 बजे सिर्फ

0: Camera, action!
1: La la la la, la la la, la la la la la, la la la la.
2: दोस्तों नमस्कार, एक गायिका जिनका नाम था सुषमा श्रेष्ठ।

0: पूर्णिमा के नाम से वो खूब मशहूर हुई। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। तो आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: सुषमा जी, आज फिर एक बार आपका हम स्वागत करते हैं और चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं।
2: तो इतने सारे संगीतकारों के साथ आपने काम किया, इतने बड़े महान लोग, एक बाल गायिका के रूप में ये अनुभव आपका कैसा रहा? क्योंकि आप लगभग छोटी ही थी तब।
3: हाँ हाँ।
2: और किसके साथ ज्यादा कंफर्ट जोन में रही?
3: नहीं मंदाकिनी जी, मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि मैं किन दिग्गजों के सामने खड़ी हूँ, मैं किन दिग्गजों के साथ काम कर रही हूँ, ये कौन है जो मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। जैसे मदन मोहन जी के बारे में, उनके गुस्से के बारे में बहुत सुना था।
2: जी बिल्कुल।
3: अब उनके पास गई वो कोशिश फिल्म, उसमें दो ही गाने थे मंदाकिनी जी, एक रफी साहब का था और एक मेरा। तो मैं जब गई उनके पेडर रोड के फ्लैट में, बहुत बड़ा हॉल था उनका और सारे कोरस सिंगर्स, मैं उन्हें सहगायक कहती हूँ, कोरस सिंगर्स नहीं कहती, वो बैठे थे, कुछ म्यूजिशियंस भी थे, वो टेनिस खेलने गए थे और हम सब बैठे हैं। थोड़ी देर में आए, आते ही बोले, सब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है। वो बच्चा तो मतलब मैं इतनी छोटी सी थी तब। तो ये है, वो जो मैसेंजर्स हमारे होते थे जो हमको रिकॉर्डिंग्स के मैसेज दिया करते थे, जागीरदार जी बोले, साहब जी ये इतनी छोटी, आजा बेटा गाना कौन लिखेगा, तो मौसी लिखती थी।
2: अच्छा।
3: जैसे उन्होंने गाना शुरू किया, बोला देखो अब मैं सुनाता हूँ आराम से, हाँ डरने का नहीं। अब उन्होंने शुरू किया, अगर मैं अपनी जुबानी कहूँ तो मेरा पिकअप बहुत फास्ट है मंदाकिनी जी,
2: जी
3: बहुत फास्ट। तो जैसे ही मदन मोहन जी ने गाना गाया तो मैं रुकी, क्योंकि ये तमीज सिखाई गई थी कि जब तक वो नहीं कहेंगे तुम गाओ, तुम्हें याद भी हो गया तो।
2: अच्छा।
3: तो मुझे देखा, बोले एक बार और गाऊं, कहा नहीं मैं गाऊं, तो बोले गाओगी कहाँ। तो मैंने शुरू किया, वो गाना था कुछ कोशिश फिल्म का गाना था, मुझे हमसे है वतन हमारा और वतन से हम, देश है धर्म हमारा, देश है करम, तररम परम परम पतररम, ये गाना था। तो मैंने कहा मैं गाऊं, तो बोले गाओ। मैंने शुरू किया, उन्होंने बाजा बंद किया, अब सब डर गए कि भाई अब कुछ तो होगा। बोले ए जागीरदार, सबसे बड़ा चॉकलेट लेके आए इस बच्ची के लिए। और मुझे देखा, तुम्हारा पिकअप तो बहुत अच्छा है बेटा।
2: बिल्कुल।
3: तो मौसी को पूछा अब सीखती है, मौसी ने कहा हाँ भी थोड़ा सीखने लगी है। अरे सिखाइए इसे, ये बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा, इतना भी काफी था।
2: हाँ,
3: उनके लिए इतना कहना ही
2: बहुत
3: काफी
2: बड़ी
3: था।
2: बात।
3: ये मुझे लगता है मेरी जिंदगी के कॉम्प्लीमेंट्स में इसे सुनहरे अक्षरों से मैं लिखूं तो भी कम है,
2: कम है। जी
3: है ना।
2: जी, जी.
3: उनके साथ तो ये था मेरा, नौशाद साहब।
2: उनके
3: बंगले पे बुलाया उन्होंने कार्टर रोड। और मैं गई, उस वक्त मेरे उस्ताद ताज अहमद खान साहब, जिनसे मैंने डैडी के बाद तकरीबन 15-16 साल मैंने उनसे तालीम जी, और उनको भेजा मेरे पास कल्याण जी अंकल ने, वो भी एक अलग कहानी है, मैं बाद में बताऊंगी। तो अबू साहब, मैं उन्हें अबू साहब कहती थी
2: जी।
3: तो उन्होंने कहा कि नौशाद साहब के पास जब जा रही हो तो मैं भी चलूंगा, क्योंकि मैं उन्हें वो चीजें सुनाना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हें सिखाया है।
2: जी।
3: तो हम गए और वो भी टेनिस खेलने गए थे।
2: अच्छा।
3: वो दिलीप साहब के साथ खेलते
2: हाँ,
3: थे टेनिस।
2: हाँ, हाँ।
3: शाम को हम पहुंचे, उन्होंने, उनका म्यूजिक रूम था बंगले पे, बैठे बैठे आए, माफ कीजिए मुझे देर हो गई, चेंज करके फ्रेश होके आए। तो अबू साहब ने, हाँ हाँ खान साहब बताइए, वो तो जानते थे उन्हें, बोले बच्ची को कुछ सिखाया है आपको, हाँ हाँ हाँ प्लीज सुनाइए सुनाइए। तो मैंने कुछ गजलें उनको सुनाई
2: जी।
3: और सुनकर मंदाकिनी जी तकरीबन 6:30 बजे मैंने शुरू किया, एक गजल सुनाई, बोले कुछ और सुनाओ बेटा, फिर और, करते करते 10 बज गए,
2: रात की,
3: आप यकीन नहीं करोगे। और बस बच्चे को कुछ खिलाओ, बच्चा और कुछ सुनाओ। और पता उन्होंने कितनी बड़ी बात वो बोले, मंदाकिनी जी बोले, बेटा काफी देर हो गई है, मैं तुम्हें थका रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। वो इसीलिए कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम ऐसा गाती हो, और मैंने जिस गाने के लिए तुम्हें बुलाया है उसमें एक दो ही लाइन्स हैं, तो क्या तुम गाना पसंद करोगे?
2: अरे
3: तो आबू साहब ने कहा कि वो सुनहरा संसार आई ना, दो फिल्में आई थी उनकी उस वक्त, बिल्कुल आखिर आखिर में सुनहरा संसार का, उसमें एक गाना था, मैं बताता, वो भी रफी साहब के साथ, बाबुल के घर के बाद पी की गली आती है, देवर भाभी में दर टली जाती, फिर था हम जो तुझे छेड़े ओ भाभी तो क्या है खराबी, इतना ही था बस
2: जी।
3: तो अबू साहब ने कहा, नौशाद जी आप क्या बात कर रहे हैं, आपने हमारी बच्ची को बुलाया, जहे नसीब, हम तो सोच भी नहीं सकते कि ये इस काबिल है कि आपके सामने बैठकर आपको कुछ सुना सके। बहुत उसके बाद उत्तम भैया उनके असिस्टेंट
2: जी,
3: तो उत्तम भैया ने बहुत, वो तो हमेशा ही हेल्प करते थे, तो बस फिर वो गाना मैंने गाया, फिर एक दो डबिंग्स के लिए भी बुलाया उन्होंने।
2: आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: सुषमा जी, आपकी बातें हम सुन रहे हैं और हमें लगता है कि आपने अपनी एक अलग स्टाइल बनाई। तो अलग स्टाइल बनाने का जो विचार है, ये आपके मन में कैसे आया? हमारे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं।
1: एक बात आपको आज बताना चाहूंगी।
0: जी जी।
1: मैं अपने श्रोताओं को
0: जी,
1: एक गाना मैं डब कर रही थी जिसे लता जी गाने वाली थी, ठीक है? और सुनिए, हेमा मालिनी जी पर वो फिल्माया जाने वाला था। तो जब मैंने गाना शुरू किया तो अंदर तो मेरी मौसी और सब थे, तो जो फिल्म सेंटर के रिकॉर्डिस्ट हुआ करते थे कौशिक बाबा, नौशाद साहब ने उनको पूछा, कौशिक बाबा कैसा गा रही है बच्ची? क्या मैं बंदा की नहीं जी, 12 साल की थी। तो कौशिक बाबा ने झट से कहा कि लता वाली बात नहीं है। तो अच्छा, पता है क्या क्या कहा नौशाद साहब ने?
0: हाँ।
1: बोले मुझे लता नहीं चाहिए, मुझे सुषमा चाहिए।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: इसलिए मैं उसे उसके तरीके से गाने दे रहा हूं।
0: जी जी जी जी जी।
1: तब मुझे ये एहसास हुआ मंदाकिनी जी, मैंने इन चीजों में बहुत, मतलब कैसे कहूं, मैं वो पहले से ही बहुत जहनी थी मैं। तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि इसका मतलब मैं अपनी एक स्टाइल बना सकती हूँ।
0: बिल्कुल,
1: मतलब मैं अपनी स्टाइल बनाऊं तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। वो उस वक्त से ही वो दिमाग मेरा चलने लगा।
0: और इतनी छोटी उम्र में आपने इस बात को पकड़ लिया।
1: आप अगर सुनो, देखो हाँ। मंदाकिनी जी, मैं आपको एक छोटा सा एक मिसाल देती हूँ। है ना बोलो पापा को मम्मी से प्यार है, पापा मम्मी मिलते हैं चुपके चुपके हंसते हैं, जाने क्या क्या कहते हैं बातें करते रहते हैं। वो ही फॉलो किया मैंने, दिल तुम मेरा तो उस पे बात पे आ गई। पर वही
0: जी,
1: तो वो बड़ी होती गई, वो जहन में था कि मुझे अपनी एक स्टाइल बनानी।
0: जी बिल्कुल,
1: वो था बस।
0: तो, और उसे पर्दे पर देखना भी उतना ही अच्छा लगता था जब अभिनेत्री उसको उसी तरीके से अपने होठों को बनाकर गाती है, तो बड़ा मजेदार वो सीन लगता है।
1: और जहां तक प्रभावित होने का सवाल है मंदाकिनी जी, आपने जो सवाल किया, प्रभावित तो मैं एक ही इंसान से जिंदगी में हुई, एक इंसान बतौर एक इंसान और बतौर एक म्यूजिक कंपोजर, और वो है वन एंड ओनली मिस्टर आरडी बर्मन
0: जी,
1: मेरे पंचमदा
0: जी।
1: इतनी प्रभावित कि मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती कि मैं उन्हें अपनी जिंदगी में कौन सी जगह देती हूं।
0: जी,
1: तो
0: होता है जब एक कलाकार दूसरे कलाकार के साथ संगीत विधा को जीता है, तो आप कहीं ना कहीं इतने प्रभावित हो जाते हैं कि आप उनमें खो जाते हैं। इस तरह की
1: उन्होंने मुझे परफ्यूम कैसे लगाना वो भी सिखाया। इतना मतलब हमारा एक बहुत ही अनूठा रिश्ता था,
0: बॉन्डिंग
1: बहुत
0: थी,
1: बहुत
0: हाँ।
1: बहुत अलग।
0: तो क्यों ना पंचम दा का ही गीत सुन लिया जाए, जिसमें आपने अपनी आवाज दी।
1: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई।
0: थोड़ा सा गाएंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा, आज सामने सुनने का मौका मिला है हमें भी।
1: कोशिश करूंगी
0: जी,
1: गला बंद है पर कोशिश करूंगी।
0: जी बिल्कुल।
1: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है

0: वाह वाह, बहुत खूब सुषमा जी। और इसमें आप जब कुछ वर्डिंग्स भी बोलती हैं जो
1: जी,
0: वो बच्चा अपने
1: वो
0: पिता
1: मुझे पंचमदा ने सिखाया, पता है उन्होंने कहा वो शर्मिला जी का बेटा है वो
0: जी,
1: शर्मिला जी कैसे बोलती हैं,
0: हाँ।
1: मैं मिमिक्री अच्छा करती हूँ तो मैंने थोड़ा सा बोला यही चाहिए मुझे, हाँ आगे क्या है डैडी,
0: हाँ।
1: मैं तो भूल ही गया मुझे वो चाहिए। बहुत यादें आपने ताजा की आज,
0: जी जी
1: मैं इसी बात पे आऊंगी। कुदरत जब किसी को बनाना चाहता है ना, तो वो उस वक्त वो एक ऐसा माया जाल फेर देता है, फैला देता है कि उस वक्त वो इंसान जो उस सिचुएशन में रहता है ना, जैसे मैं
0: जी,
1: मुझे खुद को भी इस बात, अगर आप मुझे आज पूछेंगी कि उस रिकॉर्डिंग के दौरान क्या हुआ क्या नहीं, हालांकि ये गाना मेरे लिए नहीं था मंदाकिनी जी,
0: अच्छा
1: इस गाने को लता जी गाने वाली थी,
0: अच्छा
1: जी मुझे तो वो पंचमदा तो कोशिश वो उसमें लगे ही रहते थे कि कहां से इसको मैं कौन सा एक मौका दूं, एक लाइन ही दे दूं, एक डायलॉग ही दे दूं, तो वो तो रुके हुए थे कि कब मैं, क्योंकि बर्मन चाचा बोल चुके थे कि मैं तुझे नहीं दे पाया
0: जी,
1: कोई भी गाना अच्छा, पर तेरा दादा तुझे तेरी जिंदगी का सबसे प्यारा गाना गवाएगा ना पंचम, गवाएगा ना पंचम।
0: अरे
1: तो उन्होंने फोन करके ये कह के बुलाया कि ये गाना डबिंग के लिए प्रॉक्सी, तो अगर तुम गा गई तो भाई रख सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है। तो ये दो पार्ट्स में है गाना, आपको भी याद होगा, एक किशोर काका का सोलो है, वो सोलो पार्ट गाकर वहीं फिल्म सेंटर में किशोर काका आराम कर रहे थे, दो शिफ्ट्स में काम होता था तब, 9 से 1 और फिर 3 से आगे,
0: अच्छा
1: और फिर ओवर टाइम, तो वहीं सोए थे वो, उन्हीं का गाया हुआ मुझे पोर्शन पंचमदा ने बोला सुनो, लास्ट अंतरा लिखो और देखो, लर्न द सॉन्ग। तब मुझे भूपी अंकल और उत्तम भैया ने ही मदद मेरी की
0: जी,
1: बहुत ज्यादा,
0: जी
1: गाना सीखा मैंने, फिर रिहर्सल हुई, जब माइक पे गए, हालांकि किशोर काका काफी कॉन्फिडेंट थे,
0: वो कि आप गा लेंगी,
1: हाँ बोले वो गाएगी गाएगी पंचम, वो गाएगी गाएगी, छोड़ यार डब वब का छोड़, वो ही गाएगी। तो वो बोले देखता हूँ, डायरेक्टर मनमोहन देसाई जी,
0: जी
1: जब वो आए उन्होंने सुना, फिर उन्होंने अप्रूवल दिया कि नहीं डब करने की ज़रूरत नहीं है, ये आवाज़ ये बच्चा इतना अच्छा गा रहा है और इसका जो इसकी आवाज़ जो है वो मेरे फिल्म के कैरेक्टर को बिल्कुल
0: सूट करती है,
1: इस करके ये गाना
0: क्या
1: मुझे मिला।
0: बात है। तो चलिए एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का, बताइए
1: प्लीज
0: तेरा
1: प्लीज,
0: मुझसे है पहले का
1: बिल्कुल
0: नाता कोई,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आप ही का गाया हुआ सुन
1: जी
0: लीजिए।
1: जी

0: मेरी जिंदगी का, मैं कैसे कहूँ, मेरी जिंदगी की पहचान
1: जी
0: ये
1: जी
0: गाना बन गया,
1: जी बिल्कुल,
0: तेरा मुझसे है पहले का
1: नाता
0: नाता कोई।
1: कोई।
0: कोविड के वक्त कितने लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे, फोन, जब उनके घर में कोई बीमार हो, कितना ऐसा हुआ है कि ये हमारा फेवरेट गाना
1: क्या
0: है।
1: बात है।
0: एक कोई बेटा अपनी माँ के लिए गा रहा है, कोई पत्नी अपने पति, ये मतलब, और मुझे वीडियोस बना बना के भेजे हैं
1: जी
0: लोगों ने,
1: जी जी
0: किसी किसी के थ्रू। लेकिन मंदाकिनी जी, इस फिल्म का एक और गाना था, ओ मेरे बेटे सुन, उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए, पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा जिसने है सबको जन्म।

0: बुलाना तो वो ही रखवाला है, उसी को बुलाना तो आ जा। हाँ, ये जो वो बोलते थे ना मंदाकिनी, मैं डायनामिक्स की जहां बात कर रही हूं,
1: जी जी
0: देखिए
1: जी
0: मैं जो बच्चे सुन रहे हैं अगर उनके लिए ये है सिर्फ, यू नो कि तारा रा रा रा, ये हुआ खुले गले का, फिर कहा ना भुलाना तो ये रा रा रा, और सॉफ्ट उसी को बुलाना तो आ जा आ जा।
1: क्या बात है, क्या
0: तो
1: बात है,
0: ये मैंने
1: ये
0: उनसे
1: आधार का
0: सीखा,
1: जी, ये पंचम धाम में ही
0: या
1: ये गुण
0: ये
1: थे
0: उतार चढ़ाव
1: जी
0: डायनामिक समझे से
1: जी
0: कहते,
1: जी जी
0: कहाँ कितना आपको जोर देना
1: देना
0: है,
1: है,
0: कहाँ आपको कितना सॉफ्ट करना है,
1: वाह
0: कहाँ आपको कितना फेड इन फेड आउट करना है,
1: वाह
0: ये वो हमेशा मेरा हाथ पकड़ के पता नहीं यही अंतरा गाते थे।
1: जी, मतलब आप कितनी भाग्यशाली रही कि आपको इतने बड़े लोगों का
0: हाँ,
1: प्यार मिला, स्नेह
0: बहुत
1: मिला, उस
0: बहुत
1: छत्र छाया में आपने
0: बिल्कुल,
1: सुषमा श्रेष्ठ का जीवन जिया है,
0: ये मेरा
1: जो
0: भाग्य ही है।
1: नसीब नहीं
0: हाँ हाँ
1: मिलता है, अच्छे
0: बिल्कुल,
1: अच्छों को नहीं मिला है,
0: नहीं
1: अभी
0: मिल,
1: भी ऐसी बाल गायिकाएं नहीं है
0: ना ना
1: जिनको
0: ना
1: हम उंगलियों पे गिने या उनका नाम ले
0: ना
1: सके
0: ना,
1: सुषमा श्रेष्ठ के अलावा।

0: तो इसके बाद फिर मैंने देखिए ना कैसे दिग्गजों के साथ काम किया। लता जी, उनके साथ पहले तो मैंने गाया था फिल्म, एक जॉय बांग्लादेश आई थी, IS जौहर साहब की फिल्म
1: हाँ
0: थी,
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: ना,
1: हाँ जी
0: बांग्लादेश वॉर के
1: जी
0: ऊपर वो
1: जी
0: था। वो पहली बार मैं उनसे मिली थी। हाँ, उसके बाद मैंने गाया उनके साथ यादों की बारात।
1: बारात, वाह।
0: ये गाना मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये बहुत ही, मतलब मैं समझती हूँ, एक और मेरे दिल के करीब का गाना
1: बिल्कुल, ये हमारे दिल के
0: है
1: भी
0: ना।
1: करीब उतना ही।
0: और इसका ऐसा है ना मंदाकिनी जी, वो तीन तीन बच्चे बताए हैं ना, सबसे छोटा जो बच्चा वो आमिर खान है।
1: हाँ, बिल्कुल जी।
0: तो मुझे क्या मालूम कि आगे चल के ये इतना बड़ा स्टार बनेगा और मैं इसके लिए मिस्टर लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू गाऊंगी।
1: जी बिल्कुल,
0: तो वो गाना मैंने, और ये गाना मेरे साथ गाया पद्मिनी, पद्मिनी
1: कोल्हापुरी
0: कोल्हापुरी।
1: ने जी।
0: लेकिन इसके क्या होता, वहाँ प्रोडक्शन कंट्रोलर्स आते थे जो गाने के पूरी डिटेल्स, मतलब लिरिक्स के साथ शूटिंग के लिए, वो नागरा क्या बोलते हैं ना, नागरा, वो लेकर
1: जी
0: आते
1: जी
0: थे।
1: जी जी
0: तो वहाँ एक गलती प्रोडक्शन वालों की ये हुई कि उन्होंने जैकेट, मतलब उस गाने में मेरा नाम नहीं दिया,
1: अच्छा,
0: जिसको लेकर नासिर साहब ने खुद मुझे फोन किया, मंदाकिनी जी
1: नासिर हुसैन साहब
0: जी,
1: ने।
0: कि मैं बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, पर
1: अरे
0: अब सब कुछ चला गया है, अब वो टाइटल्स सब कुछ हो गया, अब
1: हाँ
0: क्या।
1: हाँ
0: नहीं, मैंने
1: हाँ
0: कहा अंकल आप प्लीज ऐसा मत कहिए, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि एक तो मैं आपके प्रोडक्शन में गा रही हूँ और मैं लता जी के साथ गा रही हूँ,
1: सबसे बड़ी
0: वही
1: बात।
0: मेरे लिए काफी है।
1: जी।
0: इतनी दुआएं दी उन्होंने, बोला मैं तुझे फिर गवाऊंगा, नहीं मैं तुझे गवाता रहूंगा। फिर ये तो यादों की बारात, वो गाना बजाएं,
1: यादों की
0: यादों
1: बारात
0: की
1: निकली
0: बारात
1: है आप,
0: निकली है
1: पर
0: आज।
1: आपको गाना
0: हाँ
1: होगा, शर्त यही है।
0: प्लीज, मैं कोशिश करूंगी।

0: सपनों की शहनाई बीते दिन। देखिए मैं जो कह रही हूं ना, फेड इन फेड आउट, पुश बैक
1: जी
0: पुश बैक,
1: जी
0: वो इनकी ये स्टाइल मैंने पंचम दास से
1: जी
0: सी।
1: जी
0: डा डा रा रा रा रा रा रा, आप समझे?
1: वो खुद भी ऐसे ही
0: डारा,
1: गा
0: हाँ
1: देते हैं
0: बिल्कुल
1: जी।
0: डारा।

0: बात कर रहे हैं हम आपके बचपन की
1: जी।
0: और अब सुषमा श्रेष्ठ के उस आखिरी मोड़ पर हम आ गए हैं जहां हम कहना चाहेंगे कि कुछ गाने ऐसे थे जैसे कि क्या हुआ तेरा वादा, तेरी है जमी तेरा आसमान, और सबसे बड़ी बात
1: धर्म
0: चंद्रा की फिल्म
1: धर्म करम भी था,
0: धर्म
1: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, मुकेश अंकल के साथ,
0: और एन चंद्रा की फिल्म अंकुश का इतनी शक्ति हमें देना दादा, जिसमें आपने पुष्पा पाकधरी के साथ
1: बिल्कुल।
0: तो ये गीत बड़ा भावनात्मक गीत था उस उम्र में, वो भावनात्मक दृष्टिकोण कैसे आपके भीतर आया, इस गीत को गाना आसान नहीं था?
1: मंदाकिनी जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन से ही वैसी थी। देखिए ना, मैंने पहला गाना जो उठाया गाने के लिए बचपन में भी, वो था रोतड़ू गाना, कांटों की दुनिया है तुझसे। फिर मैं गाती थी एक तो नाम, ये मेरा चॉइस रहा
0: जी,
1: है
0: जी।
1: सिर्फ मैं ना वर्ड्स का गड़बड़ करती थी, तो एक तू ना मिला को मैं चूना मिला बोलती।
0: अच्छा।
1: और डैडी बहुत हंसते थे और बार बार गवाते थे और करेक्ट नहीं करते थे कि उसको चूना मिला बोलने दो। तो चॉइस मेरा यही रहा है। ये अलग बात है कि आगे चल के मुझे अलग स्टाइल के गाने गवाए गए, वो एक अपनी कहानी है, लेकिन चॉइस तो मेरा यही रहा है। तो वो जो एक मैं बोलूंगी कि भाव से गाना जिसे कहते हैं, प्लेबैक सिंगिंग जिसे हम कहते हैं, हाँ, माफी चाहूंगी सारे दिग्गजों से, मैं माफी चाहूंगी
0: जी,
1: लेकिन प्लेबैक सिंगिंग एक बहुत ही अलग गेम है।
0: विधा है,
1: बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कोई भी इसे ठीक तरह से विस्तार में समझा पाएगा कि ये क्या है। लेकिन प्लेबैक सिंगर्स जो है ना, वो खास एक ढांचे में वो उनको ढाल के भेजता है, ऐसा मेरा मानना है। तो वो मेरे में, मुझे लगता है बचपन से था प्लेबैक सिंगिंग। तो ये सब गाने भी जब मैंने गाए, जैसे एक दिन बिक जाएगा माटी के, मैं ठीक समझ जाती थी कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि वो गाना भी पंचमदा ने जबरदस्ती मुझे गवाया है। राज साहब की फिल्म बन रही है तो आर के बैनर में इसका एक गाना होना ही चाहिए। राज साहब प्लीज, आप तो आप ही की फिल्म है, एक सिचुएशन बनाओ। फिर तेरा मुझसे है पहले का, उनको सुनाया, देखिए क्या गाती है, क्या गाती है, कर दो ना। अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसे करके उन्होंने वो सिचुएशन बनाई, मुकेश अंकल के साथ मुझे गवाया। तो मुझे ठीक मालूम था कि उनको वो तरम पम कैसे चाहिए, तरम पम। उसमें राज साहब ने कहा भी मुकेश अंकल को,
0: जी
1: ए मुकेश चंद, वो बच्चा बोल रहा है वैसा तरम पम नहीं आ रहा है तुम्हारा।
0: अरे
1: पर उनके उनका बड़प्पन देखिए, ये पहले भी एक बार मैं मुकेश झट से बताती हूँ, मुकेश अंकल के साथ मैंने जो पहला गाना गाया वो बापीदा की पहली फिल्म थी
0: जी,
1: नन्हा शिकारी।
0: अच्छा।
1: हाँ, ये मुखर्जी ब्रदर्स यानी काजोल के चाचा पिताजी, काजोल के पिताजी उसके डायरेक्टर थे। तो वो बापीदा की पहली फिल्म थी और उसमें जब हम रिहर्सल कर रहे थे तो बापीदा की मम्मी ने मुकेश अंकल से कहा कि तुम ना ऊपर के सुर को, क्योंकि उसका अंतरा था, चाहे मझधार में नैया हो, वो उसको तुम ज्यादा मत खेचो, तोड़ दो, नहीं तो तुम बेसुरा हो जाता है, ऐसे बोली वो। अब सब साइलेंस के, अब तो गदा पड़ी। लेकिन मुकेश अंकल की बढ़ाई देखिए, बड़प्पन उनका देखिए, वो बाजा बजा कर गाते थे, इवन रिकॉर्डिंग्स में, वो हंसने लगे और बोले ठीक कह रही आप।
0: अरे
1: बड़प्पन देखिए,
0: क्या बात है।
1: वहां मैंने ये एक और, मैं बहुत नोट करती थी ये सब बातें,
0: ये नम्रता,
1: ये नम्रता होना, अपनी कमजोरी को समझना, जानना और एक्सेप्ट करना, उसके लिए भी बहुत हिम्मत लगती है।
0: और एक बच्चे के सामने जब कहा जा रहा हो उसको अप्रिशिएट करते हुए,
1: और वही बात इस गाने में भी हुई कि मुकेश चंद वो तरम पम बच्चे की तरह, तो हंसने लगे, बोले अरे बच्चा तू तो हमेशा फंसाती है मुझे।
0: अरे
1: राज, बच्चा तरम पम बोलेगा और मैं बोलूं, उसमें फर्क तो होगा। अरे फिर भी मुकेश चंद देख वो क्या, अच्छा बता बेटा कैसे बोल रही है, तरम पम तरम पम, नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा राज, उसी से बोलो, उसी से बुलवाओ,
0: क्या
1: नहीं तुम्हारे अंतरे में तुम बोलोगे, चलो ठीक है मुकेश चंद बोल दो जैसे बोल रहे हो। तो ये जो मैंने सब देखा, ये माहौल, एक वो जो कॉमरेडशिप, एक एक्सेप्टेंस
0: बिल्कुल
1: कि नहीं मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूंगा, जो मैं नहीं कर सकता वो मैं नहीं करूंगा,
0: बिल्कुल इसको इसको स्वीकार कर लेना,
1: ये ईमानदारी
0: जी
1: है
0: जी,
1: ना
0: जी,
1: ये सब मैंने सीखा मंदाकिनी जी,
0: जी
1: वो अगर चाहे तो थोड़ा सा गाना प्लीज बजा दीजिए
0: जी,
1: क्यों मैं समझती हूँ हर कलाकार के लिए ये वो है
0: फिल्म धर्म कर्म का
1: वो जो अंतरा है कि
0: हाँ।
1: ना हो बस में तेरे कुछ भी माना,

0: लिख दिन बिक
1: क्या
0: जाएगा,
1: बात है,
0: एक दिन बिक जाएगा
1: माटी
0: माटी
1: के
0: के मोल,
1: मूल
0: ये हर
1: जैसे।
0: कलाकार के लिए है। अगर आप बजा सकें तो प्लीज मेरे लिए ये
1: बिल्कुल
0: गाना
1: बिल्कुल, ये
0: बजाइए।
1: गाना हम बजाएंगे और हमारे
0: जी
1: श्रोता सुनना भी चाहेंगे, तो चलिए सुनते हैं
0: जी
1: ये गीत।
0: ना।

0: इस गीत को सुनने के बाद तो देखिए रोंगटे खड़े से हो गए हैं, और हर वक्त जब इस गीत को हम सुनते हैं तो वाकई जीवन की सच्चाई हमें समझ आती है कि किस तरह से जीवन को जीना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे एन चंद्रा की फिल्म अंकुश की, इतनी शक्ति हमें देना चाहता, ये आपका शायद अंतिम गाना था।
1: सुषमा श्रेष्ठा के नाम से गाया हुआ मेरा अंतिम गीत था।
0: जी जी।
1: और क्या होता था मंदाकिनी जी, मैं अगर थोड़ा सा जल्दी से आपको बताऊं, जैसे मैंने क्या हुआ तेरा वादा रफी साहब के साथ गाया था, तो उसमें तो मैंने शिवांगी कोल्हापुरे जो शक्ति कपूर जी की बीवी और श्रद्धा कपूर और श्रद्धा कपूर की मां
0: है,
1: तो उसके साथ गाया था ये गाना। तो वहां भी जब वो अंतरे में भूलेगा दिल, अब मैं ये किस्मत की बात जहां करती हूँ, लेकिन उस गाने से मेरी पहचान बनी। मैं जहां जाती हूँ मुझे वो गाना गाने के लिए मजबूर करते हैं लोग, वो गाना मेरा है नहीं वैसे, लेकिन इट्स हम डुएट ही बोलेंगे उसे, है ना। तो भाग्य ने मेरा बहुत साथ दिया मंदाकिनी,
0: और उस गाने के बगैर पूर्णिमा जी अधूरी लगती हैं।
1: और नासिर साहब, नासिर अंकल ने कहा, मैं तुझे बोला था ना बेटा, मैं बार बार बुलाऊंगा तुझे, मुझे तू बहुत अच्छी लगती है, फोन करके माफी। क्या मतलब, वो कौन थे वो, मैं क्या थी उनके आगे और क्या हूं, इज नासिर हुसैन। और मेरी मेरी किस्मत देखिए, एक के नडियाड वाला फिल्म्स, आगले लग जा, तेरा मुझसे है पहले, आज मैंने उनके पोते के लिए, वो हम पूर्णिमा पर जब आएंगे तो वो गाना जरूर बजवाऊंगी आपसे, साजिद के साथ उनके पोते के साथ काम किया
0: जी,
1: इतनी मतलब
0: बड़ी बात है, और ताउम्र याद रहने वाली बात।
1: और ये आखिरी गीत, इतनी शक्ति, हमने सोचा ही नहीं था मंदाकिनी जी, कुलदीप सिंह जी ने ऑफ कोर्स गाना कंपोज किया, मैं उनको पापा जी कहती हूँ, और लिखा है उसको अभिलाष जी ने, फिर बहुत बदकिस्मत इतने बेहतरीन राइटर लिरिसिस्ट एन चंद्रा जी की शायद पहली फिल्म। पता है मंदाकिनी जी, मैं अगर मैं बोलूं आपको, मैं बहुतों के लिए बहुत लकी हूँ। देखिए मैंने सबकी जो करियर की जो शुरुआत हुई है, काफी जैसे रमेश सिप्पी जी, सलीम जावेद जी, फिर एन चंद्रा जी,
0: उनके शुरुआती दौर में
1: काजोल और रानी मुखर्जी, तो

0: हाँ मैं लकी हूँ सबके लिए शायद, यस यस
1: इसमें से आप हमारे लिए
0: यस। तो
1: लकी
0: ये हमने
1: हैं।
0: सोचा ही नहीं था
1: जी।
0: कि ये गाना एक दिन इस देश, मैं बोलती हूँ देश विदेश में तो पॉपुलर हुआ, पर इस देश का एक नेशनल एंथम बन जाएगा,
1: बिल्कुल।
0: है ना। आज देखिए मतलब क्या, किस स्तर पे वो गाना पहुंच
1: बिल्कुल
0: गया,
1: बिल्कुल। और
0: इतनी।
1: पुष्पा जी जैसी गायिका, जो कि बहुत ही जहीन एक गायिका है, उनके
0: हाँ
1: साथ गाना
0: मैं
1: आपको मिला।
0: बिल्कुल, और मैं मुझे पता ही नहीं कि पापा जी ने उनको क्यों चुना इस, पर मैंने जब फिल्म देखी तो वो उस कैरेक्टर के साथ जो उनकी आवाज,
1: वो वही थी
0: ये उन लोगों की ग्रेटनेस
1: जी, वो
0: थी,
1: पुष्पा जी की
0: है
1: ही
0: ना।
1: आवाज हो सकती थी।
0: मुझे जब ये सवाल करते हैं, वो आप कीजिएगा जरूर, कि तब के संगीत और अब के में क्या फर्क है,
1: जी, मेरा ही
0: कीजिएगा
1: सवाल
0: जरूर,
1: है।
0: तब मैं आपको
1: जी,
0: बताऊंगी
1: मेरा ही
0: कि
1: सवाल
0: क्या
1: है।
0: फर्क है। बस वो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मतलब कितने लोग फोन करके कहते हैं कि किसी बैंक के मैनेजर ने मुझे कॉल किया, वहां कोई हमारा एक सिंगर गया था, स्टेज पे गाता है बच्चा, तो वो गाना बज रहा था, और सब, वो जब गया तो सब बिल्कुल खड़े होकर विनम्र तरीके से
1: खड़े हो गए।
0: बस वो गाना
1: जी जी
0: वो बंद
1: जी
0: हुआ, फिर सब बैठ गए, चलो अब काम। तो वो बोले पता है ये मेरी दीदी ने, दीदी ने, तो बोले हाँ सुषमा, अरे वही पूर्णिमा दीदी, उन्होंने गाया है। तो मैनेजर ने मुझसे बात किया और बोली कि आपके गाने से हम दिन की शुरुआत करते
1: करते
0: हैं,
1: हैं।
0: हम कितने भाग्यशाली हैं, आप प्लीज आइएगा हमारे
1: जी
0: बैंक में, सिर्फ
1: जी
0: आइएगा
1: जी
0: तो हम सोचे, हम हमको ऐसा लगेगा कि हमने बहुत कुछ पा लिया।
1: जी
0: मैंने सुना है स्कूल्स में गाते हैं, इवन बच्चों के शायद सिलेबस में, शायद मैंने सुना है, मुझे पता नहीं।
1: और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जब आकाशवाणी की
0: जी
1: दुनिया में
0: जी
1: हम कई बार, जब हमें देशभक्ति गीत बजाने होते हैं या
0: जी
1: मोटिवेशनल सॉन्ग बजाने होते हैं,
0: जी
1: तो ये गाना नंबर वन पर होता है।
0: देखिए
1: मतलब हर आकाशवाणी से ये गाना बजा है, हर आकाशवाणी से। और विविध भारती में भी कितनी बार इस गाने को
0: है
1: हर
0: ना।
1: उद्घोषक ने बजाया है।
0: और अफसोस कि जिन लोगों ने, जो जुड़े हैं इस गाने के साथ, पापा जी, कुलदीप सिंह जी, अभिलाष जी, तो बेचारे उनका तो निधन हो गया, उनको कैसे कहूँ, वो
1: हाँ, वो
0: पहचान, वो
1: स्थान।
0: स्थान नहीं मिला जिसके वो काबिल हैं,
1: बिल्कुल।
0: जिसके वो हकदार हैं।
1: कुलदीप सिंह जी के तो म्यूजिक की अगर हम बात करने चलें तो एक लंबा समय निकल जाएगा।
0: कितने गुणी,
1: बहुत
0: बाप
1: बहुत
0: रे।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: तो चलिए
0: इतने
1: ये गीत हम सुनते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: तो देखिए, इस गीत को सुनने के बाद हम भी वैसे ही हो गए जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि ये गीत हमें कितनी गहराई की ओर ले जाता है ना। तो पूर्णिमा जी, हम आपसे आज बातचीत कर रहे हैं बचपन से अभी तक का जो आपका सफर है गायिका बनने का, उस विषय पर। और ये बातचीत तो हमारी बहुत ही रोचक और शानदार हो रही है, हमारे श्रोता भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे यकीनन। लेकिन सुषमा से पूर्णिमा आप कैसे बनी, ये जो सफर है ये भी हम जानना चाहते हैं कि सुषमा से पूर्णिमा बनने तक का ये सफर कैसा रहा। तो चलिए, ये बातचीत हम करेंगे अब अगले अंक में।
1: बॉम्बे टॉकीज, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। अभी आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा भाग। ये बातचीत यहीं खत्म नहीं हुई, इसका तीसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। आगे आप सुन पाएंगे मन की बात, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम संदेश। रिले के जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का।

0: शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूँ?
5: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
7: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
6: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
7: कहाँ से पता चलेगा?
6: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर कर लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
4: आज ही सर्च करूंगा।
6: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
8: RBI कहता है
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
11: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
12: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात के सितंबर माह में फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिल रहा है। मैं देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं, देश की उपलब्धियों की बात करते हैं। भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं। ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की। 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। LOC के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत

पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। सितंबर के इस महीने में यानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके कुछ सप्ताह बाद ही मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था। साथियों, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, इस साल 9/11 के आतंकी हमले को भी 25 वर्ष हुए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था, उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में पीएम बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था। और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर तैयार हो रही है। इस तस्वीर में आप भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की जनगणना की। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। इन दिनों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दुर्गम और बर्फीले इलाकों में भी ये काम चल रहा है। वहां से कई प्रेरक अनुभव हमारे सामने आए हैं। उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गांव कहा जाता है। माणा में सबसे पहले 83 साल की पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरकाशी के बगोरी गांव में होमस्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की। साथियों, जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। साथियों, इसके लिए आपको जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। ये पोर्टल है sec.census.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, अपना स्थान दर्ज कीजिए, अपने परिवार से जुड़ी जानकारी भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। जानकारी सबमिट करने के बाद आपको एक विशेष आईडी मिलेगी। जब गणना कर्मी आपके घर आए तो आप उन्हें ये आईडी बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद वो जनगणना का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर चुके हैं, स्वगणना कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सही जानकारी, आपके परिवार की सही जानकारी देश के भविष्य की सही तस्वीर तैयार करने में मदद करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 सितंबर की यह तारीख एक विशेष कारण से और भी विशेष हो गई है। आज एक ऐसे महानुभाव की 100वीं जन्म जयंती है जिन्होंने संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं
विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी की 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, जो ऊर्जा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला। जब मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल हो रहा था तब भी मुझे बार बार अशोक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक था। साथियों, अशोक जी के बारे में ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनकी उतनी चर्चा नहीं होती। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और विषमता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सेवा अधिकारी थे। उनके भाई बहनों में भी अधिकांश लोग बड़े बड़े पदों पर रहे। वे खुद भी आईआईटी बीएचयू से ग्रेजुएट थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने समाज और संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यही महान लोगों की पहचान होती है। आज मैं उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके करोड़ों प्रशंसकों की ओर से उन्हें नमन करता हूं, मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत हमने स्वाभिमान के एक महापर्व के साथ की थी। ये पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले 1026 में मोहम्मद गजनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने आए थे, आज उनका कोई वजूद भी नहीं है और सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ विशाल समुद्र के किनारे भारत को अमरता का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए हमने पूरे गर्व के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, ये चर्चा में आज मन की बात में फिर से क्यों कर रहा हूं, इसकी भी एक खास वजह है। 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था, उसे तोड़ा गया था। यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। 1025 में इस मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव ने कराया था। साथियों, आप उस कालखंड के बारे में सोचिए, जब इतना बड़ा आक्रमण हुआ हो, सोमनाथ मंदिर जैसा आस्था का इतना बड़ा केंद्र खंडित किया गया हो और कई जगहों पर भी हमले हुए हो, तो किसी भी समाज या शासन का मनोबल टूट सकता था। लेकिन राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों, मोढ़ेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के कालखंड में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर वास्तुकला के इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन साथियों, हम भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तु और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना, उसका एक अर्थ ये भी होता है, प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढ़ेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है बल्कि गुजरात का ये गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम सोलर विलेज बन चुका है। मोढ़ेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढ़ेरा में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढ़ेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी
एक बार

मोढेरा अवश्य जाएं और भारत की इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पारई में ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले। अतीत से जुड़ने का एक रोचक प्रयास है। इस प्रकार हम अपनी विरासत को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है। कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं बचाते, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समय था जब यहाँ हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। हाथी यहाँ फिर लौट आए हैं। जिस इलाके में बरसों से उनकी चहल पहल नहीं थी, आज वहां फिर हाथियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। साथियों, असम में ही एक और सुंदर प्रयास हुआ है। ये प्रयास एक बहुत छोटे से जीव पिग्मी हॉक को बचाने का है। एक समय इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था। तब केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया, उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह से पिग्मी हॉक की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहेजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है।
पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही हैं। जारखाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। पति को खोने के बाद उन्हें सुंदरबन से ही आजीविका का सहारा मिला। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है। साथियों, हम पर्यावरण को सहेजें, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करें और उसकी विविधता को सुरक्षित रखें। हमारा हर ऐसा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माय भारत के वॉलंटियर शामिल है, एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं। यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे इसके लिए गांवों और कस्बों तक पहुंचकर स्पोर्टिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उनका एक ही पैशन होता है, टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना। हमारे पंजाब में यही काम राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीनियर भी जुड़ा हुआ है। वे 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 1982 के वर्ल्ड कप में छाए रहे थे। 2001 में भारत ने पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। वहीं 2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था। इन दोनों ही टूर्नामेंट में वे कोच की भूमिका में थे। अब वे राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के जरिए अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके प्रयासों से गांवों में नई हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है। राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांवों में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है। ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर
अपनी जगह बना रहे हैं।

0: राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। ज्यादातर घरों में इससे बने अचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है। बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं और सर्दियों में च्यवनप्राश हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं। साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का, सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी, मुरब्बा और जूस बना रही हैं। ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह एक गांव में विंध्यवासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस ग्रुप की महिलाएं आंवले का अचार, डाइजेस्टिव पाउडर ऐसी कई चीजें तैयार कर रही हैं। इन महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी मिली, लोन की सुविधा मिली, स्थानीय व्यापार मेले से जुड़ने का अवसर भी मिला और देखते ही देखते उनकी आय काफी बढ़ गई। साथियों, हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है, तो कहीं कोई अनोखा हुनर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की ये पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित ना रहे, वे देश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे और दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है। आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती है। कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल कई सराहनीय पहल की गई है। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा घर घर मुनगा ये अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को पौष्टिक मुनगा यानी मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहां टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्तिभाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि और शुभ कार्यों के आरंभ के प्रतीक है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा सिर्फ भारत में ही नहीं है। जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए। वे वैसे तो थाईलैंड के हैं। यहां भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। और जब वे 19 वर्ष के थे, तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यहीं से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद वे कई बार यहां आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकते। यहां हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं। यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात के हर एपिसोड के बाद मुझे अनेक विषयों पर आपके संदेश मिलते रहते हैं। आप इसी तरह प्रेरणा से भरी गाथाएं भेजते रहिए। जब आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। ये यात्रा इसी तरह आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रहे। आने वाले त्योहारों को आप अपने परिजनों और दोस्तों के साथ पूरे आनंद और उल्लास से मनाएं। मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর মন কি বাত শুনিলে। এতিয়া শুনক মন কী বাতৰ অসমীয়া ভাষা।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: विविध भारती से अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। ये
2: श्रोता अभी आप आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हफ्तलंग केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, रिले किए जा रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन को उन्होंने जो दिशा और ऊर्जा दी, अयोध्या में भव्य मंदिर उसी का निर्माण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने इस साल की शुरुआत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ की। श्री मोदी ने बताया कि 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर के साथ गुजरात के मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर

0: भी ध्वस्त कर दिया गया था।
1: 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था। यानी मोढेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था, बल्कि कुछ ही समय में मोढेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवरता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा।
0: प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की जयंती का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता बापू द्वारा दिए गए जीवन के कई मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश भर के लाखों युवाओं ने हाल ही में मादक पदार्थों के सेवन और नशे के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संकल्प लिया। उन्होंने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा की है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। नशा मुक्त युवा अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक काम के लिए एक साथ आते हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने कहा कि रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज ग्राहकों की सुविधा के लिए खुले हैं। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार, लिखे गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के हफलंग केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विविध भारती के कार्यक्रम, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
3: आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज यादों की महफिल में हम याद करेंगे हिंदी सिनेमा के एक महान फिल्म निर्माता निर्देशक, जिन्हें किंग ऑफ रोमांस भी कहा जाता है, जिन्होंने यशराज फिल्म्स की स्थापना की और बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्मों को एक नई दिशा दी। पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित यश चोपड़ा, और उनके साथ ही हम याद करेंगे पार्श्व गायक। हिंदी फिल्मों में 5 दशकों से अधिक समय तक काम करने वाले, जिन्हें मुख्य रूप से उनके देशभक्ति गीतों के लिए भी याद किया जाता है, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला, पद्मश्री, महान गायक महेंद्र कपूर को। तो कार्यक्रम का पहला गीत है लता मंगेशकर और बाबला की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं शिव हरी। फिल्म का नाम है चांदनी।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: साथियों लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। महेंद्र कपूर, बलबीर, जोगिंदर और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं साहिर, लुधियानवी संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है आदमी और इंसान।

0: अंतराल के बाद यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। लीजिए सुनिए अगला गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में। नगमा निगार हैं हसन कमाल, संगीत है रवि का, फिल्म का नाम है निकाह।
1: अभी अलविदा मत

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है शिव हरी का, फिल्म का नाम है डर।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लच्छा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए,
2: आइए सुने अगला गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। नगमा निगार है हसन कमाल, संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है तवाइफ।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना उत्तम सिंह की और फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार हैं कतील शिफाई, संगीत है उत्तम जगदीश का और फिल्म का नाम है पेंटर बाबू।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
4: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उदित नारायण की आवाज में। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है मदन मोहन का और फिल्म का नाम है वीर जारा।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हफ्तंग केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार लिखे जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी। उन्होंने कहा कि अब भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और उसका नतीजा सामने है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल sec.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
1: 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश के लाखों युवाओं ने हाल ही में

0: नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा की है और इसकी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक काम के लिए एक साथ आते हैं।
1: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडियाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत भविष्य में युद्ध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपनी क्षमता विकसित कर रहा है ताकि आत्मनिर्भर और भविष्योन्मुखी रक्षा प्रणाली का निर्माण किया जा सके। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का प्रयास भी कर रहा है। जापान एशियाई खेलों में आज अंकुश ने मुक्केबाजी के 80 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया। तीरंदाजी में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम और महिला टीम ने भी सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनु राघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। वहीं पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदकों के साथ 11वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के हफलंग केंद्र से बोल रहे हैं। जारी है आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

कभी कभी फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, साहिल लुधियानवी के बोल और राखी और शशि कपूर हीरो हीरोइन। श्रोताओं ने ये जवाब भी दिया है सही, और बहुत सारे श्रोताओं ने गानों के बोल लिखे हैं। ये पर्वतों के दायरे, ये कहाँ आ गए हम, नाव कागज़ की गहरा है पानी, जिंदगी का सफ़र, तुम साथ हो तो हंसी, चलो सजना जहाँ तक घटा चले, वादा करो नहीं छोड़ेंगे तेरा साथ, अच्छा तो हम चलते हैं, तुम भी चलो हम भी चले, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, ये पर्वतों के दायरे, और अनगिनत गानों के बोल लिख रहे हैं श्रोता। हम इनमें से जिनकी जिन मतलब जिन गानों की संख्या ज़्यादा होगी वो गाना हम आपको सुनवाते चलेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि यश चोपड़ा जी बी आर चोपड़ा के छोटे भाई थे, उन्होंने अपने भाई बी आर के साथ फिल्म निर्देशक का काम शुरू किया। तो ज़रा अब हमें बताइए कि यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। सवाल दोहरा देते हैं, ये एक पहेली है आपको बूझनी है। यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? सन हमने बता दिया है, आपको फिल्म का नाम पूछना है। एक श्रोता लिख रहे तेरे नैना तलाश करें, और एक श्रोता ने लिखा है कि आज विश्व पर्यटन दिवस है, तो आज की इबारत के जरिए आपने बेहद सरल सफ़र की झांकी कर दी। कहते हैं जब सफ़र का साथी हमारे मनोभावों को समझता है, तब जगह चाहे कोई भी हो सफ़र सुहाना ही हो जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि भारतीय सिनेमा में अगर किसी एक नाम को भव्यता, दिलकश नज़ारों और निश्चल प्रेम का पर्याय माना जाता है तो वो है यश चोपड़ा। उन्हें हिंदी सिनेमा का किंग ऑफ रोमांस यूं ही नहीं कहा जाता, और खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत कुदरत के नज़ारे उनकी फिल्मों में देखने को मिलते हैं, और आज पर्यटन दिवस है और नदी दिवस भी है, तो ये सारे नज़ारे हम उनकी फिल्मों की आंखों से देखते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति हमें जीवन भर देती रहती है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि उसकी रक्षा करें, सिर्फ उसे निहारें नहीं बल्कि उसका संरक्षण करें, यही प्रकृति के प्रति हमारा प्रेम और कृतज्ञता होगी। एक श्रोता लिख रहे हैं कि यश चोपड़ा की फिल्मों ने भले ही प्रकृति की गोद में रोमांस को प्राथमिकता दी हो, आत्मा के उत्थान के लिए, मानसिक शांति के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए ये प्रकृति हमें सदैव प्रेरित करती है। जहां प्रकृति मुस्कुराती है, खिलखिलाती है, वहां देवता निवास करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत अच्छा है गीत जो शुरुआत की आपने, और एक ने लिखा है कि क्लासिक शुरुआत, और एक श्रोता ने लिखा जरा सा झूम लूँ मैं, अच्छा तो हम चलते हैं, ये कहाँ आ गए हम, चलो सजना, बड़ी लंबी फेहरिस्त लिखी है इन्होंने, और भी बहुत सारे श्रोता लिखते जा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये वादियाँ, ये फिजाएँ बुला रही हैं हमें, नैसर्गिक सुंदरता से भरी गीत सुनने को बुला रही है विविध भारती हमें, बोरीवली मुंबई सागर किनारे दिल ये पुकारे, विविध भारती तू जो नहीं तो हमारा कोई नहीं, विश्व पर्यटन दिवस पर रेडियो सखी के संग सभी मित्रों का बोरीवली मुंबई समंदर किनारे सुरीला सफर में स्वागत है। स्वागत आप सभी का पूरे देश के श्रोताओं के लिए, और जो देश से बाहर विदेश में सुन रहे हैं ये प्रोग्राम, उनका भी स्वागत। अब हम पहली दोहरा देते हैं, यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। और हाँ, चूंकि पर्यटन दिवस की बातें भी चल रही, तो आप अपनी यादें भी साझा करते चलिए, और हमें ये भी बताइए कि अब से लेकर प्रोग्राम के आखिर तक इन बातों के जवाब आप दे सकते हैं कि आपके जहन में सबसे खूबसूरत वादी घाटी कौन सी है जो आपने देखी हो। अब जरा बूझिए कि यही गाना आपने सोचा था या कोई और। हीरो हीरोइन का नाम भी बूझिएगा और गीतकार का नाम, संगीतकार का नाम भी बूझिएगा। किसके नाम है ये गाना, ये तो पता चल ही गया होगा आपको।

वक्त फिल्म का गाना था, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें थी, गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार थे रवि। और हमने जो सवाल आपसे पूछा था, यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, चांदनी। और अभी जो सवाल था, वक्त फिल्म में कौन हीरो हीरोइन है, गीतकार संगीतकार का नाम भी सही बताया, सुनील दत्त साधना। हमने इधर पूछा उधर श्रोताओं के जवाब आने शुरू हो गए थे। एक श्रोता ने लिखा है कि 2 सप्ताह पहले ही मैं और रेखा कश्मीर की वादियों से भोपाल से लौटे हैं, आज के गाने उन्हीं वादियों में बिताए पलों को याद करा देंगे, डल झील में नौका विहार, पहलगाम की वादियों में झरझर झरने बहते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे प्रकृति ने अपना सारा संगीत और सौंदर्य यही लाकर एकत्रित कर दिया हो। तो भाई आप सभी जो सुन रहे हैं, अगर कहीं घूमने गए हैं किसी पर्यटन स्थल पर, तो वहाँ की यादें साझा कीजिए और वहाँ के अनुभव हमें बताइए। और अगर आपको किसी एक पर्यटन स्थल में जाने का मौका अब आगे मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे, उस जगह का नाम आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि यश चोपड़ा की फिल्मों को अक्सर भारतीय सिनेमा का ट्रेवलॉग कहा जाता है। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से दर्शकों को केवल प्रेम कहानियां ही नहीं दिखाई, बल्कि उन्हें देश विदेश की खूबसूरत वादियों की एक जादुई सैर भी कराई। संक्षेप में कहें तो यश चोपड़ा की फिल्में सिनेमा हॉल की एक टिकट में देश विदेश घूमने का एक पासपोर्ट थी। उन्होंने मध्यम वर्ग के भारतीयों को सिनेमा के पर्दे के जरिए दुनिया देखने की आंखें दी और पर्यटन को बढ़ावा देने में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई। तो बताइए, अगर आपको किसी एक पर्यटन स्थल में जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे, उस जगह का नाम बूझिए। और चलिए फिर वादियों में चलते हैं, और आपको बूझना है फिल्म का नाम, जरा जल्दी बताइएगा फिल्म का नाम। पिछले दिनों आप कौन सी वादियों की ओर गए थे, किन पहाड़ों की सैर की थी, ये भी आप बता सकते हैं।

0: ये फिजाएं दुला रही है तुम्हें।
1: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सुरीला सफ़र, और आज सुरीला सफ़र में यश चोपड़ा के जन्मदिन को हम याद कर रहे हैं, महेंद्र कपूर की याद को नमन कर रहे हैं, और साथ में विश्व पर्यटन दिवस और विश्व नदी दिवस हम मना रहे हैं। तो आप अपनी बातें, अपनी यादें साझा करते चलिए। हमने आपसे पूछा था, अगर आपको किसी एक पर्यटन स्थल में जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे। अभी तक बहुत कम जवाब श्रोताओं की ओर से आए हैं, और अपनी यादें आप ताज़ा करिए। और अगर आप सफ़र पे गए हैं और किसी पहाड़ पर, किसी पहाड़ी पर वादियों की सैर की है आपने, तो सबसे यादगार सफ़र कौन सा रहा है ये भी बता सकते हैं, उस जगह का नाम आप बता सकते हैं, ताकि जब श्रोताओं को मौका मिले तो उन जगहों पर वो जा सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि यश चोपड़ा को भारतीय फिल्मों में विदेशी नज़ारों, विशेषकर बर्फीली वादियों और खूबसूरत झीलों को दिखाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपनी कई फिल्मों की शूटिंग स्विट्ज़रलैंड पर्यटन में की। फिल्म चांदनी का प्रभाव, उन्होंने फिल्म चांदनी के बड़े हिस्से की शूटिंग स्विट्ज़रलैंड में की, जिसके बाद वहाँ भारतीय पर्यटकों और फिल्म निर्माताओं का जाना काफ़ी बढ़ गया था। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत फिल्मों में सुंदर लव स्टोरी और खूबसूरत जगहों का दर्शन कराने वाले यश चोपड़ा जी के गीतों पर लिखी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है, जो संस्कृति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में आधुनिक तकनीक और नवाचार की भूमिका पर जोर देती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब भी ऐसा मौका होता है, एक साथ छुट्टियां हो तो साथ में और भी छुट्टियां लेकर धर्मपत्नी, मैं और मेरे बच्चे ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां नदियों और पहाड़ों के दर्शन हो, साथ में तीर्थ स्थलों के भी। तो बताइए कि आपके शहर या गांव के इर्द गिर्द कौन सी नदी है, और नदी को साफ सुथरा रखने के लिए क्या आप कोई निजी स्तर पर कोई मुहिम चलाते हैं, या आप भी कूड़ा कचरा करके चले आते हैं अपनी पहचान छोड़कर। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप नदी के किनारे जाते हैं तो नदी को एक जीवंत इंसान के रूप में देखें, और ये देखें कि उन पर कचरा फेंकना कितना अन्यायपूर्ण होगा। तो आप अपने आप उन्हें प्रणाम करेंगे और वहाँ जो कचरा होगा उसे बीन कर डस्टबिन में डालकर आएंगे। चलिए अब चलते हैं वहीं जहाँ पर इबारत में वादा किया गया था, और किसी ने कहा था चलो सजना जहाँ तक घटा चले। तो कहाँ तक घटा है और कहाँ तक आपकी यादें हैं, यादों को दोहराइए और जहन में बसाइए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर साझा कीजिए, बताइए हीरो हीरोइन का नाम, गीतकार का नाम पता है तो वो भी बताइए।

मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार का नाम पूछा था हमने, मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर। सभी श्रोताओं ने त्वरित जवाब दिया, यहां तक कि हमने सवाल पूरा किया उधर जवाब आने शुरू हो गए। एक श्रोता ने लिखा है कि हरी भरी मैदान का सीना चीर कर बहती हुई एक बहुत छोटी सी जलधारा है जिसे महज एक छलांग लगाकर ही पार किया जा सकता है, लेकिन वो कोई नहर नहीं बल्कि एक नदी है क्योंकि नदी की सभी विशेषताएं उसमें हैं। मैं कभी गई तो नहीं, जाने की बहुत इच्छा है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने पर्यटन के बारे में पूछा है तो मैं समंदर के तट पर मुंबई और मेरे प्रिय रेडियो स्टेशन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन और अपनी सभी उद्घोषिका बहनें यूनुस खान साहब से मिलने की तमन्ना रखता हूं। कब पूरी होती है मुझे नहीं पता। भाई आप अपनी तमन्ना जब चाहें पूरी कर सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे अक्सर लोगों का पहाड़ों पर चढ़ने का जुनून बहुत उत्साहित करता है, खासकर कुछ लोग एवरेस्ट की चोटी को छूकर लौटते हैं तो इस जर्नी पर उनकी आत्मकथा से संबंधित किताब हमारे मन को छू जाती है। तो अब जरा बताइए कि आपने कोई पहाड़ों और इस तरह के संस्मरण वाली किताब पढ़े हैं तो जरा लिख डालिए कौन सी किताब, हो सकता है हमारे श्रोता भी उसे पढ़ना चाहें। एक श्रोता ने लिखा है कि घूमना तो मुझे बहुत पसंद है, प्रकृति का सुहावना सफर हो और झरने की अटकेलियां करती हुई ऊंची ऊंची पहाड़ियां जहां से ठंडी ठंडी हवा, ऐसा संगीत मानो जमी आसमां सब झूम रहे हों, क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है वाह मेरा चयनित गीत बज रहा है। भाई आप अकेले का नहीं, बहुत सारे श्रोताओं के गीत आज इस प्लेलिस्ट में शामिल हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया भर की यात्रा करने के बाद भी जब कुछ जगहें दिल पर ऐसी छाप छोड़ जाती हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। मेरे यात्रा संस्मरण में कई देश और शहर शामिल हैं, लेकिन दुबई का समंदर का किनारा, न्यू जर्सी की एक जगह और भारत के अंतिम छोर पर स्थित कन्याकुमारी की जगह, इन तीनों स्थानों के प्राकृतिक सौंदर्य और आकर्षण ने मुझे सबसे ज़्यादा सम्मोहित किया है। और हमने आपसे पूछा था कि आपकी सबसे यादगार यात्रा कौन सी रही, उस यात्रा के बारे में बताइए, उस जगह के बारे में बताइए। और नदी के किनारे बिताया हुआ कोई यादगार लम्हा, कोई यादगार पल हो तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। और अब एक और पहेली आपसे पूछ रहे हैं, बताइए हमें कि 1994 में यश चोपड़ा को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। हमने सन बता दिया है, फिल्म का नाम आपको बूझना है। तो अब बताइए कौन सा गाना आपने चुना था, यही जो हम पूछने बजाने जा रहे हैं या कोई और गाना। और हाँ जरा बताइएगा इसमें कौन है हीरो, कौन है हीरोइन। ये गाना महेंद्र कपूर की याद के नाम। गीतकार और संगीतकार का नाम भी आप बूझ सकते हैं। पहली पहली हीरो हीरोइन का नाम, कहां पर फिल्माया गया है ये गाना, ये पता है तो ये भी बता सकते हैं आप। बहुत सारे सवाल हैं, इनमें से कोई एक सवाल आप लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजें, साहिर लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत, फिल्म गुमराह और बहुत जल्द जवाब आ रहे हैं श्रोताओं की ओर से, सुनील दत्त और माला सिन्हा। एक श्रोता ने लिखा है कि सपने और सुंदरता का जब भी मेल होता है तब बनता है सिनेमा। अंधेरे सिनेमा घर में चांदी के पर्दे पर फिल्मी सितारे हर एक तरह के कौतुक से सम्मोहन रचते हैं। इन किरदारों की डोर निर्देशक के हाथ में होती है और जब निर्देशक यश चोपड़ा जैसा हो तब एक फिल्म बनती है जो दर्शकों को कभी ट्यूलिप से भरे फूलों की घाटी में ले जाती है तो कभी पहाड़ पर। क्या बात है भाई, बड़े ललित शब्दों का इस्तेमाल आपने किया है। वे जबरदस्त तरीके से कहानी में मसाला लपेटते हैं। भावना के झंझावात में डूबते मन को किस्म किस्म के कलाकारी से यश चोपड़ा दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींच कर ले ही आते हैं। यश चोपड़ा की फिल्मों में चांदनी का होना किसी कविता में संगीत के मिलने जैसा है। चांदनी वो नाम है जिनके बिना यश चोपड़ा की फिल्मों की कल्पना नहीं की जा सकती है। भाई बात यहाँ यश चोपड़ा की फिल्मों की है, लेकिन सुनने की बात है, दिल की दास्तां है, चांदनी है, गाना वैसा ही है। तो चलिए पहले ये गाना सुन लेते हैं और आप ज़रा बूझिए फिल्म का नाम। और हाँ, आपसे हमने कुछ सवाल पूछे थे, उसके जवाब आपने लिखे या नहीं, अगर नहीं लिखे तो लिख डालिए, क्योंकि आपके जो जवाब आ रहे हैं आप तक हम पहुंचाते जा रहे हैं। अब हमें ज़रा ये भी बताइए कि आपके शहर या गाँव के आस पास कौन सी जगह है जहाँ लोग घूमने आते हैं, या कौन सी नदी है जहाँ पर लोग आते हैं और सुकून पाते हैं। कुछ शहर में कुछ ऐसे पार्क भी बने हैं जहाँ कुदरत की छांव मिल जाती है, तो वो भी आप बता सकते हैं ताकि आपके शहर कभी कोई श्रोता जाए तो उन जगहों पर घूम सके, उन जगहों को देख सके आपकी निगाहों से। चलिए सुनते हैं ये गाना। आपको बूझना है फिल्म का नाम और आवाज़ किसकी है।

हमने आपसे पहली पूछी थी 1994 में यश चोपड़ा को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया फिल्म डर, लेकिन कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। कोई बात नहीं, आपने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, ये हमें बड़ी खुशी दे रही है। इस बात के लिए हमें बहुत खुशी है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि हमारे कुछ दूर पर स्थित काले देव की नदी है जिसमें लोग जाते हैं पर्यटन के लिए, तो हमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि नदियों के किनारे डिस्पोजल पानी की बोतल अक्सर पड़ी रहती है जो जीव जंतुओं को और प्राकृतिक वातावरण को दूषित करती है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें जीवन में बहुत ज़्यादा घूमने के मौके तो नहीं मिले, फिर भी जितना घूमा उसमें कुल्लू मनाली की बर्फीली वादियाँ लुभाती हैं और गुजरात के जंगल में शेर का इंतज़ार करते हुए जंगल का नज़ारा और जो सन्नाटा नीरव शांति और निर्मोही वातावरण की अनुभूति की है उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक प्यारी सी छोटी सी बात, प्रकृति बोलकर हमें शुक्रिया नहीं मांगती, बस इतना चाहती है कि हम उसकी खामोशी को समझें। एक श्रोता ने लिखा है कि गांव के पास कंडराला जंगल है, वहां लोग आते हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, अगर मौका मिला तो मैं बार बार राजस्थान की रेतीली वादियों में जाना चाहूंगा, वहां सुनहरी रेत, डूबता सूरज और लोकगीतों की धुन दिल को छू जाती है। भाई क्या बात है, थार के टीलों पर खड़े होकर सारी चिंताएं मिट जाती हैं और वहां पर फोटोग्राफी का शौक भी तो होगा जिसे आप अपने कैमरे में कैद करेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं चाहूंगा एक बार परिवार के साथ मॉरिशस जाऊं। एक श्रोता ने लिखा है कि पिछले साल उत्तराखंड की सैर की थी सब परिवार हमने, शिमला से मनाली आते समय देवदार और चिनार के पेड़ों पर जमी बर्फ, सड़कों पर जमी बर्फ को देखना अद्भुत, ऐसा सौंदर्य जो आंखों से होकर सीधे दिल में उतर जाता है। क्या बात है भाई, आपने तो चित्र खींच दिया, हमारी आंखों के सामने वो देवदार और चिनार के कतार नजर आ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत में जब कुदरत का रंग शामिल हो तो क्या कहने, मन बाग भाग हो जाता है। आपकी इबारत प्रेरणा बन जाती है क्योंकि मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है। तो फिर बताइए, पहाड़ों पर या वादियों पर आप जाते हैं तो अकेले जाना पसंद करते हैं या परिवार के साथ, मतलब सोलो ट्रिप पर जाते हैं या फिर पूरे परिवार के साथ मित्रों के साथ जाना पसंद करते हैं? और हाँ, ये भी बताइएगा कि जब आप पहाड़ पर जाते हैं, वहाँ पहाड़ी पर बैठे खामोशी से देखते हैं वहाँ की खूबसूरती को, नदी के किनारे बैठते हैं, तो आप उन पहाड़ों से, नदी से अगर कोई एक सवाल पूछना हो आपको तो कौन सा सवाल पूछेंगे? अब जरा आप बताएंगे क्या है फिल्म का नाम और किसकी है आवाज?

कभी सुनी है, खुद के दिल की दास्तां सुनी है क्या? बताइएगा जरा हमें भी। और अगर आपके दिल की दास्तां किसी ने सुनी और आपने सुनाई तो क्या था अनुभव? ये बातें आप बताते रहिए और साथ में हमारे सवालों के जवाब, पहेलियों के जवाब भी देते चलिए। हमने आपसे पूछा था पहाड़ या नदी से कोई एक सवाल पूछना हो आपको तो आप कौन सा सवाल पूछेंगे? यूं तो आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर बहुत सारी टिप्पणी करते हैं, तो कोई सवाल पूछना हो तो क्या पूछेंगे? और हमने आपसे पूछा था कि आपके जहन में सबसे खूबसूरत वादी घाटी कौन सी है और कौन सी जगह आपकी यादों में बसी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी जन्मस्थली हरदा, जो मध्य प्रदेश का एक उन्नत जिला है, यहाँ पावन माँ नर्मदा का मीठा जल प्रवाहित होता है। मेरे जिले की जलवायु बहुत अनुकूल है खेती के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि यदि पहाड़, नदियाँ, तालाब स्वच्छ होंगे तो हम पर्यटन के लिए जाएंगे, नहीं तो आने वाला कल बस पर्यटन नाम के ही लिए रह जाएगा। एक श्रोता की टिप्पणी है, पर्यटन का असली आनंद तभी है जब हम किसी जगह को सिर्फ देखें नहीं बल्कि उसे महसूस करें, पहाड़ों की शांति, नदियों की कलकल, हरियाली वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यटन हमें घर से दूर ले जाता है लेकिन प्रकृति हमें अपने और करीब ले जाती है। कहीं पहाड़ों की खामोशी, कहीं नदी की कलकल, कहीं पेड़ों की ठंडी छांव। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर हमें आज पर्यटन की उस दुनिया में ले जा रहा है जहां सफर केवल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना नहीं बल्कि प्रकृति को महसूस करना है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का गद्यांश प्रकृति और देशाटन से जुड़ा है, सुरम्य वादियां, पर्वतों की सैर, इच्छा हर एक दिल में रहती है। हरी हरी वादियों में जब कभी आसमां में आवारा से घूम रहे बादलों को थोड़ा आराम और सुकून की चाहत जागती है तो वो किसी भी वादी में पहुंच जाते हैं। वादियां बादलों का दूसरा घर होती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, सुरीला सफर हम तय करेंगे, नदी की सुरमई धारा, झरनों के कलकल, पहाड़ों की ऊंचाई और हरे भरे पेड़ों की शीतल छाया के साथ। तो चलिए एक बार फिर सैर करते हैं वादियों में। फिल्म का नाम पूछिए फटाफट और किसकी है आवाज, गीतकार का नाम भी बता सकते हैं। फिलहाल फिल्म का नाम बताइए। और नदी से कोई सवाल पूछना हो तो सवाल भी लिखिए।

आरंभ फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश और आरती मुखर्जी की आवाजों में। सभी श्रोताओं ने फिल्म का नाम सही बताया और जल्द बताया। एक श्रोता ने लिखा है कि कंचनजंगा पर्वत सामने से देखने की इच्छा है। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं कोलकाता में रहती हूँ, यहाँ के मंदिर कालीघाट दक्षिणेश्वर देखने योग्य है। यहाँ की दुर्गा पूजा बहुत फेमस है और गंगा नदी है। अब जरा एक सवाल का जवाब दीजिए, यश चोपड़ा की कौन सी फिल्में आपने देखी हैं? क्या उस फिल्म का कोई संवाद याद है? अगर याद है तो वक्त बहुत कम है, इतने कम वक्त में देखते हैं कौन श्रोता लिख पाते हैं कुछ संवाद। और हाँ, यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म का नाम तो आपको पता होगा, उसका नाम भी बताइए। और अब सुनते हैं ये गाना।

एक श्रोता ने संवाद लिखा है, चिनार सेठ जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते, किस फिल्म का डायलॉग है जरा ये बताइए। और कोई संवाद आपको याद हो तो आप लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर, जो सुरक्षित रहता है फेसबुक पेज पर, हम पढ़ सकते हैं बाद में भी।

0: भाई ये गाना आप सुन रहे थे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म का गाना था, आनंद बख्शी के बोल थे, जतिन ललित का संगीत था, लता मंगेशकर की आवाज़ थी। और हमने आप सभी से पूछा था यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म कौन सी है, सभी श्रोताओं ने बताया जब तक है जान, और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि अभी तो और गाने होने चाहिए थे, भाई अगर वश में होता तो हम वक्त को कैद कर लेते और सुरीला सफ़र का ये सफ़र चलता रहता, लेकिन क्या करें, जो कुछ बची हुई टिप्पणी है वो हम पढ़ देते हैं। एक श्रोता ने
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जा रहे थे आकाशवाणी के दिल केंद्र से, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का हफ्तन केंद्र है। कुछ ही क्षणों में यानी 2 बजे आपको सुनवाए जाएंगे मिड डे न्यूज़, और 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल केंद्र से।

0: Prime Minister noted that many inspiring experiences have emerged from these areas. In Uttarakhand, the census process began in the village of Mana in Chamoli, which is known as the country's first village.
1: Janagana hum sabka rashtriya daitva hai. Maine 15 agast ko bhi deshvasiyon se agrah kiya tha ki iske liye apna samay zarur nikale. Janagana ke liye apni jankari swayam darj karne ki ye suvidha bahut aasan hai. Aap apne mobile se hi apni aur apne parivar ki jankari darj kara sakte hain. Ye suvidha hindi sahit 16 bhashaon mein uplabdh hai.
0: Prime Minister Modi informed that so far more than 2 crore 60 lakh people have already entered their details on the census portal via mobile, completing the self-enumeration. He said accurate information about citizens and their families helps create a precise picture of the country's future. The Prime Minister said today marks the 100th birth anniversary of the revered late Ashok Singhal, who was the former international working president of the Vishwa Hindu Parishad. He called him a great personality who dedicated his entire life to culture, society and the nation. The Prime Minister said the nation began this year with a grand celebration of national pride, which is the Somnath Swabhiman Parv. He said Mahmud of Ghazni had demolished the Somnath temple for the first time 1,000 years ago in 1026 AD. He highlighted that the Somnath temple still stands in all its grandeur by the sea, bestowing the blessings of immortality upon India. He added this is why the Somnath Swabhiman Parv was celebrated with immense pride this year.
1: Aaj se 1000 saal pehle 1026 mein Mohammad Ghazni ne pehli baar Somnath mandir ko vidhvans kiya tha. Lekin jo log Somnath ko todkar Bharat ki pehchan mitane aaye the aaj unka koi wajood bhi nahi hai aur Somnath mandir puri bhavyata ke sath vishal samudra ke kinare Bharat ko amarta ka aashirwad de raha hai.
0: The Prime Minister also mentioned Mahatma Gandhi's birth anniversary, which will be celebrated on the 2nd of October. He said cleanliness is one of the many guiding principles for life given by Bapu. Citing several examples of initiatives to maintain cleanliness, Mr. Modi said young people in Madhya Pradesh are working to clean up a river. The Prime Minister pointed out that all these efforts start with a single individual first, and a movement grows when others join in. He said this is what Jan Bhagidari is all about. He stated that cleanliness is the most beautiful tribute the nation can pay to Mahatma Gandhi.
1: Kuch hi dino baad 2 October hai Pujya Bapu ki jayanti ka din. Bapu ne hame jeevan ke bahut se mantra diye hain. Swachhata bhi unme se ek hai. Haal ke dino mein maine kahin Madhya Pradesh mein kuch naujawan nadi ki safai ka kaam kar rahe hain. Unke chote se prayas mein पूरा समाज जुड़ रहा है. ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं. इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है. स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं.
0: Prime Minister Modi noted that millions of young people across the country have recently taken a significant resolve against substance abuse and drugs under the Nasha Mukt Yuva Abhiyan. They have vowed to stay away from drugs and have also taken up the responsibility of spreading this message to others. Mr. Modi said Nasha Mukt Yuva Abhiyan will run for 100 weeks.
1: Aane wale dinon mein is abhiyan ke tahat health checkup aur dhyan shibir jaisi gatividdhiyan bhi hongi. Jald hi hamare anek parv aur tyohar bhi aane wale hain. Is baar tyoharon ki khushiyon ke beech hum apne aas paas bhi nazar dale. Agar koi yuva kisi galat aadat ki or badh raha hai to usse baat kare. अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दे. नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं.
0: मिस्टर मोदी हैड अर्ज यंग पीपल थ्रू मन की बात टू जॉइन दिस कैंपेन यूजिंग द क्रिएटिविटी. ही एक्सप्रेस डिलाइट दैट थाउजेंड्स ऑफ यूथ हैव स्टेप फॉरवर्ड इन रिस्पॉन्स टू दिस कॉल. वेरियस कॉम्पिटिशंस इंक्लूडिंग एंथम, स्लोगन राइटिंग एंड स्ट्रीट प्लेस हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन द माई भारत प्लेटफॉर्म. Similarly, young people are sharing creative content on social media using the hashtag #NashaMuktiYuva. Prime Minister Modi noted that in a sense, the message, the medium and the driving energy behind it all come from the youth themselves. He added that in the coming days, activities such as health checkups and meditation camps will also be conducted as part of this campaign. Union Home and Corporation Minister Amit Shah today inaugurated, laid the foundation stone and launched a series of major railway development projects worth over 1500 crore rupees in Sabarmati. The minister, along with Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, also flagged off the country's first LNG-powered train from Sabarmati Station. Addressing a massive public gathering on this occasion, the Home Minister highlighted the remarkable transformation of Indian Railways over the last 12 years under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Mr. Shah noted that annual diesel consumption in railways has drastically reduced from 293 crore litres to 108 crore litres, with ongoing efforts aimed at eliminating it entirely. This is Akashvani giving you the news.
2: For news at your fingertips, follow us on X at AIR News Alerts and join our WhatsApp channel, Akashvani News.
0: Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in a special series, we bring you a closer look at how the government has shaped the startup movement that drives employment generation and works on key deep tech areas. More from a correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi gave a call for Startup India in 2015 that laid the foundation for a vibrant entrepreneurial culture and opened new avenues for private participation in strategic sectors. Over the last decade, startups have increased from 350 to over 2 lakh ventures, generating over 25 lakh jobs. India today owns the world's third largest startup ecosystem. The Center for Cellular and Molecular Platforms, or C-Camp, is India's premier research and innovation hub and one of the largest life sciences incubators that have directly funded and mentored over 700 startups over a decade. Speaking to Akashvani, the co-founder and director of InExcel, Nitish Kumar Jangir, has thanked C-Camp and Government of India for their support and shared information on how his life-saving devices called SANS, VapCare and Fetal Life have aided critical care and maternal health across the world.
4: We are seeing from the last many years that India is becoming a good production house specifically for global markets in medical devices, and we want to see that shift from just a production house to production plus innovation house to create innovative high-quality products which will make India a powerhouse for medical devices or medical technology innovation.
3: The startups and unicorns are helping build a supportive ecosystem, enabling the country to harness its demographic dividend and emerge as a global innovation hub. Sudhindra, Akashvani News, Bengaluru.
0: India Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and West Uttar Pradesh today. The weather agency has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Bihar, East Uttar Pradesh and Himachal Pradesh for the day. According to IMD, Andaman and Nicobar Islands are likely to witness thunder squall till tomorrow. The Met Department has also predicted thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds over Jammu and Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Bihar, Rajasthan, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and West Uttar Pradesh for the next 2 to 3 days. In men's cricket, West Indies were 11 for no loss in 1.2 overs against host India on the first one-day international of the three-match series at the Greenfield International Stadium in Thiruvananthapuram when reports last came in. Earlier, India won the toss and opted to field first. Both Rohit Sharma and Virat Kohli returned to India's ODI lineup after a two-month break from this format. Shubman Gill will lead Team India for this ODI series, while Shai Hope captains the West Indies. The second ODI will be played in Guwahati on September 30, followed by the third one-day international in New Chandigarh on October 3rd. The ODI series will be followed by five T20 internationals. Shreyas Iyer will lead the team in the T20I series. The T20 International Series will begin in Lucknow on October 6th, followed by the second T20I in Ranchi on October 9th. India made a strong start to its Asian Games archery campaign in Aichi, Nayoga today, with the men's and women's compound teams advancing to the semifinals along with the recalf. India today clinched two silver medals in squash. India's Abhay Singh won silver in the men's single squash. In the final, he lost to Malaysia's EON 11-9-11-5-11-5, the world number 26 Indian, was unable to match the number 18 Malaysian, who defended his Asian Games title with a commanding straight games victory. In women's singles squash, Anahat Singh also bagged silver as she played the final against Malaysian Sivashankari Subramaniam. Earlier, Ankush Fangal assured India of his first boxing medal at the Games after defeating Tajikistan's Nekruz Salimov 5-0 in the men's 80-kilogram quarterfinal today. India is now on the 11th position in the medals tally with a total of 32 medals, including 4 gold, 14 silver and 14 bronze medals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says surgical strike and Operation Sindhu demonstrated new example of India's counter-terrorism policy to the world, sending message that terrorist attacks will be met with befitting response. Prime Minister Modi in his Mann Ki Baat program on Akashvani urges people to work together for Nasha Mukti Yuva. Prime Minister urges people to participate in census and use self-enumeration facility, says first phase of census nearly complete. Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel flag off country's first LNG power train at Sabarmati. Anahat Singh red alert for heavy to very heavy rainfall issued of Uttarakhand and West Uttar Pradesh for today. And in Asian Games, Anahat Singh bagged a silver. Abhay Singh wins silver in men's single squash. Boxer Ankush Fangal assures medal. And with that, we end the midday news.
5: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath main Farhat Naz. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंधु ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया आगे भी आतंकवादी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली एलएनजी चालित रेलगाड़ी को रवाना किया उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है
5: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया
1: 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने इस साल की शुरुआत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ की। श्री मोदी ने बताया कि सोमनाथ मंदिर के साथ गुजरात के मोढ़ेरा में सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया था।
1: 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ, यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा।
5: श्री मोदी ने लोगों से मोढ़ेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
5: प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान हाल ही में शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
1: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माय भारत के वॉलंटियर शामिल है और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है।
1: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडियाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह से गणेश उत्सव मनाया गया। थाईलैंड के पंथौन थीरखानोन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान गणेश के लिए अपार श्रद्धा विदेश में भी है। वहां भगवान गणेश की पूजा का फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में देश की पहली एलएनजी चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं।
6: नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने अनेक प्रकार की नई सुविधाएं रेलवे में लाए, रेलवे को आधुनिक किया और अब जेएनपीटी मुंबई से वडोदरा तक पहली लॉन्ग होल डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा हो गया है। देश में माल की आवाजाही के लिए टैक्स कम है, मगर उस वक्त डबल डेकर मालगाड़ी की कल्पना सफल हो जाए तो हमारी वहन क्षमता 2 गुनी हो जाएगी।
5: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत भविष्य के लिए अपनी युद्ध क्षमता विकसित कर रहा है। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का भी प्रयास कर रहा है।
7: पिछले 12 वर्षों में हमारे डिफेंस सेक्टर की न केवल क्षमता बढ़ी है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर हमारे अप्रोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब हमारा ध्यान वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि आज हम आत्मनिर्भर और फ्यूचर ओरिएंटेड डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में भी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
5: थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि देश की रक्षा तैयारियों के लिए उत्पादन में आत्मनिर्भरता काफी नहीं होगी, बल्कि लंबे संघर्ष की स्थिति में अपनी सैन्य क्षमता बनाए रखना और अनुकूलन क्षमता भी महत्वपूर्ण है। एक रक्षा सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि युद्ध का स्वरूप, तकनीक और अवधि तेजी से बदल रही है, जिसके लिए क्षमता विकास और आत्मनिर्भरता भी तेजी से विकसित करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे सरकार का स्टार्टअप अभियान रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहा है और प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों के लिए काम कर रहा है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्टार्टअप इंडिया का आह्वान किया, जिसने एक जीवंत उद्यमिता संस्कृति की नींव रखी और रणनीतिक क्षेत्रों में निजी भागीदारी के लिए नए रास्ते खोले। पिछले दशक में स्टार्टअप्स की संख्या 350 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है, जिससे 25 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। बेंगलुरु को भी इस स्टार्टअप इकोसिस्टम से फायदा पहुंचा है। यहां 17,000 से अधिक स्टार्टअप्स का केंद्र है, जो वैश्विक बाजार के लिए उत्पादों का डिजाइन और इंजीनियरिंग कर रहा है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर प्लेटफॉर्म या सी कैंप भारत का प्रमुख रिसर्च और इनोवेशन हब है और सबसे बड़े लाइफ साइंसेस इंक्यूबेशन में से एक है। इन एक्सेल के सह संस्थापक और निदेशक नीतीश कुमार जांगीर आकाशवाणी से बात करते हुए सी कैंप और भारत सरकार से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए बताया है।
4: इन एक्सेल में हमारा जो विजन है इस टू मेक श्योर की जो नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करके कि आप जो पीएचसीज हैं और जो लास्ट माइल हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे हम नवजात शिशु की जो डेथ रेट है उसको रिड्यूस करें, एआई के थ्रू अदर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कैसे ये गैप को कम से कम करें, मेटरनल मोर्टेलिटी है जो मदर्स की डेथ रेट है और उसको हम कैसे कम करें, आईसीयू में हम और कैसे इम्प्रूवमेंट लाएं। इन एक्सेल को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत सपोर्ट मिला है।
3: स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न एक सहायक इकोसिस्टम बनाने में मदद कर रहे हैं, जिससे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न देश अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा सके और एक वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में उभर सके। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अब पर्यटन रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास का एक सशक्त आधार भी बन रहा है। श्री शेखावत ने कहा कि देश की समृद्ध विरासत, संस्कृति और प्राकृतिक विविधता देश के लाखों युवाओं के लिए नए अवसरों का स्रोत बननी चाहिए। एशियाई खेलों में आज अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। दोनों खिलाड़ी अपने अपने फाइनल मुकाबले में मलेशियाई खिलाड़ी से हार गए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। वहीं तीरंदाजी में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने रिकर्व और कंपाउंड दोनों स्पर्धाओं के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनु राघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य सहित 32 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। तिरुवनंतपुरम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने ताजा समाचार मिलने तक 4 ओवर में किसी नुकसान के 38 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। कृषि विभाग आगामी रबी मौसम के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य समन्वय को मजबूत करने और कृषि उत्पादन, उत्पादकता, स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने पर भी वे विचार विमर्श करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के आधिकारिक दौरे पर केरल पहुंचे। वे कोल्लम के अमृतापुरी में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि माता अमृतानंदमयी का पूरा जीवन मानवता के प्रति प्रेम और सेवा के संदेश से परिपूर्ण रहा है। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के साथ मिलकर नेपाल में बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए माता अमृतानंदमयी मठ की ओर से भारत में नेपाल के राजदूत सुरेंद्र थापा को 2 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में श्री लावरोव ने कहा कि रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमलों का वह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मिड डे न्यूज और दोपहर हिंदी समाचार लिखे गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हफ्लंग केंद्र है। दोस्तों, आपके मनोरंजन को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जा रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
9: गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है आए दिन बहार की।

0: साथियों, अभी आपने सुना महेंद्र कपूर को इस गीत में, जिसे लिखा था SH बिहारी ने। संगीत था OP नैयर का और फिल्म का नाम था कहीं दिन कहीं रात।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: साथियों, आइए अब सुना जाए अगला गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है आई दिन बहार की।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं एक बार फिर महेंद्र कपूर की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है अनमोल मोती।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: एक विलक्षण गायक,
2: अरे ओरे है।
1: संगीत के साधक,
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: लीजिए सुनिए अगला गीत महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में। गीतकार हैं शिवान रिजवी, संगीत है ओपी नैयर का और फिल्म का नाम है दिल और मोहब्बत।

साथियों लीजिए सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा गीत, संगीत है रवि का, इस गीत में आवाज़ है महेंद्र कपूर की और फिल्म का नाम है हमराज़।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है भरोसा।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
0: मन चाहेगी।
1: ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके खत और आपकी पसंद के फरमाइशी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत जिसकी फरमाइश भेजी है आप सभी दोस्तों ने, नेवासा महाराष्ट्र से बंडू लोहार पोपलघट, माया चंद्रकला देवीदास पोपलघट और शिवांश, सेक्टर 8 टाउनशिप भिलाई से श्रीमती प्रमीला श्याम कुंवर, अनुश्री अशोक दीपक और आसमा श्याम कुंवर, पहारा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण प्रीति और छाया बंछोर, गांधीनगर रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक और मीका बीरक, शिवाजी चौक कटनी से अनिल तामकर, अमर तामकर, दिलीप वर्मा, राजू तामकर, रज्जन रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोना मोना हनी यश सौम्या और मम्मी पापा, नागपुर महाराष्ट्र से विनायक भामरे, गणेश भामरे और पार्थ भामरे, गांव बनवाड़ी पटियाला पंजाब से सुखविंदर सिंह, रुपेंद्र सिंह, अमरजीत सिंह, दर्शन सिंह, भोला सिंह, नीरज और जश्न, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से भाई भरतलाल सिन्हा, लक्ष्य कुमार सिन्हा और बिटिया लक्की सिन्हा। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में।

मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है राहुल देवबर्मन, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइशी पत्र लिखे हैं आप सभी दोस्तों ने। कोथा गुड्डम ते तेलंगाना से याकूब दशना, नूरजहां रहीम, शरीफ खान, रूबीना, अलीमा और रहीमुन्निसा। जलालाबाद पंजाब से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, राजाराम नगर देवास से शांति महाजन, राकेश महाजन, मधु महाजन, मुकेश महाजन, राजेश अग्रवाल, आनंद अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल। गाजियाबाद यूपी से सुषमा, श्वेता, अभिषेक और एमडी शर्मा। तंगोरी मोहाली पंजाब से गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसवीर कौर, महकप्रीत कौर और सहजप्रीत सिंह। बदलापुर जिला ठाणे महाराष्ट्र से सिद्धांत गवाहनकर, प्रणीता, अर्जुन, टुक टुक, प्रिंस और एकांक्ष गवाहनकर। मेहरे नगर अमरखेड़ विदर्भ से डॉक्टर वैशाली शैलेश गवाहनकर, श्वेता सुजीत गवाहनकर, ध्वनि और सरिता अभिजीत गवाहनकर। सावंगी महाराष्ट्र से गजानन जिरवार, प्रकाश निजीभा और मिथिलेश जिरवार। विनायक नगर निजामाबाद तेलंगाना से ज्योति श्रीहरी कूचन, राजकमल सिनिग्दा, विनोद कुमार, ग्रीष्मा रामनंदन और समस्त कूचन परिवार।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं

अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। सनावत से राजकुमार बोडाना, यश कुमार बोडाना, मास्टर अशोक वर्मा और शेख मूसा भाईजान, मोरटका बाफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, कोनिका और मानस पटेल। कटोरा तालाब रायपुर छत्तीसगढ़ से मदनलाल देवांगन, प्रभा, भूपेश कुमार, कुसुम और तुषार देवांगन। भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर से स्वाति चौधरी, मालती, देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, ललिता नारायण खुरचेतुम, सोनू और मोनू। दतरंगी से विश्राम मनोज कुमार और दशरथ राम। गुलाबरा छिंदवाड़ा एमपी से भाई राजू निखाड़े, अनीता निखाड़े, ऋषभ, यामिनी और सुरेश निखाड़े। आप सभी की पसंद पर सुनिए लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाज़ों में ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है मोम की गुड़िया।

साथियों, आप जो ख़त हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइशें पढ़ने में हमें आसानी हो। कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल और फिल्म का नाम है चरस। और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त। अमरावती महाराष्ट्र से प्रोफेसर विवेक देशमुख, प्रोफेसर दीपक देशमुख, दिविज देशमुख और डॉक्टर अनिरुद्ध देशमुख। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, मुजतबा खान, आफिया खान, आयशा खान, हादिया खान और शोएब खान। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, पूजा भट्ट, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कलीचा। तो साथियों, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये नगमा।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए। आप सभी दोस्तों की पसंद पर पत्र लिखे हैं आप सभी ने पानीपत हरियाणा से अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश और ज्ञान भूषण शर्मा, अर्रिया जोकीदार से सौम्या नाजनीन, रुकैया खातून, जुबैदा खातून, आबिदा खातून, सरफराज आलम और समस्त परिवार, मिडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, मीनाक्षी तिवारी, हरिपाल कौर और सुनीता शर्मा, अयोध्या नगर रालेगांव शहर से विनोद कुमार डवड़े, प्रतीक शुसारी और प्रथमेश कुमार डवड़े और साथ में है विनोद मंडाड़े, कस्बा बराडा जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, गुरकीरत मंत और गुरशब्द सिंह राहुल की पसंद पर सुनिए। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में ये गीत, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है पत्थर के सनम।

0: साथियों, आपको बता दें, आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला स्नेहल भिसे और योगिता जाधव से। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ और विविध भारती से कार्यक्रम मन चाहे गीत की प्रस्तुत करता है तेजश्री कामले।
1: मन चाहे गीत। मन चाहे गीत।

0: विविध भारती।
1: आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में प्रस्तुत है नाटक मुक्ति एक चिड़िया की। लेखक अजीत पुष्कल, निर्देशक मधुर श्रीवास्तव।
2: क्यों रे प्यारी, फिर तूने झाड़ू चलानी शुरू कर दी? तू जब भी देर से आती है फर्श पर झाड़ू लगाना शुरू कर देती है।
3: काम तो सब हो गया है बाबूजी।
4: एक बात कहूं बाबूजी?
5: अब क्या है
4: रमेश बाबू? आप लोगन के बहुत हैला कान के हैं। अरे आप लोग तो अपन लड़का समझ के पाल पोस के बड़ा के हैं, और वो न जाने कौन जन्म के दुश्मनी निकालें, सारा गहना गुड़िया चुरा के भाग गए।
5: तू मेरे घाव क्यों खुरेद रही है, चुप क्यों नहीं रहती?
4: अरे आपन खून होता तो कभी ऐसा करते?
5: अपना ही खून तो नहीं था रे, तेरे तो चार चार बच्चे हैं, तुझे संतान सुख की क्या कमी है?
4: कोई कमी नहीं, आपन तो अपने होती बहू जी। आपने जितना पैसा रमेश बाबू के पीछे खराब किया, अरे उतने में तो नीमा बीवी मजे में नहीं पड़ जाती। बेचारी नौकरी करत करत बुढ़ाए रही है।
5: देख अगर काम पूरा हो गया हो तो जा, बकबक ना कर।
4: मुझे इतना टेम कहाँ जो गप्पे मारूं, चलती हूँ। राम राम।
5: अपना खून? इस कुमार प्यारी ने सही ही बात तो कही है। मैं नाकामी की राख से अपने को ढकती रही। डॉक्टरों ने कहा मैं मां नहीं बन सकती, और मातृत्व की भूख मिटाने के लिए नितांत स्वार्थी मैंने ये जुआ खेल डाला। उसकी फोली सूरत पर रीझ उसे अनाथालय से उठा लाई। क्या पता था कि उस बच्चे में ऐसे संस्कार जागेंगे। नीमा बीबी अभी 35 की ही तो हुई है, शादी हो जाए तो वो मां बन सकती हैं। उनके बच्चे में मेरा ना सही, मेरे पति के कुल का खून तो होगा ही।
6: ललिता इस समय तुम जरूर कोई अच्छी बात सोच रही हो। नीमा की कोई चिट्ठी आई क्या?
5: नहीं, पर उम्मीद है छुट्टियों में वो खुद आएंगी, और जब रमेश की हरकत का उन्हें पता चलेगा, समझ में नहीं आता कैसे आंख मिला पाऊंगी मैं।
6: इसमें तुम्हारा क्या कसूर, भाग्य का खेल ही है और क्या। तुमने बच्चे की जगह कौवा पाला था जो पंख निकलते ही उड़ गया।
5: उसी के चक्कर में नीमा बीबी के लिए हम लोग लापरवाह हो गए।
6: नीमा बीबी की शादी के लिए एक बार कोशिश करो ना।
5: मैं उनसे खुलकर कुछ भी तो नहीं कह सकती, उनकी शादी ना हो पाने का पाप मेरे ही सिर पर है। उम्र इतनी हो गई है कि कायदे का लड़का, और शादी करने के लायक अब मेरे पास पैसे भी तो नहीं है।
6: पैसे की बात छोड़ो, कमा धमा रही कुछ ना कुछ तो जोड़ ही रखे होंगे। कमाती धमाती लड़की को कोई लक्ष्मी ना माने तो अभागा।
5: नहीं मानते, अब तो लोग बहू को घास फूस और नोटों को लक्ष्मी मानते हैं।
6: अरे सभी के साथ ये बात लागू नहीं होती। देखो दौड़ भाग कर जिम्मेदारी पूरी कर ही डालो।
5: बैठिए कमला बहन, चाय बनाकर लाती हूँ।
6: अरे बस बस, दरवाजे मत तोड़िए।
7: जरा दरवाजा तो खोलिए। नमस्ते।
6: नमस्ते।
7: मैं तो न जाने कब से भटक रहा हूँ। चंचल बाबू का घर ही नहीं मिल रहा। किसी ने कहा

0: चला आया।
1: ये बिहारी बाबू का घर है।
0: अच्छी मुसीबत है, बतलाइए। चंचल बाबू ने अपनी बेटी की शादी का इश्तहार छपाया था तो घर ही नहीं मिल रहा। शगुन साइट ठीक नहीं दिखती।
1: आपको किसकी शादी करनी है?
0: अपनी?
1: हा?
0: क्या मेरी शादी नहीं हो सकती? अभी एक भी बाल नहीं पका है मेरा। देखिए देखिए।
1: ठीक है ठीक है।
0: रोज बादाम का शरबत पीता हूँ।
1: अरे तब तो बैठिए, हमें आपकी ही तलाश थी। अरे ललिता, देख जल्दी आ, घर में शगुन घुस आया है।
0: शगुन नहीं, बांकेलाल, बांकेलाल। मेरा नाम बांकेलाल है जी। लगता है आप लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैं आज तक कुंवारा कैसे रह गया।
1: अरे वाह, अभी तक आप कुंवारे हैं, तब तो बात बन गई।
0: कैसी बात, मैं समझा नहीं।
1: हमने शादी के लिए विज्ञापन दिया है। हमारी लड़की बड़ी सुशील है, नौकरी करती है, किसी पर भार नहीं बनेगी।
0: वैसे मेरे पास भी किसी चीज की कमी नहीं है जी। दवा की दुकान खोली है मैंने, बिल्कुल चकाचक है। अभी घर जाऊंगा तो 1 किलो से माँ के लिए ले जाऊंगा, पाव भर काजू खरीद लूंगा।
1: क्या आपकी माँ बीमार है?
0: नहीं जी, इतना खाने पर भी बीमारी क्या पाक फटक सकती है? हम लोग फल और मेवा ही खाते हैं। जरा मेरा चेहरा देखिए, देखिए देखिए, आईने की तरह दमक रहा है ना।
1: हाँ सो तो है, बैठिए ना, नाश्ता तो करेंगे ना।
0: जी नहीं जी नहीं, मैं अपनी खीर खुद लेकर चलता हूँ। ये लीजिए, जरा खाकर बताइए कितना मेवा है इसमें। लीजिए तो।
1: अरे वाह, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है, खाते पीते घर के हैं बाके बाबू।
0: बिल्कुल ठीक कहती हैं आप। अरे जो सुख खाने पीने में है वो और किसी चीज में है क्या भला? पर माँ कहती है शादी कर ले।
1: अच्छा ये बताइए, शादी में हमें खर्च वर्च क्या करना पड़ेगा?
0: अरे कुछ नहीं, पीली धोती पहना कर लड़की को विदा कर दीजिए, सोने से तो बहला दूंगा। हाँ, बारात के खातिरदारी जरा अच्छी हो जाए बस। बात ये है कि मेरे सभी दोस्त मुर्गा तोड़ है।
1: अरे अरे उसकी चिंता न करिए, उतना तो हो ही जाएगा, हम तैयार हैं। लड़की वगैरह दिखाने के लिए कब मिले आपकी माँ से?
0: अरे कोई जरूरत नहीं, शादी तो मुझे करनी है, नौकरी करती लड़की भी क्या देखने की चीज है।
1: ललिता एक फोटो तो दे दो।
0: कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। अरे मेरी तरफ से बात पक्की, लीजिए खीर खाइए इस खुशी में।
1: तो हमारी तरफ से भी बात पक्की, लीजिए आप भी हलवा खाइए, खीर से ज्यादा गर्म है।
2: समय के गर्म पत्थर पर बैठकर बहुत देर तक भावुक नहीं रहा जा सकता।
3: इसीलिए तो बड़े बूढ़ों ने कहा है, समय का सही उपयोग करना चाहिए।
2: कैसा समय? मैं कुछ समझी नहीं।
3: कभी आपने अपना खून टेस्ट कराया?
2: मुझे कोई बीमारी नहीं कि खून टेस्ट कराऊं।
3: यही सही समय है।
2: कैसा समय?
3: उम्र के दौर का समय। इस आखिरी दौर के बाद शायद आपका खून ही बदल जाए।
2: 2 साल पहले मुझे मियादी बुखार हुआ था, तब खून टेस्ट कराया था, शायद बी ग्रुप है।
3: ज्यादातर स्त्रियों के खून का यही ग्रुप होता है, पर उसके शरीर में सृजन करने वाला खून भी होता है। सच सच बताइए, जब कभी ये खून आपके अंदर दौड़ता है, आपको बेचैनी नहीं होती?
2: कभी होती थी पर अब नहीं होती, क्योंकि मुझे कभी किसी ने पसंद नहीं किया।
3: कोई पसंद करे या ना करे, प्रकृति तो अपने ढंग से कार्य करेगी ही, कौन तो दौड़ेगा ही। ऐसा भी तो हुआ होगा कि आपने किसी को पसंद किया हो।
4: प्यारी चाय ले जा।
3: आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, आपको किस तरह के पुरुष पसंद हैं?
2: देखिए, इस तरह की बात सुनकर मेरे शरीर में आग लग जाती है।
3: आखिर क्यों?
2: इसीलिए कि मुझे पुरुषों से घृणा है। मैं बदसूरत हूँ, इसलिए आज तक मुझे किसी पुरुष ने पसंद नहीं किया।

0: कई हादसों के बाद मेरा खून सफेद हो चुका है। आपको पता नहीं मेरी रीढ़ में दर्द रहने लगा है।
1: अरे शादी हो जाए, सब ठीक हो जाए।
0: प्यारी तू चुप रह। कमला जी, इसीलिए तो मैं कभी यहाँ आती नहीं। जो मैं भूल चुकी हूँ उसको लोग क्यों उकसाते हैं?
2: अच्छा लीजिए, चाय पीजिए। शादी करके अभी आप माँ बन सकती हैं।
0: बच्चे के लिए खून चाहिए, मैं एनिमिक हूँ।
2: ये तो आम बात है, कौन स्त्री आज एनिमिक नहीं है। इसके लिए क्या लड़कियां शादी नहीं करती, उनके बच्चे नहीं होते? आपके लिए अब भी समय है।
0: मैं बदसूरत हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, कैसे बताऊँ आपको? इसलिए यही बेहतर है कि मैं शादी ना करूँ।
2: शादी तो आपकी माँ की भी हुई थी, वो भी तो खूबसूरत नहीं थी।
0: शायद अब वो समय नहीं है।
2: सवाल समय का नहीं, खून की मांग का है, और आपके खून की वो मांग है।
0: मेरा दहेज जोड़ने की कोशिश में पिताजी टूटी साइकिल ढकेलते ढकेलते खुद टूट गए, पर कभी पूरा दहेज नहीं जोड़ पाए। पहला असर तो मेरे खून पर इस बात का पड़ा कि पिताजी मेरी वजह से दिल के रोगी हो गए थे। मरते समय उनके पास मेरी शादी के लिए केवल 15,000 रुपए थे।
2: इतने रुपए थे, भैया भी हाथ लगा देते तो शादी हो जाती। आखिर तुमसे उनका खून का रिश्ता था।
0: खून का रिश्ता उनसे था, भाभी से तो नहीं।
2: और माँ, उन्होंने भी कुछ नहीं किया?
0: माँ ने भी एक दिन चुपके से हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। फिर मुझे नौकरी मिल गई तो मैं बाहर चली गई। बस मैंने शादी का इरादा ही छोड़ दिया, या कहिए इन हादसों ने मेरा खून ठंडा कर दिया।
2: देखिए, अगर औरत समय से टकराने से डर जाती है तो कमजोर पड़ जाती है। अब आप इन बातों को दिमाग से निकाल दें। मांग में सिंदूर और गोद में बच्चा, सृष्टि के विकास के लिए औरत की इस भावना का जवाब नहीं है।
0: मगर कौन समझता है इस बात को? तीन जगह शगुन चढ़ा और तीनों जगह शादी से इनकार हो गया।
1: बीवी जी, बुरा तो लगता ही है, क्या कहा जाए ऐसे लोगन को।
2: मगर औरत के दिल से जिस दिन ये भावना खत्म हो जाएगी, ये दुनिया उजाड़ हो जाएगी।
0: जाने अनजाने लोग प्राकृतिक भावनाओं को छिन्न भिन्न करते जा रहे हैं, सारे रिश्ते अस्वाभाविक होते जा रहे हैं। जिन्हें मुझसे सहानुभूति होनी चाहिए वो मेरा मजाक उड़ाते हैं।
2: देखो, इस तरह मन छोटा ना करो। लड़का ठीक है, शादी कर लो। सुनो, नई पौध के लिए चाहिए मिट्टी, वो तुम्हारी कोख में है। नई पौध के लिए चाहिए पानी, वो तुम्हारे खून में है। नई पौध के लिए चाहिए हवा, वो तुम्हारी सांसों में है।
0: पूरी जिंदगी जीने के लिए स्वीकार हूं फूलों की हथकड़ी। हाँ, मुझे पंखुड़ियों में मिलती है नवजात शिशु की गंध। हाँ, क्यों नहीं, मैं पहनूंगी फूलों की हथकड़ी। मेरी सुंदरता मेरे खून में है, चेहरे में नहीं। मेरे पास अभी भी समय है, मैं शादी कर सकती हूँ। नथ पहनने के लिए मेरी बदनाक छिदवा दो, मैं शादी कर सकती हूँ।
2: बहुत खुशी हुई कि आप समय से चेत गई।
0: जी, मैंने कुछ कहा क्या?
2: हाँ, आपने समय को पहचाना है, खून की मांग को स्वीकारा है।
1: बीवी जी, हाँ, इसी बात पर ले आऊँ गर्मा गर्म चाय।
2: अरे चाय ही नहीं, मिठाई। अभी जा, फौरन आओ।

0: मेरी जिससे शादी हुई है उसे मैं जानती भी नहीं। अपरिचित से एकाएक प्रेम करने लग जाना कुछ अटपटा सा लगता है। मांग में सिंदूर भरने के बाद मुझे आसमान का तारा दिखाया गया था।
1: अब किसी के लिए प्रेम प्रेम नहीं है, है तो सिर्फ अपनी बेचारगी।

0: जो चेहरों पर छद्म प्यार बनकर उभरती है।
1: चुप रहो, ये मेरी सुहाग रात है, सुहाग की प्रथम रात्रि। देखती नहीं मेरे चारों ओर पुष्प ही पुष्प कर रहे हैं।
0: हाँ, इस समय तो तू कथा परी है, सात समुद्र पार करके यहाँ आई है। अभी तारों को पाने के लिए तो ऊपर उड़ेगी, मगर आज तो आसमान में तारे मटमैले नजर आ रहे हैं।
1: क्या हुआ, सुन रही है बाहर शोर? कैसा शोर है ये?
0: शराब के नशे में चूर, यही है तेरा पति, तेरे सपनों का राजकुमार।
1: यही है मेरे सपनों का राजकुमार। घर में आई नववधु का भी उसका ख्याल नहीं।
0: वो ये सोचकर निश्चिंत है कि अब तो एक बुलबुल पिंजड़े में कैद ही कर ली है, जो दाना पानी अपने साथ ले आई है।
1: ऐसी बातें मत करो, अब तो मेरे जीवन की डोर से बंध चुकी है।
0: यही तो नारी जीवन की त्रासदी है। अजीब रिवाज रस्म है, पति कैसा भी हो, इस डोर में बंधने के बाद उसे जीवन भर ढोना ही पड़ेगा।
2: तुझे इतना साज श्रृंगार करने के बाद भी चादर से ढककर विदा किया गया है, जानती है क्यों?
1: क्यों नहीं, ताकि दुल्हन को किसी की नजर न लगे।
0: ना ना ना ना ना, ऐसा नहीं है, ताकि वह वर्जनाओं के बीच रहे, पति को छोड़कर किसी और को प्रभावित ना कर सके।
1: कौन हो तुम, क्यों इस तरह बोल रही हो? तुम चाहे जो भी कहो, अब उससे मेरी शादी हो चुकी है।
0: हाँ, हो चुकी है, बहुत बहुत बधाई। पर दूल्हा तुझे क्या देगा, सोने की अंगूठी या जिंदगी की गारंटी?
1: मैं अभी से क्या बता दूं, पर मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगी, ये कह सकती हूँ।
0: अगर वो तुम्हें धोखा दे दे तो?
1: ऐसा मत कहो, मैं बदसूरत हूँ, मुझे आज तक किसी ने प्यार नहीं किया।
0: मगर तुम सरलता से उस पर प्यार मत उड़ेलने लगना,
2: रहस्यमयी बन जाना। इस उम्र में भी नटखट लड़की की तरह चतुर। देख, तेरा दूल्हा इधर ही आ रहा है, मैं चलती हूँ।
0: चली गई।
3: कौन जा गया, यहाँ तो कोई भी नहीं है। आओ, पास आओ। ये सिर क्यों ढक रखता है?
1: नहीं, मैं सिर नहीं खोलूंगी, मैं सुंदर नहीं हूँ।
3: कौन कहता है तुम सुंदर नहीं हो?
1: सभी कहते हैं, पर ये जरूर है कि मेरा खून सुंदर है।
3: खून? अरे खून तो सभी का एक जैसा होता है, सुंदर चेहरा होना चाहिए।
1: वो ठीक कह रही थी, इसी समय मुझे नटखट लड़की हो जाना चाहिए, रहस्यमयी। नहीं, मुझे शराब की गंध अच्छी नहीं लगती।
3: नहीं होगी तो मैं ही आ जाता।
1: ना ना, मैं बीच में ये तकिया रखे देती हूँ।
3: ऐसा क्यों करती हो?
1: ताकि आप अपनी सीमा जान ले और मैं अपनी
3: सीमा। अच्छा, अब क्या करूँ?
1: आप मुझसे पूछिए, रानी तुम क्या कर रही हो?
3: रानी तुम क्या कर रही हो?
1: गुलाब जल से नहाया है और केश सुखा रही हूँ।
3: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब क्या कर रही हो?
1: अब बेणी में फूल गूंथ रही हूँ।
3: फूल? ये फूल कहाँ से मिला तुम्हें? मैं तो खाली हाथ आया ना।
1: ये फूल बसंत ने दिया।
3: मेरे कमरे में बसंत? अरे वाह!
1: बालों में बांधकर मैं रति की तरह सुंदर हो गई हूँ।
3: रति की तरह सुंदर? मगर तुमने तो अभी तक अपना घूंघट भी नहीं खोला।
1: क्षण क्षण मेरी सुंदरता बढ़ रही है, मैं रति हो गई हूँ।
3: रति की तरह सुंदर, रति की तरह सुंदर, मैं तो
1: मगर दूर रहिए, सीमा मत पार कीजिए।
3: अरे सीमा की कोई बात नहीं ना, मैं हर किस रुक नहीं सकता।
1: जो करना है

0: खून के लिए, मातृत्व के लिए, जीवन की गति के लिए। हो सकता है ऐसा स्वाभाविक सच फिर नहीं बोले जिंदगी।
1: तुम क्या बोलने लगे हैं? देखो अब मैं तुमसे दूर बिल्कुल नहीं रह सकता।
0: चिड़िया उड़ने से पहले आसमान से नहीं पूछती कि मैं तुम्हारे आंगन में उड़ू या ना उड़ू।
1: अरे वाह, तुम्हारी आवाज इतनी मीठी है, तब तो तुम बहुत ही सुंदर होगे। सचमुच तुम तो बहुत सुंदर हो।

0: अच्छा तुम्हें नौकरी पर कब तक पहुंचना है?
1: मैं तो सोच रही थी ऐसी हालत में छुट्टियां बढ़ाकर और आराम करूं।
0: मगर तुम तो कह रही थी तुम्हारे पास और छुट्टियां हैं ही नहीं।
1: नहीं है तो क्या हुआ, बिना वेतन की छुट्टियां तो मिली जाएंगी, वही ले लूंगी। क्या आप मेरे खाने पीने का भार भी नहीं उठा सकते?
0: क्यों नहीं, मगर जब तुम कमाती हो तो फिर चिंता की क्या बात। देखो मेरी दवा की दुकान टूट गई है, इसलिए छुट्टियां लेने पर खर्च की तंगी हो जाएगी। सोचता हूँ तुम्हारे साथ मैं भी चला चलूँ वहाँ।
1: आप वहां क्या करेंगे?
0: अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो किसके साथ रहूंगा? और जबकि मेरे पास काम नहीं है तो तुम्हारी ही कमाई से तो चलेगा, इसमें हर्ज ही क्या है?
1: इनको मैं नहीं, मेरी नौकरी प्रिय है। देखिए ये जो खर्च आ रहा है ये कैसे होगा, मेरी तो पिछली तनख्वाह भी नहीं मिली।
2: सब होगा, तुम लोग चिंता मत करो, रखवाओ ये सामान वगैरह।
1: भाभी ये सब क्या है?
2: फल फूल मेवा मिठाई साड़ी सूट यही सब, आज गोद भराई होनी है ना, मगर यहाँ तो कोई इंतजामी दिखाई नहीं पड़ता।
1: भाभी मेरी तबीयत खराब थी, सोचा इस उत्सव को टाल दूं।
2: टालने की क्या जरूरत?
0: अरे भाभी के रहते तुम क्यों परेशान हो? अरे उत्सव का खर्च भी भाभी दे देंगी, तुम चिंता क्यों करती हो?
2: उत्सव का ही नहीं, मैं बच्चे का भी पूरा खर्च दूंगी, इसमें चिंता की क्या बात है?
0: कोई बात नहीं है भाभी, कोई बात नहीं है।
2: अरे मैं तो यहाँ तक कहती हूँ, बच्चा मेरे ही घर में पले बढ़े बड़ा हो, अपना ही खून है, जो कुछ भी हमारे पास है उसी का तो होगा।
0: हाँ हाँ और क्या, भाभी बच्चा आपका ही है।
1: ये कौन होते हैं मेरे बच्चे को किसी को देने वाले?
2: बांकी बाबू आप अपने रिश्तेदारों को बुलवाइए, ये उत्सव धूमधाम से होगा। और ये देखिए अपना सूट, पसंद आया? और ये साड़ी, अरे नीमा बीबी कहाँ गई?
3: आंगन में गई हैं, लगता है कुछ तबीयत गड़बड़ है।
2: अरे ऐसे में तबीयत तो गड़बड़ाती ही है। नीमा बीबी, नीमा बीबी,
1: मेरे पति को मैं नहीं मेरी कमाई चाहिए, भाभी को मैं नहीं मेरा बच्चा चाहिए। मैं कितों के बीच फंसी एक छोटी सी लाचार चिड़िया हूं, अपने को बचाऊं तो कैसे? कौन है मेरा यहाँ, किससे कहूं? मगर मेरे पेट में जो पल रहा है वही तो मेरा खून है, वही मेरा होगा। मैं अपने खून पर किसी दूसरे का हक नहीं होने दूंगी, किसी दूसरे का हक नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी, नहीं, नहीं होने दूंगी।
3: अरे नीमा बीबी तो बदहवास पड़ी हैं।
2: बीबी जी आप इतनी कमजोर हैं, बताया भी नहीं, डॉक्टर को दिखा देती।
1: आप बैठिए, मैं डॉक्टर के यहाँ हो ही आती हूँ।
2: चलो मैं भी चलती हूँ ना।
1: नहीं नहीं भाभी आप चिंता ना करिए, उत्सव की तैयारी कीजिए, पड़ोसियों को बुलाकर गाना बजाना कराइए, लड्डू बटवाइए, बंधनवार सजवाइए। मैं डॉक्टर के यहाँ गई और आई।
0: मैं चलूँ तुम्हारे साथ?
1: क्यों परेशान होंगे आप भी?

0: डॉक्टर के यहाँ जाने के बजाय यहाँ क्यों आ गई? कथा परी लगता है आसमान के तारे नहीं तोड़ सकी।
1: हाँ, नहीं तोड़ सकी। डॉक्टर के यहाँ क्यों नहीं गई? कोई जरूरत नहीं समझी। मैं ठीक हूँ, मेरा बच्चा ठीक है। फिर गलत क्या है? क्यों बतलाऊं, तुम हो कौन? नहीं पहचाना? मैं तो सुहागरात के दिन भी तुम्हारे साथ थी, मगर सामने तो नहीं आई। कौन हो तुम? मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज ही क्यों सुनाई पड़ती है? अब भी नहीं पहचाना? मैं तो तुम्हारा ही प्रतिरूप हूँ। फिर तुम ही बोलो, मैं क्या करूं? वहां तो लोग जश्न मनाने की तैयारी कर रहे होंगे।
2: जश्न? तुम्हारा बच्चा छीनने का जश्न? तुम अपना बच्चा नहीं देना चाहती ना?
1: नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं।
2: तब अपने बैग से कागज निकालो और लिखो।
1: क्या लिखना होगा? किसे लिखना होगा?
2: उन्हें ही, जिन्हें तुम छोड़ आई हो। लिखो, मुझे अफसोस है कि मैं तुम लोगों के उत्सव में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि डॉक्टर का कहना है मेरे पेट में कोई जीव नहीं, ट्यूमर पनप रहा है। इसका खर्च कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए अपनी नौकरी पर वापस जा रही हूँ।
3: झूठ क्यों लिखवा रही हो? ये सवाल मत करो। बचने का यही, सिर्फ यही एक रास्ता है। इस संसार में तुम्हें कोई नहीं चाहता। जल्दी करो, गाड़ी पर बैठ जाओ।
1: इस पत्र का क्या होगा?
3: वो सामने लेटर बॉक्स में डाल दो।
1: फिर क्या होगा?
2: कितनों के बीच फंसी मासूम चिड़िया की मुक्ति।
1: मुक्ति?
2: हाँ, मुक्ति श्वास के लिए, मुक्ति आकाश के लिए, अपने ही खून से सिंचित पोषित उस परिंदे के लिए जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है,
1: जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है, जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है, जो तुम्हारी कोख

0: मुक्ति एक चिड़िया की, यह नाटक अभी आपने सुना। लेखक अजीत पुष्कल, निर्देशक मधुर श्रीवास्तव। यह हमारे आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
2: एक विलक्षण गायक।
3: अरे ओरे हे।
2: संगीत के साधक।
3: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
2: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
3: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
2: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
4: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
2: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शता

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी। उन्होंने कहा कि अब भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और इसका नतीजा सामने है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती का भी उल्लेख किया जो 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता बापू द्वारा दिए गए जीवन के कई मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देशभर के लाखों युवाओं ने हाल ही में मादक पदार्थों के सेवन और नशे के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में देश की पहली एलएनजी चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उन्होंने 1,500 करोड़ से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं।
2: 1,472 करोड़ की लागत से जो लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है वो आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के सभी पैसेंजरों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। एलएनजी से चलने वाली ट्रेन का भी लोकार्पण हुआ है जो आने वाले दिनों में बहुत पर्यावरण की सुविधा का काम करेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत भविष्य के लिए अपने युद्ध क्षमता विकसित कर रहा है। आज नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का प्रयास भी कर रहा है। पश्चिमी नेपाल में तिब्बत सीमा के पास हिमलुंग हिमाल में आधार शिविर पर आज सुबह हिमस्खलन के बाद 10 लोग लापता हैं। खराब मौसम के कारण पर्वतारोहियों को आगे न बढ़ने की सलाह दी गई है। दक्षिण अफ्रीका के 2 सबसे बड़े शहरों में गोलीबारी की घटनाओं में 27 लोग मारे गए हैं। कल रात जोहान्सबर्ग के वेडेला टाउनशिप के एक बार में बंदूकधारियों ने गोलीबारी की जिसमें 17 लोग मारे गए। केप टाउन के पास हुई एक अन्य गोलीबारी में आज 10 लोग मारे गए। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज 4 धाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, मध्य प्रदेश और पंजाब में बिजली गिरने की आशंका है। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने एक और कांस्य पदक जीत लिया है। महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में हरिता भद्रा ने देश को ये पदक दिलाया। इससे पहले स्क्वॉश में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने रजत पदक जीते। फ्री स्टाइल मुक्केबाजी में अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में ताजिकिस्तान के नेक्रोस सलीमोव को 5-0 से हराकर पदक पक्का किया। पदक तालिका में चीन 113 स्वर्ण समेत 190 पदक जीतकर पहले स्थान पर बना हुआ है। वहीं भारत 4 स्वर्ण, 14 रजत और 15 कांस्य पदक जीतकर 12वें स्थान पर है। तिरुवनंतपुरम में भारत के साथ 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज ने बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 27 ओवर में 1 विकेट पर

0: 161 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: सुन रहे थे हिंदी में समाचार, रिले किए गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अपन केंद्र है। जारी है स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: मदन जी की यादें और भी शेयर की जाएं और मदन जी से जुड़ी कुछ और बातें हमारे साथ बांटिए, म्यूजिक रूम की बातें, रिकॉर्डिंग की बातें।
1: म्यूजिक रूम में मैं उनके कभी नहीं गया
0: जी।
1: म्यूजिक रूम में एक दफा उनके साथ मैं गया था, मास्टर जी के साथ,
0: सोनिक साहब के साथ।
1: हाँ, सोनिक साहब सावन भादों का बैकग्राउंड कर रहे थे उनकी।
0: अच्छा,
1: अपनी फिल्म का।
0: हाँ।
1: तो मुझे बोलते उत्तम यहाँ मदन जी का चलते हैं, वहां चलके बैठेंगे। तो मदन जी का पियानो था वो। दूसरी दफा मैंने उनका म्यूजिक रूम देखा, पहली दफा जब मैं सुनाने गया था वायलिन
0: जी,
1: दूसरी दफा ये मैं मास्टर के साथ अरेंजमेंट करता था
0: तब
1: उनका लिखता था। तब हम लोग ऐसे 3-4 दिन उनके म्यूजिक रूम में गए, पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक लिखा। बस मेरी मदन साहब की ये यादें हैं। हाँ, एंड की जो याद है, लास्ट की, उनका गाना चल रहा था मौसम का गाना, दिल ढूंढता है
0: जी,
1: दिल ढूंढता है। गाना अरेंजमेंट किया ज्ञान वर्मा ने। ज्ञान वर्मा को कोई और रिकॉर्डिंग नहीं थी तो मुझे बोला उत्तम तू कंडक्ट कर ले।
0: तो इस गाने की रिकॉर्डिंग को आपने कंडक्ट किया?
1: इस गाने की जो फाइनल रिकॉर्डिंग है वो कंडक्टिंग मैंने की, म्यूजिक सारा उसका था।
0: अच्छा।
1: तो जब मैं कंडक्ट कर रहा था तो सामने मदन साहब बैठे हुए थे, मदन साहब, कौशिक साहब सब बैठे थे, भूपी जी गा रहे थे। तो मुझे इतना याद है कि वो गाना खत्म होते होते तक उनका सर जो है वो टेबल पे लगा हुआ था,
0: पैनल की टेबल।
1: ही डजंट रिमेम्बर कि गाना खत्म हो गया।
0: अरे बाप।

0: he was so drunk कहते हो या I don't know what state of mind he was. वो पूरे ऐसे बैठ गए. बाद में गाना हम लोगों ने पास किया.
1: अच्छा.
0: भूपी जी ने और कौशिक साहब ने और मैंने, हम लोगों ने गाना सुना. ये टेक ओके है. He doesn't know anything. It was so pathetic.
1: ये दौर जो है वो निराशा का, बीमारी का,
0: लेकिन तमाम चीजों का गाना दे गए. दिल ढूंढता है
1: जी.
0: तो जी देखिए वो गाना दिल ढूंढता है फिर फुर्सत की रात दिन दिल ढूंढता है. अब ये सैड है.

0: वही पोएट्री है, उसको एक सैड और एक, और ये इसका बहुत चर्चा हुआ था इंडस्ट्री में।
1: जी, एक
0: मुझे
1: ही गाने
0: हमको
1: की।
0: याद है कि अरे यार मदन जी का क्या गाना आया, सैड भी है और हैप्पी भी है, बहुत चर्चा हुआ था इस गाने पे।
1: क्या प्यारी बात है,
0: हाँ,
1: वाह वाह वाह।
0: और ये गाना जो है सैड वाला, ये मैं कंडक्ट कर रहा था, ये फिल्म सेंटर का गाना है,
1: जी,
0: और 60-70 म्यूजिशियन थे, बहुत अच्छा गाने, बहुत अच्छा म्यूजिक
1: इसमें एक मेटल
0: ऑर्केस्ट्रा।
1: फ्लूट सुनाई देती है।
0: हाँ, वो की फ्लूट है, वो
1: जी,
0: उसकी मुरली जी ने बजाया है,
1: वाह
0: जो
1: वाह वाह,
0: सैक्सोफोन के बहुत,
1: क्या बात है।
0: मुरली सिंह करके,
1: जी जी
0: जो
1: जी
0: पंचम जी के असिस्टेंट भी थे,
1: बिल्कुल।
0: और हमने साथ में बहुत काम किया उनका।
1: मुरारी दादा को मैं विविध भारतीय लेके आया था और उनसे बहुत
0: हाँ
1: लंबी बातें रिकॉर्ड की
0: हाँ
1: थी।
0: वो मतलब ऐसी फ्लूट फिर इंडस्ट्री में बजी नहीं,
1: जी
0: वो
1: बिल्कुल,
0: उनसे शुरू हुई, उन पे खत्म हो गई,
1: क्या बात
0: ऐसा
1: है
0: हुआ।
1: जी।

0: मदन जी की कुछ और यादें हैं।
1: मदन साहब की एक बात मुझे आज भी याद है। रोशन जी गुजरे थे
0: जी, अचानक उनका निधन हो गया था।
1: अचानक निधन हो गया, हंसते हंसते।
0: एक पार्टी में थे वो,
1: तो शायद दूसरे दिन सुबह का टाइम था, उनकी बॉडी को ले जाना था यश। तो वो मदन जी लेफ्ट उनकी बॉडी के बिल्कुल सर के पास बैठे हुए थे
0: जी जी
1: मदन जी, और हम लोग यहाँ, मैं था और काफी लोग खड़े हुए थे,
0: इंडस्ट्री के लोग,
1: म्यूजिक वाले, खड़े हुए, मैं बिल्कुल नजदीक खड़ा। तो मदन साहब यहाँ लिटरली गालियां दे रहे थे रोशन जी को।
0: अरे बाप रे,
1: लिटरली गाली, मैं यानी गाली नहीं बता सकता
0: जी,
1: लिटरली माँ की गाली दी, लिटरली बहन की गाली दी, और कहा कि रोशन तू तो छोड़ के चले गया, अब मैं जवाब किसको दूंगा।
0: अरे बाप रे, अरे गजब।
1: आप सोचिए क्या भाव है,
0: क्या भाव है कि अब मैं जवाब किसको दूंगा।
1: डेड बॉडी पड़ी हुई है, रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि सारे तू चले गया, तू चले गया, मैं जवाब किसको दूंगा अभी,
0: किसके लिए म्यूजिक
1: किसके
0: बनाऊंगा,
1: लिए म्यूजिक बनाऊंगा।
0: अद्भुत बात है
1: ये, मुझे आज भी याद है।

0: और कुछ 15-20 साल 25 साल के बाद में हमारा एक सोनिक साहब का छोटा भाई राज सोनिक
1: जी,
0: जो
1: जी.
0: मेरे यहाँ काम करता था, लास्ट तक मेरे साथ काम किया, हमारी कुछ बात नहीं तो बोला मैं तो आपके बाजू में खड़ा हुआ था। मैंने कहा ये बात सही है? उन्होंने गालियां, बोले गालियां इतनी गालियां दे रहे थे हम सोच नहीं सकते, मतलब मदन जी को ये पता ही नहीं कि लोग बैठे हुए यहाँ पे एंड इज अब्यूजिंग हिम।
1: लेकिन वो इतने जज्बाती हो गए थे
0: जज्बाती हो गए थे, इतना
1: जी,
0: प्यार था, एक आत्मा का जिसको प्यार कहते हैं
1: वो था।
0: सारे, तू तो चले गया किसको जवाब दो, जैसे
1: क्या दौर था, क्या लोग थे
0: जैसे संगीत ही चले गया हो ना, ऐसा हो गया ना।
1: जी।
0: क्योंकि उस दौरान में बहुत रिस्पेक्ट थी एक दूसरे की, अगर आपने एक अच्छा गाना लिख दिया तो आपको लिखने वालों के 15 फोन आ जाएंगे।
1: बिल्कुल
0: एक साहिर साहब ने अच्छा गाना लिख दिया तो मजरू साहब भी फोन कर रहे हैं, आनंद बख्श भी फोन कर रहा है, तो वो भी फोन कर रहा है, तो वो भी फोन कर रहा है। तो आज अगर आप अच्छा कुछ करते हो तो उसको खत्म कैसे किया जाए ये सोचा जाता है।
1: जी
0: ये दौर में फर्क हो गया,
1: जी
0: वो दौर था प्यार का, अब दौर है दुश्मनी का,
1: जी जी जी
0: कि दुश्मनी कैसे की जाए।
1: आपने मदन जी का जिक्र किया और उसके बाद रोशन साहब का जिक्र आया, उनसे भी आपका एक नाता रहा है,
0: जी
1: उनसे जुड़ी यादें शेयर कीजिए।
0: बड़ी खूबसूरत, हम लोग पहली रिकॉर्डिंग बजाने गए, कुछ 7-8 बच्चे लोग थे,
1: अच्छा
0: उन्होंने बुला लिया उनको, और मुझे याद है कि श्याम राव जी और भूपी जी और केरसी जी,
1: ये म्यूजिशियंस थे।
0: ये उनके अरेंजर थे,
1: अच्छा
0: ये उनके सलाहकार थे, केरसी और श्याम राव, भूपी जी तो दोस्त थे उनके। तो हम लोग पहुंचे, पूरा रेसल वेसल हो गया, 10:15 बजे
1: जी
0: छोटा सा आदमी आता है 4.5 फुट का, रोशन जी आ गए,
1: हा, वो छोटे कद के
0: मैंने
1: थे
0: पहली दफा देखा उनको।
1: जी।
0: तो आते ही किसी से कुछ कोई बात नहीं, सीधा ऐसे आए अंदर, ऐसे जैसे वो मैडम बैठी हैं ऐसे अंदर चले गए,
1: जी
0: अंदर से माइक्रोफोन ऑन करके बोलते हैं हाँ म्यूजिक सुनाओ। अभी म्यूजिक सुनाओ, अभी जब तक केसी जी 1-2 नहीं बोलेंगे हम तो बजा ही नहीं सकते, हम सब बैठे हुए हैं, आवाज आ रही है कि म्यूजिक सुनाओ। तो केसी चुप, श्यामराव भी चुप, भोपी भी चुप, हम सब चुप बैठे, कम से कम 60-70-80 म्यूजिशियन तो होंगे। फिर अंदर से अरे म्यूजिक क्यों नहीं बजाते, म्यूजिक सुनाओ, केसी श्यामराव म्यूजिक सुनाओ, फिर चुप।
1: अरे
0: अब ये मैं हम सोच रहे हैं नए बच्चे हैं कि ये क्या हो रहा है, म्यूजिक डायरेक्टर बोल रहा है म्यूजिक सुनाओ और हम सब चुप बैठे हो, म्यूजिक रेडी है? केसी बोलते ऐसे थोड़ी ना सुनाएंगे।
1: आई
0: हाँ तो फिर कैसे सुनाओगे, पहले अपने प्यार से बोलिए तो सही।
1: हाँ
0: अभी प्यार कौन सा, अंदर से माँ बहन की कहे शुरू हो गई। अरे हम तो हैरान हो गए, मैं कहा यार ये कौन सा प्यार है यार, वहां की वहां गाली, म्यूजिक सुनाओ, ये म्यूजिक सुनाओ, ये म्यूजिक सुनाओ, अब सुनाओ के सुनाओ। हाँ अब सब थाली, अब सुनाएंगे म्यूजिक, और उसके बाद म्यूजिक शुरू
1: ये
0: हुआ,
1: प्यार था, ये
0: म्यूजिक
1: स्टाइल
0: शुरू
1: थी।
0: हुआ, आशा जी थी या पता नहीं कौन था, आशा जी आई, रिहर्सल किया 2-2.5 घंटे 3 घंटे में गाना खत्म।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: ये पहली याद थी उनके साथ,
1: क्या बात है।
0: ऐसा एटमोसफियर, आप सोचो कि वो म्यूजिशियन कह रहा है पहले हमको गालियां दो
1: तब
0: तब
1: बजाएंगे,
0: हम बजाएंगे।
1: गजब गजब
0: तो ये एटमोसफियर था
1: जी।
0: देशन
1: उनके
0: का।
1: साथ आपने कुछ गाने बजाए?
0: गाने बजाए लेकिन कुछ याद नहीं कौन कौन से गाने बजाए,
1: अच्छा,
0: याद नहीं।
1: SD बर्मन,
0: अरे बर्मन दादा तो, अरे बाप रे,
1: उनकी यादें माटी है
0: बर्मन साहब का तो बजा ही रहे थे क्योंकि सेम ग्रुप था
1: जी। जी
0: पंचम जी का। इतना मुझे याद है कि महबूब में रिकॉर्डिंग थी और देव साहब की फिल्म थी
1: हाँ
0: शायद गाइड होगी,
1: ओके
0: तो हम लोग बजा रहे थे, रिहर्सल होगी रिहर्सल होगी, तो बर्मन साहब ने कुछ मलोरी जी को पीस बताया बीच में खड़े होके, महबूब स्टूडियो की बात है, पीस बताया उन्होंने, तो उन्होंने वो पीस बताया और मैंने वो यहाँ से वो पीस बजा दिया।
1: अरे गजब।
0: तो ऐसे मुड़ के देखा, मलोरी को पूछते बंगाली में कौन बजाया, बोले वो लड़का है, फिर से बोलो बजाने के लिए, तो मैंने फिर से बजा दिया। तो मनोरी को बोलते सबको बोलो ऐसा बजाने के लिए
1: अरे बाप रे, गजब।
0: जैसा उत्तम बजा रहा है ऐसा। यूनुस जी मैं बैठा था 2nd या 3rd रो में, सेकंड डे सबको ऑर्डर हुआ कि सेंटर का जो पहला बीच की कुर्सी है वो उत्तम की होगी,
1: ओ
0: दादा ने मुझे प्रमोट कर दिया,
1: वाह
0: मैं 3rd रो से 1st रो में आ गया।
1: वाह वाह वाह, एक महान संगीतकार थे
0: एक
1: वो और
0: महान
1: अपनी धुन के
0: संगीतकार,
1: पक्के।
0: बहुत जबरदस्त।
1: कुछ और घटना याद आती
0: और
1: है?
0: एक टाइम ऐसा आया कि जब बासु मुरारी ने छोड़ दिया था,
1: जी
0: तो यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊंगा जो आम तौर पे कोई नहीं करता बट मेरे से होती चली गई।
1: अच्छा
0: क्यों हुई मुझे नहीं पता, बट मेरे से ये चीज होती चली गई जो कोई नहीं करेगा, किसी ने की नहीं होगी और आगे भी कोई नहीं करेगा, जो ये मेरे से होती चली गई, मैंने नहीं किया, होती चली गई।
1: जी
0: बर्मन साहब ने मुझे बुलाया काम के लिए, अरेंजमेंट के लिए।
1: अच्छा।
0: हाँ, कि मेरे साथ काम करो। तो मैं गया, बैठा, उत्तम बासु मुनरो तो छोड़ के चले गया। मैंने कहा दादा वो तो पता चला, वो तो वहां बैठे हैं मद्रास में, तो हमको गान करना है इसका गोल्डी का, बहुत इमीडिएटली गान करना है, तुम करो। मैं बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा, क्या क्या सोच रहे हो? मैं कहा दादा आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम हमको ना बोलता है? मैं कहा दादा आपको ना नहीं बोल रहा। फिर मैं दादा मेरा एक प्रिंसिपल है कि जो जिसके अंडर में मैंने काम किया हो वो कुर्सी मैं कभी नहीं लेता। मैंने कहा आपके साथ बहुत बजाया है, बासु मुरली काम कर रहे थे, अब आप उनकी कुर्सी मुझे दे रहे हो। मैं कहा दादा मैं नहीं कर पाऊंगा। यूनुस कैन यू बिलीव इट, वो आदमी उठा।
1: हाँ।
0: दादा उठे और मेरे कंधे पे एक हाथ रखा।
1: जी।
0: एक शाबाशी का एक हाथ रखना होता है, एक फील होती है उसमें।
1: जी जी
0: खूब भालो खूब भालो
1: खूब भालो
0: खूब भालो। मैं चला गया।
1: आपने किसी म्यूजिशियन की जगह नहीं ली? लेकिन
0: मैंने किसी अरेंजर की जगह नहीं ली
1: जी।
0: मेरे को सबका ऑफर आया।
1: जी
0: कलन जी का ऑफर आया,

0: पप्पी लेडी का ऑफर आया, अनु मलिक मेरे पीछे, शंकर जयकिशन का ऑफर आया, आर डी बर्मन का बाद में जब वासुदा चले गए तो मुझे ऑफर आया, कभी मैंने कहा। मदन जी का ऑफर आया मुझे,
1: जी जी
0: मैंने कभी नहीं लिया,
1: सिर्फ इसलिए कि आपको किसी दूसरे
0: म्यूजिशियन का। मैं उनके अंडर में, उनके अंडर में काम कर चुका हूँ, मैं अभी कैसे जाऊँ उनके,
1: जी
0: एज ए म्यूजिशियन चले जाऊंगा, म्यूजिशियन ठीक है, बट एज ए अरेंजर में नहीं लिया मैंने आज तक, किसी की जगह नहीं ली।
1: क्या बात है,
0: कभी नहीं।
1: लेकिन एज ए म्यूजिशियन आप बजाते रहे,
0: एज ए म्यूजिशियन बजाता,
1: दादा के लिए भी बजाते।
0: हाँ हाँ दादा के लिए, लेकिन बाद में फिर वो ग्रुप पूरा चेंज हो गया था
1: जी,
0: फिर वो अनिल अरुण आ गए थे,
1: हाँ हाँ,
0: तो फिर वो ग्रुप पूरा फिर जा ही नहीं सके, बजा ही नहीं सका, उनके एंड में तो बिल्कुल नहीं बजा सका उनके साथ।

कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा, मुसाफिर।

0: उत्तम जी देखिए, नौशाद साहब की, मदन मोहन की हमने बातें की, हमने रोशन साहब की बातें की, एसडी बर्मन की बातें की, और कौन से म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जिनकी बातें करनी जरूरी है?
1: देखिए जी, मैंने तो सब क्या बजाया है, कोई ऐसा संगीतकार नहीं था 1962 के बाद
0: जी,
1: चाहे वो श्री रामचंद्र साहब हो, चित्रगुप्त जी हो।
0: चित्रगुप्त जी क्या अभी बजाया?
1: बहुत।
0: और अन्ना क्या अभी बजाया?
1: अन्ना क्या बजाया? अन्ना क्या तो एक किस्सा है, बहुत संगीतमयी किस्सा है वो।
0: बताइए।
1: वो किस्सा जरूरी है आज के लोगों के लिए, वो किस्सा सुनना बहुत जरूरी है। एक तो क्या, अन्ना बहुत स्ट्रिक्ट थे। अगर 70-80 म्यूजिशियन बैठा हुआ है और अन्ना की एंट्री हो गई तो सब सैलेंट हो गए।
0: अच्छा।
1: हाँ, फिर आप अगर एक सुई भी फेंकोगे तो उसकी भी आवाज आएगी, इतना डिसिप्लिन था। और अन्ना का क्या था कि अन्ना ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग हम उसके मुलाजिम हैं, ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग हम उनके म्यूजिशियन हैं, रिकॉर्डिंग के बाद वो हमारे दोस्त हैं।
0: वाह वाह वाह, पूरा मूड बदल जाएगा।
1: ये उनका फर्क था। और रिकॉर्डिंग के बाद ये वही अन्ना है, आप कोई सोच भी नहीं सकते।
0: जी
1: तो हम लोग रिकॉर्डिंग बजा रहे थे
0: जी,
1: और अच्छा गाना, मुझे गाना याद नहीं है, अच्छा गाना था, रिहर्सल विहर्सल किया, गाना रिहर्सल हो गई, रफी साहब आए, रफी साहब ने रिहर्सल किया, अब रिकॉर्डिंग शुरू हुई। तो अंदर से शर्मा जी की आवाज आई, अन्ना की आवाज आई, जॉनी चलो टेक शुरू करते हैं, जॉनी गोम्स उनके असिस्टेंट थे, ओके सर, 1-2 दिया उन्होंने, म्यूजिक शुरू हुआ, इंट्रोडक्शन शुरू हुआ, पकड़ा गया, म्यूजिक बन गया, अंतरा शुरू और अंतरा चल रहा है, अंतर के बाद जहां क्रॉस आया
0: जी,
1: क्रॉस शुरू और अंदर से कट हुआ,
0: अरे रे,
1: आवाज आई कट कट, कुछ पता नहीं क्या है, क्यों कट हुआ, एक टेक कट हो गई, सेम जगह में दूसरी टेक कट हुई,
0: क्रॉस पे
1: कट हुई तो अंदर से आवाज आई। अच्छा, उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे जब अंदर से बोलते थे तो म्यूजिशियन भी सुना करते थे और सिंगर भी सुना करते थे,
0: जी,
1: क्योंकि सिस्टम ऐसा था। अभी हम सब शांत, 70-80 म्यूजिशियन शांत बैठा हुआ है, हुआ क्या है? अभी अन्ना बोल रहे हैं, रफी साहब आप मोहम्मद रफी हो, आप सबके मोहम्मद रफी हो, आपको कौन नहीं जानता, आपको कौन नहीं सुनता, लेकिन क्या है, ये गाना श्री रामचंद्र का है, अगर आप श्री रामचंद्र को नहीं गाओगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा ये श्री रामचंद्र का गाना है? चुप रफी साहब, आप जो क्रॉस गा रहे हो ना, ये शंकर जयकिशन की जगह है, मेरी जगह ये है,
0: गजब,
1: उन्होंने अपनी जगह गा के सुनाई, मेरी जगह ये है, ये श्री रामचंद्र की जगह है, वो शंकर जयकिशन की जगह है, और आपको श्री रामचंद्र की जगह गाना है। रफी साहब सॉरी सॉरी अन्ना, सॉरी अन्ना, सॉरी अन्ना, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं,
0: फिर से शुरू हुआ,
1: शुरू हुआ, टेक खत्म हो गया।
0: वाह, इसलिए ये बार बार अड़चन आ रही थी।
1: ओके हो गया, एक छोटी सी जगह थी, बोले वो शंकर जयकिशन की जगह है, ये मेरी जगह है।
0: गाना याद है?
1: नहीं गाना वही तो प्रॉब्लम ये है ना, उस टाइम इतना काम करते थे, सुबह अलग दोपहर को अलग, जैसे अभी यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं, दूसरा इंटरव्यू, तीसरा इंटरव्यू, चौथा इंटरव्यू, कहाँ याद रहेगा क्या क्या बोला।
0: जी जी जी,
1: ऐसी हमारी हालत थी
0: जी,
1: सुबह मदन साहब का बजा रहे हैं, दोपहर को श्री रामचंद्र का बजा रहे हैं, रात को जिंगल कर रहे हैं, सुबह 7 बजे फिर जिंगल कर रहे हैं, फिर शंकर जयकिशन का बजा रहे हैं, तो ये हालत
0: लगातार भागदौड़ होती थी,
1: लगातार भाग।
0: उत्तम जी बहुत भागदौड़ चल रही थी, अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ बजा रहे थे, फेलो म्यूजिशियंस के साथ किस तरह के रिश्ते थे, जैसे केरसी दादा से, बजी दादा से, मनोहरी दादा से,
1: ये सब लोग जी, ये तो ऐसा था ना, ये आप सोचिए कि जब मेरी शादी हुई तो मैं शायद 7 या 8 घंटे या 6 घंटे वाइफ के साथ पास रहता था घर में, बाकी तो सब इनके साथ ही रहता था
0: जी।
1: तो केरसी जी, बूपी जी, मरोरी जी, और उसके बाद भज्जी, ये सब लोग तो मतलब आप सोचो 16-16 घंटे हम साथ में थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा वक्त इन लोगों के साथ बीता,
1: ज्यादा गुजरी जो लाइफ है वो इनके साथ ही गुजरी है।
0: तो आपके सबसे पक्के दोस्तों में से कौन थे? इनमें
1: पक्के दोस्तों में भज्जी था।
0: अच्छा,
1: भज्जी एक वकील थे, विदेशन थे।
0: हाँ,
1: वो भी गुजर गया अभी। भज्जी, वकील, भूपी जी,
0: भूपिंदर सिंह जी, जो बहुत बड़े गायक भी थे और गिटारिस्ट थे,
1: और केरसी जी,
0: जी,
1: ये हम लोग काफी अच्छा ग्रुप था, रात को साथ में बैठना
0: जी,
1: और मैंने सबको छोड़ना क्योंकि मैं नहीं पीता था
0: जी,
1: लेकिन ड्राइवर इनका मैं था, गाड़ी भी मेरी, ड्राइवर भी मैं, और छोड़ना भी इनको।
0: तो पार्टियां वो लोग करेंगे,
1: पार्टियां वो लोग करेंगे क्योंकि सब दोस्त थे, लेकिन छोड़ूंगा सबको मैं घर में।
0: इन सब में सबसे बदमाश कौन थे?
1: बदमाश तो सारे थे सारे बदमाश थे
0: जी जी।
1: म्यूजिशियन जो है ना
0: जी
1: एक्चुअली बदमाश होता है।
0: अच्छा
1: हाँ, क्योंकि
0: आपकी भी थी बदमाशियां?
1: हाँ नहीं नहीं, हमारी बदमाशी भी क्या है, म्यूजिक में निकलती थी।
0: अच्छा,
1: म्यूजिशियन जो है वो स्मार्ट होता है
0: जी,
1: क्योंकि उसको जब प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो वो बहुत माइन्यूट काम करना पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: एक एक सुर को पकड़ना और सुर में लाना और सुर में बजाना, ये एक आत्माई ढांचा है कि जब तक अगर आपके पास आत्मा नहीं है। इलियाराजा साहब ने बहुत बड़ी बात कही है कि म्यूजिशियंस आर बॉर्न नॉट मेड।
0: वाह वाह वाह, पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। इलियाराजा का जिक्र निकल गया, मुझे ये पता है कि आपने सिर्फ मुंबई के फिल्म जगत में ही काम नहीं किया बल्कि आपने साउथ में भी बहुत सारा काम किया है।
1: जी, मैंने राजा मुझे लेके गए साउथ में अपनी फिल्म के लिए
0: जी,
1: और मैंने राजा साहब के कुछ 600 फिल्में का गाना मिक्सिंग मैंने की है।
0: 600 फिल्में, तो जीवन भर का काम होता है ये तो।
1: हाँ, बट वो तो 35 फिल्में एक साल में करते थे ऐसा म्यूजिक्टर पैदा नहीं होगा।
0: तो आपने बहुत वक्त मद्रास में भी बिताया।
1: मेरा एक पांव मद्रास में, एक पांव बॉम्बे में।
0: तो वहां आप बतौर अरेंजर होते थे?
1: जैसे अभी मैंने बताया मिक्सिंग, मैं मिक्सिंग करता था
0: आई,
1: और कभी कभी उनकी बैकग्राउंड म्यूजिक होता तो कंडक्ट करता था, कभी कोई सोलो होता तो सोलो भी बजाता था।
0: वाह,
1: और हम साथ में ही खाना खाते थे, साथ में चलते थे।
0: लैंग्वेज की प्रॉब्लम?
1: कुछ नहीं, म्यूजिकल लैंग्वेज।
0: क्या बात है इलियाराजा की, म्यूजिक में बहुत लेयर्स होती हैं, बहुत इंट्रिकेट काम होता है।
1: बहुत।
0: तो कुछ यादें बताइए।
1: मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है और किसी को बुरा लगना नहीं चाहिए, किसी भी संगीतकार को बुरा नहीं लगना चाहिए, उनसे बड़ा म्यूजिक्टर कोई नहीं है।
0: क्या बात है।
1: इसलिए हर आदमी अपनी अपनी जगह है
0: जी,
1: बट ही इज द मैन हु नोज अबाउट म्यूजिक फ्रॉम ए टू जेड।
0: वाह,
1: लिखना खुद, पढ़ना खुद, कंपोज खुद करना, एक एक म्यूजिशियंस को क्या बजवाना है, ये ही नोज।
0: वाह,
1: तो ये मोस्ट लर्नेड, हमारे यहाँ के जो संगीतकार थे बहुत बड़े बड़े संगीतकार, उनका कोई जगह ही नहीं, जैसे मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, बर्मन साहब, आरडी बर्मन, सी रामचंद्र, शंकर जय किशन, इनको चाहिए एक सहारा लिखने वाला। एक नोटेशन लिखने वाला चाहिए, और ऑर्केस्ट्रेटर चाहिए जो ऑब्लिगेटो बनाए, जो कॉर्ड डाले
0: जी,
1: वहां पे अरेंजर की जगह है
0: जी।
1: जैसे मैंने किया, जैसे मैंने अरेंजमेंट किए तो मेरी एक जगह थी वहां पे।
0: बिल्कुल,
1: बट इलियाराजा के वो किसी की जगह नहीं है।
0: इलियाराजा काम खुद करेंगे,
1: सारा काम खुद करते, इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा म्यूजिक्टर है।
0: क्या बात है।
1: जैसे मैं आज अगर मैं करता हूं, जब मैं अपना काम करता हूं, मेरा सारा काम खुद का है, मैं लिखता भी खुद हूं, जब सोलो पीस होते बजा भी कुछ, लेकिन स्टिल व्हाट राजा सब जो लिखते हैं वो एक आम आदमी नहीं लिख सकता, एक जानकार भी नहीं लिख सकता और आम आदमी भी नहीं लिख सकता।
0: सदमा का गाना मुझे याद आ रहा है।
1: हाँ, सुरेश वाडकर
0: जी, आपने बजाया?
1: मैंने बजाया।
0: ऐ जिंदगी गले लगा ली।

0: इलियार राजा की बातें हुई, मुझे एक चीज याद आई, नय्यर साहब।
1: ओहो,
0: उनसे जुड़ी हुई यादें हैं, एकदम हम बीच में स्किप कर गए। बल्कि मुझे तो ये भी याद आता है कि जब उनकी वापसी का दौर था, तब भी क्या कुछ काम किया आपने, निश्चय वगैरह जब फिल्में आई थी?
1: तब मुझे बुलाया था
0: जी,
1: मेरी वही प्रॉब्लम थी। नहीं,
0: आपने मना कर दिया?
1: ना, नहीं कर पाया आपके साथ। नय्यर साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, यू आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड संगीतकार इन द इंडस्ट्री
0: जी,
1: स्पेशली फॉर म्यूजिशियंस, स्पेशली फॉर सिंगर्स ऑफ दोज डेज, रफी साहब। और क्योंकि हमको जो 6-6 महीने के बाद पैसे मिलते थे
0: जी,
1: वो सेट पे पैसे दिलाने वाले नय्यर साहब।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: फॉरन ये काम किया, ये पैसे
1: नहीं,
0: दिए?
1: उनका ये था कि भाई ये प्रोड्यूसर को बोला कि कल रिकॉर्डिंग है तो इतने पैसे ले आना, ये मैंने किस्सा सुना हुआ है।
0: जी जी
1: ये पैसे ले आना, तो प्रोड्यूसर बोलता है इतने पैसे क्या जरूरत है, वो तो पैसे 3 महीने के बाद दें। अच्छा, कब दोगे? 3 महीने, तो 3 महीने के बाद रिकॉर्डिंग करेंगे।
0: जी,
1: तो नय्यर साहब इज द म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने म्यूजिशियंस

0: सेट पे पैसा दिलाना और 500 से 5000 रुपया करना सिंगर का, ये रैयर साहब।
1: वाह,
0: रफी साहब 500 रुपये लेते हैं, 5000 रुपये दिलवाया उनको और म्यूजिशियंस का पूरा। और किसी ने अगर सोलो अच्छा बजा, मनोरी जी तो हमेशा उनसे किसी ने ऐसा सोलो बजा दिया तो जैसे रिकॉर्डिंग खत्म हुई जेब में 500 रुपये डाल दिए, 100 रुपये डाल दिए, जो भी डाल दिया,
1: जो अच्छा बजाया उसका इनाम।
0: तो ये नैयर साहब थे।
1: वाह। अब बाद में नैयर साहब की शैली में तुषार भाटिया ने अंदाज अपना अपना में म्यूजिक दिया था।
0: हाँ, वो मैंने किया है।
1: वो आपने किया है?
0: हाँ।
1: उसके बारे में बताइए।
0: वो ही बस मैंने दो या तीन गाने किए, उसके ज्यादा नहीं कर पाया क्योंकि मेरा टाइम नहीं था मेरे पास। और बहुत पूरा कॉपी म्यूजिक, पूरा
1: नैयर साहब की शैली,
0: पूरी नैयर साहब को लेके। और क्या होता है ना, देखिए नैयर साहब नैयर साहब है,
1: बिल्कुल
0: आप उनको कितना भी कॉपी कर लो, नैयर साहब है।
1: हाँ।
0: आप कॉपी हो,
1: बिल्कुल।
0: आप आज अगर आप किसी का काम कॉपी कर रहे हो तो यू आर ए कॉपी, यू आर नॉट ओरिजिनल, डू समथिंग ओरिजिनल।
1: बहुत सही बात करें।
0: आपको इतनी बड़ी फिल्म मिली है, बहुत बड़ी फिल्म थी वो, सलमान खान आमिर खान की फिल्म कर रहा है
1: जी।
0: अच्छा कुछ डिफरेंट म्यूजिक दिया होता तो आज शायद कुछ अलग होता।
1: हम सब ये बात करते हैं कि नैयर की शैली के गाने।
0: हाँ, तो बात वही आ गई ना
1: जी,
0: हार्डली चले वो गाने, ज्यादा नहीं चले, क्योंकि जब ओरिजिनल सुनना है तो फिर नैयर सबको ओरिजिनल सुनते हैं ना।
1: हाँ। गीतकारों से किस तरह के रिश्ते रहे जब आप म्यूजिशियन थे तब?
0: हाँ, मैंने सबके साथ एज ए अरेंजर, साहिर साहब के साथ, राजेंद्र कृष्ण जी के साथ, और उस टाइम के जो योगेश और इंदिवर जी, सबके साथ काम किया हुआ
1: जी जी जी
0: रिश्ते भी अच्छे थे। नमस्ते नमस्ते थी।
1: बख्शी साहब,
0: बख्शी साहब के साथ मैंने एज ए म्यूजिशियन काम नहीं किया, मुझे बख्शी साहब बिल्कुल पसंद नहीं थे।
1: मुझे पता है ये बात, तो मैंने सोचा कि इसका जिक्र आगे दिल तो पागल है के टाइम करेंगे।
0: मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे वो बख्शी साहब। एक तो वो पान खाते रहना
1: और पीकदान,
0: वो पीकदान रखना और उसमें थूकते रहना, लेकिन दिल तो पागल आई।
1: हाँ।
0: अभी हम गाने कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि दिल तो पागल कर रहा हूँ। मैं तो अपना टेलीफिल्म कर रहा था, यशराज फिल्म्स की।
1: हाँ, ये बताया गया था कि ये एक टेलीफिल्म है।
0: टेलीफिल्म है।
1: और कतई नहीं बताया गया कि स्टार कास्ट क्या है।
0: नहीं, वो टेलीफिल्म ही थी।
1: ओके।
0: गानों ने कन्वर्ट कर दिया दिल तो पागल है। उन्होंने जब गाने सुने तो उन्होंने कहा कि यार ये गाने तो फिल्म के लग रहे हैं। आदि ने सुना, भाभी जी ने सुना, मनमोहन सिंह जो कैमरामैन थे उन्होंने सुना, यश जी ने सुना, संजीव कोहली
1: बड़े
0: लड़के
1: जी
0: वही तो लेके गए मुझे।
1: अच्छा,
0: ये बहुत बड़ा जिक्र है,
1: इसको इसको,
0: इसको होल्ड रखते हैं,
1: इसको होल्ड रखते हैं।
0: हाँ।
1: यहाँ सिर्फ एक झलक हमने सुना दी है।
0: हाँ।
1: आपके जो म्यूजिक की यात्रा की बातें हो रही थी और उसमें हमने बहुत अलग अलग तमाम संगीतकारों को याद किया, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि चूंकि बहुत भागदौड़ थी तो एक दिन में सबसे ज्यादा कितने गाने आप करते थे?
0: देखिए जी, एज ए म्यूजिशियन जो है ना, वो समझिए सुबह मदन साहब का बजाया, दोपहर को नौशाद साहब का बजाया, दो गाने।
1: वाह, दो लेजेंड लोगों के साथ काम हो गया आधे दिन में,
0: एक दिन में।
1: अभी तो एक शिफ्ट बची है?
0: नहीं, एक दो शिफ्टों में
1: जी।
0: सुबह एक शिफ्ट जो है वो मदन साहब के लिए।
1: अच्छा, सुबह की पूरी।
0: और दोपहर को 3 से 7 या 3 से 8 या 3 से 9 दूसरे प्रोजेक्टर के लिए।
1: जी जी,
0: ये हमारा उस टाइम पे लॉ था, यू कैन नॉट प्ले मोर देन दैट।
1: दो से ज्यादा नहीं
0: कर सकते। लेकिन साथ साथ में जिंगल चलते थे
1: जी,
0: एड फिल्म के गाने चलते थे, तो वो सुबह हम 7 बजे करते थे और उसके बाद रात को 9 बजे बैकग्राउंड खत्म किया, 9 बजे के बाद फिर जिंगल किया, तो रात को 12-12 एक एक बजे काम करते थे।
1: और जिंगल में भी इतना सारा म्यूजिक होता था?
0: जिंगल में ज्यादा नहीं, 7-8 म्यूजिशियन, 10 म्यूजिशियन बहुत हुए। लेकिन एज ए अरेंजर मैंने दिन में 7-7 गाने किए हुए।
1: बाप रे बाप, सब अलग अलग लोगों के लिए।
0: हाँ, मतलब समझिए एक किसी का, जैसे आप आज कोई भी एल्बम उठा लो, चाहे वो पंकज उदास हो, तलत अजीज हो, जगजीत हो, भूपेंद्र हो, सबके जो पहले फर्स्ट एल्बम है ना वो मैंने किया हुआ है।
1: अरे बाप रे, तो द लेटेस्ट भी आपने किया जगजीत का?
0: जगजीत की जो फिल्में के जो हिट गाने हैं वो सारे मेरे किए हुए हैं।
1: बिल्कुल।
0: उसके पहले ओपनिंग के जो गाने हैं वो सब मेरे किए हुए हैं। तलत के, आपके गुलाम अली का एक एल्बम आया था मिराज़े गजल, वो मेरी की हुई है सारी।
1: आशा भोसले और गुलाम अली,
0: वो सारी मेरी की हुई है।
1: अरे क्या बात है, तो मेरा जो गजल में से एक गजल सुनी जाए फिर?
0: जरूर जरूर सुनिए, उसमें वायलिन सोलो बहुत है।
1: क्या बात है, वाह वाह वाह,
0: आप सुन लीजिए उसको।
1: म्यूजिक अरेंजमेंट की बात बहुत हो रही है और आप बता रहे हैं कि आपने कई बार एक एक दिन में 7-7 गाने अरेंज किए। हमारे श्रोताओं में से बहुत सारे श्रोता ऐसे होंगे जिन्हें

0: नहीं पता कि ये म्यूजिक अरेंजमेंट क्या चीज
1: क्या
0: होती
1: होता है।
0: है
1: यस
0: ना, तो ये आप बताएं कि असल में गाना बनता किस तरह से है और उसमें म्यूजिक अरेंजर का काम म्यूजिक डायरेक्टर से कितना अलग है।
1: देखिए जी, यहाँ पे कंडक्टर का चांस तो मुझे सभी चाचा ने दिया,
0: जी
1: लेकिन म्यूजिक अरेंजमेंट का चांस जो है वो मुझे दिया शंकर शंभू,
0: शंकर शंभू कपाल सर।
1: जो कवाल थे। मुझे मैसेज आया कि आओ बुलाया, तो मैं गया मिलने के लिए। मैं जी बोला, हम एक पंजाबी फिल्म कर रहे हैं और बेटा तुम अरेंजमेंट करो। मैंने कहा जी मैंने कभी अरेंजमेंट किया ही नहीं। बोले नहीं करो, दे आर दी पर्सन हु मेड मी अरेंजर।
0: कसब, ये किस साल की बात होगी?
1: 60s की होगी,
0: जी जी
1: हाँ 60s, 65 मोस्टली, मोस्टली
0: जी
1: 65,
0: जी
1: क्योंकि 65 से मैंने अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया था। तो पहला उनका, उसके बाद में मैं जैसे ही मैंने अरेंजमेंट करना शुरू किया तो जितने भी छोटे म्यूजिक थे, जैसे इकबाल कुरैशी, छोटा इकबाल, बी एन बाली, ऐसे काफी लोग, छोटे छोटे म्यूजिक थे, सबने मुझे बुलाना शुरू कर दिया।
0: अरेंजर के तौर
1: हाँ,
0: पर।
1: और यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत किस्सा है कि मुझे मिलते थे 30 रुपए में दो गानों का अरेंजमेंट करना, 30 रुपए में
0: जी
1: दो गानों का अरेंजमेंट करना। तो दो गाने सुबह, दो गाने शाम, तो दिन के 60 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन हुआ क्या, मैं इतना बिजी हो गया तो जो म्यूजिशियन आए बजाने के लिए वो 100 रुपए दो गाने का लें, कोई 80 ले, कोई 100 ले, कोई 70 ले, कोई 75 ले, और मुझे मिले 30 रुपए।
0: अरे अरे
1: तो एक दिन मैं एक संगीतकार के यहाँ पहुंच गया सुबह 7 बजे। 7 बजे नॉक किया मैंने, अरे उत्तम तुम कहाँ से आ गए सुबह सुबह। मैं कहा जी आ गया। अच्छा आ जाओ, चाय पियोगे? मैं कहा जी पी लेंगे। मैंने कहा सर आपसे एक बात करनी थी। बोलो बोलो। मैंने कहा आप मुझे 30 रुपये दो गानों के देते हैं, मैं म्यूजिक बनाता हूँ, कंडक्टिंग करता हूँ, सब करता हूँ, और जो हमारे म्यूजिशियन आते हैं वो कोई 100 रुपया ले जाता है, कोई 70 रुपया ले जाता है, कोई ऐसे, तो मेरा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अच्छा ठीक है, कल बताता हूँ। वो कल कभी नहीं आई, उन्होंने मुझे निकाल ही दिया, पैसे मांग लिए, जाओ आउट। अब बताओ, आपको जब नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी पैसा मांगने की।
0: जी
1: फिर उसके बाद जो मिलता रहा मैं करता रहा, फिर मेरा नाम धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, फिर अपने आप ही लोगों ने मेरे पैसे
0: बढ़ाने शुरू किए।
1: बढ़ाने शुरू किए।
0: और म्यूजिक अरेंजमेंट में बहुत सारे काम
1: तो
0: शामिल है
1: म्यूजिक अरेंजमेंट में मैंने जितना जिंदगी भर काम किया,
0: जी।
1: मैंने ये काम किया कि एक तो आपने मुझे गाना दे दिया,
0: हाँ
1: ठीक है, आपने एक मेलोडी दे दी मुझे। अब उस मेलोडी के हारमोनी, उस मेलोडी के बीच के म्यूजिक, चाहे वो ओपनिंग म्यूजिक हो, बीच का म्यूजिक हो, वो सारा मैंने बनाया।
0: जी
1: अब पूरे म्यूजिशंस को रिहर्सल कराई, अब मैंने रिकॉर्डिंग भी करवाई, क्योंकि साउंड मेरा अपना बैलेंस नहीं होता, तो आई नेवर यूज टू ट्रस्ट एनीबॉडी। मैं मेरा बैलेंस मैं ही करूंगा।
0: अच्छा, तो पैनल पर भी आप ही बैठेंगे
1: हाँ, मेरे साथ रिकॉर्डिंग के साथ मैं बैठता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए।
0: जी।
1: तो मैंने जिंदगी में जो भी काम किया ना, वो वन मैन शो किया। म्यूजिटर का काम था गाना दे दो,
0: मतलब म्यूजिक डायरेक्टर ने केवल ट्यून बनाई।
1: ट्यून बनाई, और उसमें भी बहुत सारी चीज मैंने करेक्शन की है,
0: अच्छा
1: क्योंकि कई ऐसे म्यूजिटर आते थे जिनको ताल का ही पता नहीं होता था, वो लेके आ जाते थे ये सब ऐसा गाना है, उसको ताल में ठीक करना, उसको ठीक करना, आर्टिस्टों को सिखाना। आशा जी होती थी, लता जी होती थी, मुझे ही पूछती थी कि गाना उत्तम इसको कैसे करना है, इसको या क्या, जो भी करना है। तो मेरा वन मैन शो रहा है
0: गजब,
1: टिल हम आपके हैं कौन,
0: क्या बात है।
1: हम आपके हैं कौन और मैंने प्यार किया जो है
0: ये भी
1: ये।
0: बताना जरूरी कि ये फिल्में वो हैं जिनमें म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण थे लेकिन अरेंजर आप थे।
1: अरेंजर मैं था, बैकग्राउंड म्यूजिक सारा मेरा है, म्यूजिक सारा मेरा है, अरेंजमेंट पूरा मेरा है, सब कुछ, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरी है पूरी, मेरे बिना कुछ वहाँ हिलता नहीं था। तो
0: जी
1: इसलिए मैंने ऐसे अरेंजर जो काम किया है वो राइट फ्रॉम टिल रिलीज मैंने काम किया है। तो ये एज ए अरेंजर जो मेरी जो पोस्ट रही वो मैंने आपको बताई है।
0: जी जी
1: बाकी कई पुराने संगीतकारों में बहुत खास बात ये थी कि वो म्यूजिक अपना खुद बनाते थे।
0: फर्स्ट म्यूजिक सेकंड
1: मदन साहब
0: म्यूजिक
1: म्यूजिक खुद, मेलोडी खुद बना देते थे, नौशाद
0: जी
1: साहब हो गए, शंकर किशन, ये सब लोग अपना म्यूजिक बना देते थे। तो अरेंजर खाली लिखता था,
0: अच्छा अच्छा
1: अरेंजर
0: अच्छा
1: लिखता था, उसको थोड़ा सजाना बजाना, कॉर्ड डालना, वायलिन बजाएगा, चेलो बजाएगा, या क्या बजाएगा, वो सब करते थे। लेकिन जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने वन मैन शो शुरू किया।
0: तो आप तय करते थे कि यहाँ इतने वायलिन होंगे, मैंडोलिन आएगा कि गिटार आएगा,
1: क्योंकि म्यूजिक सारा मेरा होता था ना
0: जी, और वो पीसेस भी कैसे बजाए जाएंगे, उनका चलन क्या होगा, वो सब आप तय करते
1: मदन साहब क्या रा रा री री तिरी री वो बजा दिया
0: जी,
1: और वो पीस मेरा है, मैंने उसको कंपोज किया, बज गया गलती से, मैंने कंपोज नहीं किया
0: जी जी।
1: तो ऐसे जितने भी म्यूजिक हैं, कंपोज पीसेस हैं, मैंने प्यार का उठा लीजिए, आप हम आपके ओन उठा लीजिए, मेरे अपने म्यूजिक उठा लीजिए, दिल तो बगल से, या आप पेंटर बाबू चले जाइए
0: जी, जी।
1: उत्तम जगदीश थे
0: जी जी,
1: तो सारे म्यूजिक जो है, हर चीज इंटरलूड वगैरह सब मेरा बना हुआ है।
0: अब जैसे हम मैंने प्यार किया की बात करते हैं, अब दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, उससे पहले का जो म्यूजिक है, जो फ्लूट जिस तरह से चलती है और वो, तो वो सारा आपका तैयार किया,
1: सारा मेरा बनाया हुआ है
0: जी।
1: और उस टाइम पे वो जो पीस आया था तारा तारा तारा तारा तारा, इससे पहले ये फ्लूट कभी नहीं बजी थी।
0: हाँ वही बात है।
1: तो उस टाइम पे लोगों ने कहा कि अरे फ्लूट ऐसे भी बज सकती है,
0: क्या बात है,
1: और बहुत लोगों ने यूज किया वो,
0: एक आलाप की तरह है प्रॉपरली जो आता है
1: बिल्कुल।

0: यहाँ से, या वो कबूतर जा जा में जो पूरा रिदम है।
1: हाँ
0: मेरे रंग में रंगने वाली के पहले का जो ग्रैंडियोर है
1: हाँ।
0: वो बहुत कमाल है।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का दूसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: उजाले उनकी याद।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जा रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अपना केंद्र है।

इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में शाम के 5 बज रहे हैं। इसी के साथ समाप्त होती है आज की हमारी पहली सभा। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम के 6 बजे आपके समक्ष

नमस्कार। FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 6:15 हुए हैं, यानी समय हो चला है आज की दूसरी सभा आरंभ करने की। मैं अर्पिता आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए

6:05 से स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे मार भक्ति गीत गायक कलाकार रुथी मार और उनके साथियों की आवाजों में। तत्पश्चात आप आनंद लेंगे कुछ जेमी लोकगीतों का गायक कलाकार तिंगवांग स्विंग खुआ में और उनके साथियों से। आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिलीज किया जाएगा आंचलिक बातोरी, समय रहेगा 6:45 का। 7:00 स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम को जारी रखते हुए आप आनंद लेंगे कुछ डिमासा आधुनिक गीतों का लनी डेका और उनके साथियों की आवाजों में। 7:20 का समय रहेगा कार्बी कार्यक्रम का, जिसमें आप आज आनंद ले पाएंगे कुछ कार्बी भक्ति गीतों का शरोअल हंसे और उनके साथियों की आवाजों में। और स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के अंत में 7:40 पर आप सुनेंगे कुकी पारंपरिक गीत लैंग चोंग होय एसएचजी और उनके साथियों के आवाजों में।

स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के पश्चात 8 बजे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से आप सुनेंगे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम का असमिया में अनुवाद। 8:30 पर आप आनंद लेंगे कुछ फिल्मी गीतों का। हम आपको सुनवाएंगे एक ही फिल्म से कुछ गाने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या का समय रहेगा 8:45 का। 9 बजे आप सभी का पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम यानी कि हेलो हाफलोंग आप सुन पाएंगे, जिसे प्रस्तुत करेंगे सिद्धार्थ पांडे। तत्पश्चात आप आनंद लेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित चित्रगीत कार्यक्रम का। तो श्रोताओं, ये थी हमारे आज के दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है।

दोस्तों, आप सुन रहे थे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के तहत मार भक्ति गीत का कलाकार रुथी मार और उनके साथियों की आवाज़ों में FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। अभी आप सुनेंगे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के तहत जेमी लोकगीत का कलाकार तिंगवांग स्विंग क्वामे और उनके साथियों की आवाज़ों में।

स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे थे डिमासा आधुनिक गीत गायक कलाकार लनी डेका और उनके साथियों की आवाज़ों में। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के अंतर्गत आप अभी सुनेंगे कार्बी भक्ति गीत गायक कलाकार शेडोवेल हंसे और उनके साथियों की आवाज़ों में।

0: दोस्तों, आप सुन रहे थे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के तहत कार्बी भक्ति गीत गायक कलाकार शेरोवल हंसे और उनके साथियों की आवाज़ों में FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के अंत में अभी आप सुनेंगे कुकी पारंपरिक गीत गायक कलाकार लैंग चोंग होय SHG और उनके साथियों की आवाज़ों में।
1: Ting mang dam no sun so lyang.

दोस्तों आप सुन रहे थे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के तहत कुकी पारंपरिक की गायक कलाकार लैंग चोंग होई एसएचजी और उनके साथियों की आवाज़ों में एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ देर में आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से आप सुनेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम का असमिया में अनुवाद।

दोस्तों, अभी हम आपको सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गीत, और आज हम आपको सुनवाएंगे फिल्म तारे ज़मीन पर से कुछ गीत। पहला गीत शंकर महादेवन, शंकर एहसान लॉय।

दोस्तों, फिल्मी गीत कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए, फिल्म तारे जमीन पर से। गायक कलाकार अदनान, ओरियल अनन्या और शैलेंद्र और अमोल के आवाज़ में।

दोस्तों, आप आनंद ले रहे थे कुछ फिल्मी गीतों का, फिल्म तारे ज़मीन पर से FM 100.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। कहा, ये आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। उन्होंने महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौते किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती से देश की पहली LNG चालित रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए रेलवे का महत्वपूर्ण कदम बताया। एशियाई खेलों में भारत ने विमेंस लॉन्ग जंप, मेंस हाई जंप और स्क्वाश सिंगल्स स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथनॉल, विमेंस स्टेपल चेज और 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैम्पेडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की ये कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: श्री मोदी ने लोगों से मेढोरा की गौरवशाली विरासत को देखने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद के संबंध में कहा कि आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। यहां के किसान पीढ़ियों से आंवले की खेती करते आ रहे हैं। विंध्यवासिनी स्व सहायता समूह की महिलाएं आंवले से अचार और पाचक चूर्ण बना रही हैं। इन महिलाओं को प्रसंस्करण और ऋण की सुविधा मिली है। श्री मोदी ने त्योहारों के दौरान वोकल फॉर लोकल मंत्र को याद रखने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ साथ साइबर, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना युद्ध जैसे क्षेत्रों से परे भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृह मंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। श्री शाह ने कहा कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं।
4: विद्युतीकरण 2010-11 में 75 किलोमीटर होता था और 23-24 में 7,188 किलोमीटर विद्युतीकरण, 75 से 7,000 किलोमीटर की छलांग, 99.6% रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है, 0.3% जो बाकी है वो भी हम पूरा कर लेंगे।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल ने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व, राष्ट्र और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। दिवंगत अशोक सिंघल के जन्म शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि उनका जीवन हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
4: अशोक जी का जीवन कई सारे किशोरों के लिए, युवाओं के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। उनके जीवन का सत्व, उनका तप, उनकी सादगी और उनका पुरुषार्थ हर युवा के लिए अनुकरण करने योग्य गुण है और स्वाभाविक रूप से उनका स्मरण हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि तकनीक किसी चिकित्सक के मानवीय स्पर्श और नैतिक जिम्मेदारी का स्थान नहीं ले सकती। श्री राधाकृष्णन आज तिरुवनंतपुरम में SUT अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।
5: As we embrace technology, we must remember that one fundamental truth: technology can assist a doctor, but it cannot replace the human touch of a doctor. Yeah, machine can analyze, a robot can assist, but there is no comparison that human touch by a doctor to the patient. An algorithm can identify patterns, but patient still needs a doctor who can listen, understand, reassure and take the responsibility.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं नमो भारत रैपिड रेल की कि कैसे इस संकल्प को वास्तविकता में बदला गया।
6: नमो भारत भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। यह 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है। 30,274 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस कॉरिडोर पर ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। यह सेवा इस साल फरवरी से शुरू हुई और इसके कारण दिल्ली से मेरठ के सफर का समय घटकर 1 घंटे से भी कम हो गया है। रैपिड रेल के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नमो भारत ट्रेन आधुनिकता, तेजी और शानदार रफ्तार को दर्शाती है।
7: भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है।
6: नमो भारत में यात्रा करने वाले एक यात्री ने बताया,
8: जो लोग पहले गाड़ी से जाते थे या फिर कार बस से जाते थे, उनको ना कार में जाने की झंझट है कि ट्रैफिक जाम आपको पीक टाइम में मिलता ही मिलता है। किसी भी एम्प्लॉय से आप पूछोगे कि जो काम करता है बाहर, आई डोंट थिंक कि वो डिसएग्री करेगा इस चीज से कि नमो भारत रैपिड रेल की चेंजर है, एक डेवलपमेंट है मेरठ और यूपी के इतिहास।
6: नमो भारत का अलग अलग परिवहन साधनों के साथ सहज जुड़ाव भारत में तेज इंटरसिटी यात्रा को सुनिश्चित करता है और एकीकृत शहरी तथा क्षेत्रीय परिवहन के लिए एक मिसाल कायम करता है। यह परियोजना प्रधानमंत्री के उस विजन को और गति देती है जिसमें शहरी परिवहन को बदलने और नागरिकों के लिए सुगम, कुशल, आधुनिक और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। भानु प्रताप के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अब रुख खेल खबरों का। एशियाई खेलों के हलचल के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
9: एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विन शंकर ने डेकोथलॉन में 7,934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक देश के नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। उधर भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नाना ग्रैमपेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी है। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर कांस्य पदक देश को दिलाया। तिरुवनंतपुरम में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के लिए 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 34 ओवर में 2 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैंपेडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार
10: दोस्तों, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अभी आप सुनेंगे आप सभी का पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग, जिसे प्रस्तुत करेंगे सिद्धार्थ पांडे।

0: हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुठाई चिबाई कुलम खुबले कार्डोम आकाशवाणी हफलों की ओर से मैं सिद्धार्थ लेकर हाजिर हूँ आप सभी का पसंदीदा और प्यारा सा प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो हफलोंग। कल शनिवार के दिन आपने सुना इस हफ्ते का पहला एपिसोड, आज रविवार है। चलिए अब देरी ना करते हुए आज के सफर को शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो हफलोंग।
1: जी सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार
1: सर जी, शिवा लोहट्टा एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ।
0: कैसे हैं शिवा जी?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ सर जी, और आपकी आवाज मिल गई तो और भी अच्छा लग रहा है सर।
0: अरे वाह, धन्यवाद। और क्या माहौल है वहाँ अभी?
1: सर जी देखिए, गणेश जी की जो विदाई का समय आ चुका है, तो गणेश जी की विदाई भी हो रही है और हमारे यहाँ पे भंडारा भी चल रहा है सर जी, कृषि मंत्री शिवराज जी के द्वारा।
0: क्या सुनेंगे आज?
1: सर जी एक गाना रहेगा, मूवी का नाम है राउंड
0: जी।
1: उस मूवी से कुमार सानू की आवाज में कोई भी गीत चला देगा सर।

0: हेलो हफलोंग।
1: नमस्कार सर
0: नमस्कार,
1: जी। आप नलवानी हूँ, चकलवाड़ के जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। बहुत
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया सर, बिल्कुल। आज भी यहाँ पर मौसम बारिश वाला है, सुबह से बारिश हो रही है। वैसे 4-5 दिन धूप निकली थी, 4-5 दिन के बाद आज भी मौसम बदल गया है।
0: मौसम के साथ आपका काम धंधा कैसे चल रहा है?
1: नहीं, काम धंधा संबंध है सर, क्योंकि कपड़े का दुकान है मेरा, कपड़े दुकान में इतनी ग्राहकी नहीं है अभी। अभी 2 दिन बाद प्रतिपक्ष में चालू होने वाला है, तो प्रतिपक्ष में भी ग्राहकी नहीं होती है।
0: अच्छा।
1: ये कहते हैं इन दिनों में कुछ भी कोई नया काम नहीं करना चाहिए, ज्यादा अच्छा है। लोग कपड़े भी नहीं है, नए नए कहते हैं। इसके बाद क्या है, नवरात्रि तो दीपावली चले जाते तो ग्राहकी बढ़ जाती है।
0: जी, और नवरात्रि आने ही वाली है, कुछ दिनों की ही बात है ना?
1: हाँ, बस 15 दिन बाद फिर नवरात्रि चलू जाएगी।
0: जी, क्या सुनवाए आपको?
1: मैं समझ गया, मेरा नया सामान भा दो, फिर भी मेरा मन कहता है।
0: जी, धन्यवाद।

0: हेलो हफलोंग।
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार,
1: मैं इकलास सर,
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं कैरिबियन से सर।
0: जी, क्या करते हैं
1: एक
0: आप?
1: एक कार्ड काम करना है सर, एक कार्ड पंचर काम करना है सर।
0: जी
1: तुमको ना भूल पाएंगे फिल्म का गाना है सर, ईद मुबारक गाना है अतना सर, यही गाना है। ठीक है सर,
0: जी, आप अपनी पसंदीदा गाने का आनंद लीजिए। धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।

0: हेलो हफलोंग
1: हेलो आपको, मैं कोयलाजान से रिकेश ब्रायडी बोल रहा हूँ, खरबियांग कोयलाजान से। हाँ
0: जी, कैसे हैं दिकेश जी आप?
1: मैं बढ़िया हूँ।
0: जी, अपने बारे में कुछ बताएंगे, क्या करते हैं?
1: मैं मिस्त्री करता हूँ, राजमिस्त्री।
0: जी, अभी आप काम से काम पे हैं?
1: नहीं, मैं इस पर घर घर पर हूँ।
0: जी, और बहुत अच्छा लगा कि हमारे कार्यक्रम से भी हमारे साथ श्रोता जुड़े हैं और इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आपकी रिक्वेस्ट क्या है?
1: मैं संजू फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ, जू जू जू बोलने वाला, मेरे परिवार की तरफ से, सारे परिवार की तरफ से संजू
0: जी, आपकी,
1: फिल्म।
0: हाँ, समझ में आ गया। आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म संजोग का ये सदाबहार गाना। गाने का आनंद लीजिए। धन्यवाद।

0: हेलो हफलोंग।
1: नमस्कार, मोहम्मद हारून बुल्यांग ग्राम अकबरपुर तहसील शिलोंग जिला पीजी समस्तीपुर।
0: मोहम्मद हारून जी, क्या हाल चाल हैं आपके?
1: हमारे हाल चाल अच्छे हैं, और आपके हाल चाल कैसे हैं?
0: बहुत मस्त हैं। क्या कर रहे हैं आजकल आप?
1: हम आजकल बैठे हुए थे, आपको फोन लगा रहे थे। फिल्म
0: जी, आपकी रिक्वेस्ट क्या है बता दीजिए।
1: है दो जिसमें एक जान,
0: जी
1: गाने के बोल हैं आए रब्बा कुमार सानू की आवाज।
0: जी इसी गाने को आपकी रिक्वेस्ट पर आप तक पहुंचा रहे हैं। आप गाने का आनंद लीजिए। धन्यवाद।
1: जी, धन्यवाद।

0: हेलो हफलोंग।
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं रमेश प्रजापति ग्राम बाया तहसील रहती जिला सीहोर एमपी से बोल रहा हूँ सर जी। जी
0: कैसे हैं आप?
1: आज स्वस्थ है, मस्त है, गर्मी पड़ रही है, गर्मी के आनंद ले रहे हैं इस समय। और क्या
0: बढ़िया। और रेडियो का आनंद कितना ले रहे हैं?
1: सर, रेडियो के आनंद तो फिर लेते ही है गर्मी के आनंद भी ले रहा है और रेडियो के आनंद भी ले रहे हैं।
0: चलिए, आपको क्या सुनवाएं?
1: गंगा जमुना फिल्म का नाम है, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे। ये कुछ मित्रों को याद कर लूं क्या?
0: जी
1: ये हमारे असम से है, भाई को मुंडा है, विमल भस्माकारी, अमल भस्माकारी, रमेश पात्रे जी है, गोल्डी जी है, रक्कू विलय मेहता है, और तनुश्री बिटिया महाराष्ट्र से है, और अविनाश जी है, राकेश जी है, आशुतोष जी, संगीता जी, पूरन वर्मा जी है, भगवान सिंह परमार जी है।
0: जी जी और आप भी गाने का आनंद लीजिएगा। धन्यवाद।
1: जी जी जी जी

0: हेलो हफलोंग।
1: हेलो हफलोंग, नमस्ते सर।
0: नमस्ते।
1: हाँ, शिवा को बोल रहे थे सर, चाईबासा झारखंड।
0: कैसे हैं शिवाजी आप?
1: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हो?
0: ठीक हैं? और क्या कर रहे हैं आजकल?
1: आजकल घर पे सर, और बारिश चल रहा था, अभी कुछ खत्म हुआ, अभी धान का पूजा चल रहा है हम लोग का झारखंड में, नुआखाई नाम से पूजा जो होती है, और धान उन सबको काट करके फिर लाया जाएगा खलियान में, फिर मड़ाई वड़ाई किया जाएगा सर।
0: अच्छा, और कैसा रहा इस साल का फसल?
1: इस बार अच्छा हुआ है, बारिश भी अच्छी हुई, फसल अच्छा हुआ है, तो फिर सभी कोई खुशी से झूम रहे हैं।
0: जी, बहुत बहुत बधाई आप सबको। क्या
1: जी सर।
0: सुनेंगे आज?
1: सर आज मुझे बनी फिल्म का गाना सुना दीजिएगा सर, 1996 में जो बनी थी सर। गाने के बोल हैं, आधी रात को घड़ी की घंटी बोले टन टन टन।
0: जी, धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, जैसे बात करके अच्छा लगा।

दोस्तों, इन रिक्वेस्ट सॉन्ग्स के साथ ही हेलो हफलों का इस हफ्ते का सफर अब हो चुका है पूरा। जिन श्रोताओं ने इस हफ्ते हमें कॉल किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से आपके अन्य मित्र भी इस कार्यक्रम में शामिल हों। और हाँ, जिन श्रोताओं के कॉल इस हफ्ते हमने इस कार्यक्रम में शामिल किए हैं, उन सभी श्रोताओं से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगले 3 हफ्ते के अंतराल के बाद ही आप इस कार्यक्रम में कॉल लगाएं, ताकि हमारे अन्य जो श्रोता हैं उनको भी इस कार्यक्रम में

शामिल होने का मौका मिले। श्रोताओं, आपको बता दें, हेलो आफलोंग की रिकॉर्डिंग हम करते हैं हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। प्रोग्राम आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे। अब आप नोट कीजिए हमारा नंबर हमें कॉल करने के लिए, हमारा नंबर है 9435700596। नंबर एक बार फिर से 9435700596। श्रोताओं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी। हमारा फेसबुक आईडी आकाशवाणी हाफलॉन्ग है, हमारा इंस्टा आईडी भी आकाशवाणी हाफलॉन्ग ही है। श्रोताओं, बहुत सारे कार्यक्रम हम अपने यूट्यूब चैनल आकाशवाणी हाफलॉन्ग पर भी अपलोड करते हैं, वहां से भी आप कार्यक्रम का आनंद उठा पा सकते हैं। अब इसी के साथ ही इस हफ्ते के कार्यक्रम को अब हम यहीं पर समेट रहे हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे और यूं ही जारी रहेगा सफर मनोरंजन का हेलो हाफलॉन्ग के संग। तब तक के लिए आपके दोस्त सिद्धार्थ को दीजिए इजाजत। आप सभी को मेरी ओर से जुठाई चिबाई कुलुम खुबले गार्डम और मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे आप सभी का पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलोंग, जिसे प्रस्तुत किया था सिद्धार्थ पांडे ने। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों अभी आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित चित्रगीत कार्यक्रम, और आज का पहला गीत मैं आपको सुनवाऊंगी फिल्म परिणीता से। गायक कलाकार श्रेया घोषाल और सोनू निगम के बेहतरीन आवाज में आनंद लीजिए इस खूबसूरत गीत का।
5: I don't know, you know.

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन चर्च में

दोस्तों, चित्रगीत कार्यक्रम का आखिरी गीत आपने सुना फिल्म क्रिएचर 3D से अरिजीत सिंह के आवाज में, और इसी के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात के 10 बज रहे हैं। समय हो चला है आप सभी से अब विदा लेने का। कल की पहली सभा में यानी कि 6 बजे आप सभी से एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं अर्पिता आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी। शुभ रात्रि, जय हिंद।